सुप्रभात। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 सितंबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार।
0: प्रातः के 6 बजने को है।
1: अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन के इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश शामिल हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोबो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकन हिस्सा लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रुसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा कल रात नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कर सकते हैं। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, 12 खंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अनावश्यक यात्रा से बचें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया कि शनिवार को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों के बीच सामाजिक विकास, सिंचाई, सहकारिता, प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। सत्र में भारत को संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के 3रे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने

कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना आवश्यक है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। नई दिल्ली नगर निगम ने अनधिकृत निर्माण के मामले में लापरवाही बरतने पर भवन विभाग के 3 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में 1 सहायक अभियंता और 2 कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रभु स्मरण के साथ आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

यह तो भक्त की आस्था उसके भाव पर निर्भर करता है कि वह उस परम पिता को जो परम तत्व है किस रूप में स्मरण करना चाहता है, किस रूप में वो हर वक्त हर सांस में वो उसको भजना चाहता है और अपने चित्त की एकाग्रता के साथ समर्पित भाव से भक्त जिस भाव में भी प्रभु स्मरण करता है। भगवान भला अपने उस भक्त से कब दूर रहते हैं, फिर ये आप चाहें राम कहें, कृष्ण कहें, करीम कहें, रहीम कहें, कोई भी कुछ भी कहें, जैसे आप उनको संबोधित करना चाहते हैं, बस प्रेम में तो सब कुछ एक हो जाता है। एको एम द्वितीयो नास्ति।

एक विशेषता है इस भजन में, भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है। ये ध्यान में रख के सुनिए, एक नया आनंद आएगा।

0: आप अभी सुन रहे थे संभी स्वरों में ये देशभक्ति परक रचना को। इसके अलावा जिन गायक स्वरों में आपने भक्ति परक रचनाएं सुनी वे गायक स्वर थे पंडित जसराज, अनूप जलोटा और लक्ष्मी शंकर के। आज का वंदना कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चंदन बिंदु क्रम में लीजिए प्रस्तुत है आज संत विनोबा भावे के विचार। स्वर रजनीश गुप्ता का है।
1: स्वराज्य के संकल्प की सिद्धि के बाद हमारा नया संकल्प है सर्वोदय। सर्वोदय से तात्पर्य है सबका उदय। जब तक सर्वोदय नहीं होता तब तक शोषण कायम रहता है। यथार्थ रूप में स्वराज्य लाने के लिए सर्वोदय की आवश्यकता है, जिसका संकल्प देश में धीरे धीरे जाग रहा है। वैसे इस प्रकार के संकल्प एकदम नहीं जागते, खासकर जब त्याग करने का संकल्प जगाना हो तो थोड़ा समय लगता है। जो विचार चिरकालीन महत्व के होते हैं वो धीरे धीरे उगते हैं, जबकि जो अल्पकालिक होते हैं वो घास की तरह उगकर शीघ्र ही क्षीण भी हो जाते हैं। आज जरूरत है ज्ञातव्य पूर्वक काम करके उसे पोषित करते रहने की। सर्वोदय का संकल्प जब देशव्यापी हो जाएगा तभी शुभ की कल्पना की जा सकती है। सर्वोदय विचार इतना व्यापक है कि हम उसके अमल करने की कोशिश कर सकते हैं। पूरे अमल के लिए परमेश्वर दर्शन की आवश्यकता है। ध्यान, प्रार्थना हमारे काम में हर क्षण होना चाहिए और एकांत जनता के बीच काम करते करते भी हर क्षण मिलना चाहिए। ईश्वर गुण में है, सत्य, प्रेम, करुणा आदि मंगल गुणों की परिपूर्णता ही ईश्वर है। इस तरह गुण ग्रहण करते करते हृदय गुण का भंडार बनेगा और तभी ईश्वर परिपूर्ण दर्शन होगा। सारा सर्वोदय कार्यक्रम गुण दर्शन पर ही आधारित है। गुण का दर्शन होगा तभी ईश्वर से साक्षात्कार होगा। पूर्ण अंश के दर्शन के लिए जब तक ये देह है तब तक ये प्रयत्न चलता रहेगा। मेरी खोज चल रही है, इस खोज के लिए ही जीवन है, पर हृदय की शुद्धि होनी चाहिए।

0: ये काम करते करते मुख्य रूप से हृदय शुद्धि और चित्त शुद्धि करते रहना चाहिए। अगर हृदय शुद्ध नहीं हुआ तो आम आदमी के हृदय में प्रवेश कैसे होगा, खादी कौन पहनेगा। इसलिए प्रत्येक काम के साथ हृदय शुद्धि की बात जुड़ जानी चाहिए। परमेश्वर की भक्ति का सरल सार मानव सेवा में ही है। मानव सेवा के लिए व्रत पालन आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना विच्छिन्न व्यक्तित्व की स्थिति बनती है। व्यक्तिगत शुद्धि के लिए एक विचार बनता है और शुद्धि के लिए दूसरा विचार, पर इसका समन्वित रूप है समाज सेवा, लोक संगठन, लोक शिक्षण और रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ सत्य और अहिंसा का साथ होना, जिनकी आधारशिला पर ही समाज का उत्थान किया जा सकता है। दूसरे रूप में ये जनसेवा की कसौटी भी है। व्यक्तिगत जीवन के साथ सामाजिक क्षेत्र में भी आत्मिक शक्ति का उपयोग हो सकता है। इस प्रकार गुण के विकास का प्रयोग व्यक्ति के जीवन में सफल हुआ तो उसे समाजव्यापी बनाना चाहिए। जिस युग में जो भावना मुखरित होती है वो उस जमाने का ब्रह्म है। ऐसा ही ब्रह्म है सर्वोदय, जिसमें हमें ऐसे काम करने हैं जिनमें शांति की गुंजाइश हो, संभावना हो, क्षमता हो। आज की दुनिया में सर्वोदय की आवाज़ सामाजिक न्याय की स्थापना की आवाज़ है और इसी से स्थायी शांति संभव है।
1: आप अभी सुन रहे थे चिंतन बिंदु क्रम में संत विनोबा भावे के विचार, वचन स्वर रजनीश गुप्ता का था। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया। अनु ने विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते, तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है, और क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

आप सुन रहे थे अभी श्री रामचरित मानस गान से आज के प्रसंग का संगीतबद्ध प्रसारण। गायक स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह के थे, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का। श्रोता साथियों, समय हो चुका है आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विवरण का। आज आप सुनेंगे सुबह 9 बजे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पार्थ भार्गव की वार्ता। विषय होगा बरसात में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव। कार्यक्रम आबोहवा सुनिएगा सुबह 9:25 पर। आज इस कार्यक्रम में हेमंत झा जानकारी देंगे सामाजिक वानिकी और पर्यावरण विषय से संबंधित। सुबह 9:30 पर आज आप सुनेंगे गांधी चर्चा के अंतर्गत मानव शरीर के संबंध में गांधी जी के विचार। 9:45 पर सुबह अनीता सिंह से ली गई ओपी सिंह की भेंट वार्ता आप सुनेंगे। विषय होगा राष्ट्रीय लोक अदालत, उद्देश्य एवं लाभ। दोपहर 12 बजे सुनिएगा श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बात SMS। और दोपहर 12:30 का समय रहेगा ब्रज लोक गीत कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में भगवान दास अज्ञानी प्रस्तुत करेंगे रांझा गायन।

संध्या 6:50 पर सुनिएगा कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार से ओपी सिंह की ली गई भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी। विषय रहेगा सरसों की उपयुक्त किस्में तथा खेत की तैयारी।

बहने कार्यक्रम सुनेंगी दिन में 1:15 पर कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी होम बेस्ड बिजनेस और घर और काम के बीच संतुलन विषय से संबंधित। इसी कार्यक्रम में बहने केबीलाल कुलश्रेष्ठ की विनोद हस्य विनोद वार्ता सुनेंगी रेल यात्रा। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय रहेगा 2:30 का। युवाणी कार्यक्रम में संध्या 5:30 पर आज आप सुनेंगे सुरेश राग भाई की वार्ता विनोबा भावे जी और उनका उत्तराधिकार। संध्या 6:15 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में मनी

0: मनमोहन अभिलाषी प्रस्तुत करेंगे रेखाचित्र जमुना मौसी। संध्या 6:30 का समय रहेगा भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन का। शाम 7:30 से आज आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। ये प्रसारण आप मैच की समाप्ति तक सुन सकते हैं। 7:30 के बाद के जो शेष कार्यक्रम हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र के, उन्हें आप आकाशवाणी के प्रसारण ऐप यानी कि न्यूज ऑन AIR पर सुन सकते हैं। ये था आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, खेती की बातें। आइए सुनते हैं आज इस कार्यक्रम में खरीफ फसल में जल प्रबंध विषय पर डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से ये जानकारी।
1: भाइयों, इस समय जो आपके खेत में खरीफ की फसल लगी हुई है, आज हम उसमें जो जल प्रबंध की बात करते हैं उसके बारे में बताते हैं, उसके बारे में आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। धान की फसल में लगातार पानी भरा रहना जरूरी नहीं होता है। लगातार पानी भरे रहने से अच्छा उत्पादन ऐसा नहीं है कि मिलता ही हो। और वैसे तो हमने पहले भी आपको बताया कि धान की जो रोपाई की जाती है तो उसमें पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आजकल धान की सीधी बुवाई भी की जाती है तो उसमें बहुत अधिक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और लेबर खर्च भी कम आता है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं कि धान की फसल में लगातार पानी खड़ा ही होना चाहिए, जिससे तभी अच्छा उत्पादन मिलेगा। रोपाई के समय और कल्ले बनते समय कम से कम पानी उसमें होना ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप यूरिया का उपरवेशन कर रहे हैं तो उस समय खेत में खड़ी फसल में अगर पानी भरा रहेगा तो लीचिंग के द्वारा जो यूरिया है, नत्रजन है, उसका ह्रास ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में अगर खेत में पानी नहीं है, नमी है, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन खेत में अगर पानी खड़ा हुआ है तो यूरिया को मिट्टी में मिला करके उसका भुरकाव या बिखेरना चाहिए, जिससे कि लीचिंग की जो प्रक्रिया है उसको कम किया जा सके। तो ये तो बात रही धान की फसल के संबंध में। और इसके अलावा धान के खेत की चारों ओर से मेड़बंदी अच्छी प्रकार से करनी चाहिए, जिससे कि वर्षा का जो जल है वो उसके अंदर ही रहे, बाहर न जा सके, जिससे कि उसको जो पानी की ज़रूरत है उसकी पूर्ति होती रहे। मक्का की फसल में प्रारंभिक अवस्था में तथा नरमंजरी निकलने से लेकर के दाना पड़ने की अवस्था तक नमी की ज़रूरत पड़ती है। इन अवस्थाओं पर नमी की कमी रहने पर मक्का की उपज लगभग आधी रह जाती है। ज्वार बाजरा हालांकि असिंचित क्षेत्रों की फसल है, वर्षा पर आधारित फसल होती है, इसको बहुत अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन पिछले दिनों जो बारिश हुई है इससे ज्वार बाजरा की फसल आपकी पक जाएगी और काफ़ी फायदेमंद ये बारिश ज्वार बाजरा के लिए रहेगी। विशेष रूप से इसमें बाली निकलते समय और दाना भरते समय पानी की जरूरत पड़ती है, यानी कि खेत में नमी की जरूरत पड़ती है। तिल की खेती असिंचित क्षेत्रों में ही की जाती है, सामान्य वर्षा होने की स्थिति में सिंचाई की आवश्यकता इसमें भी नहीं पड़ती है। इसकी फसल में फली बनते समय मिट्टी में अगर नमी की कमी हो तो उस समय अगर आप सिंचाई कर सकें तो पैदावार और अधिक ली जा सकती है। अरहर भी असिंचित क्षेत्रों में ही की जाती है, इसको भी विशेष सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अरहर की फसल में फली बनते समय खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। नमी की कमी होने पर फली बनते समय एक सिंचाई आप अवश्य कर दें। उड़द मूंग खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली उड़द और मूंग की खेती भी विशेष रूप से असिंचित क्षेत्रों में ही करते हैं। मिट्टी में नमी की कमी होने पर फली बनते समय इसमें भी सिंचाई की जरूरत पड़ती है। लोबिया की जो फसल है, फली बनते समय मिट्टी में इसमें भी नमी का होना बहुत जरूरी है, नमी की कमी होने पर इसमें एक सिंचाई आप कर सकते हैं। तो ये कई ऐसी अवस्थाएं जिनमें कि आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इनमें सिंचाई करें। कौन सी अवस्था में विशेष रूप से खरीफ की फसल में सिंचाई करने की जरूरत है। खरीफ में बोई जाने वाली सभी फसलों में जल निकास का उचित प्रबंध भी जरूरी है। खेत में अधिक पानी भरा रहने से पौधों की बढ़वार रुक जाती है, पौधे सड़ भी जाते हैं। हालांकि इस बार वर्षा उतनी अधिक नहीं हुई है, लेकिन जहां पर भी वर्षा है और जलमग्न की स्थिति है वहां पर पानी को निकालने की व्यवस्था भी जरूरी है। दलहनी फसलों में अधिक पानी भर जाने से इनकी जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जो राइजोबियम जीवाणु हैं वो क्रियाशील

0: नहीं हो पाते हैं, इसलिए वायुमंडल से नाइट्रोजन की जो शोषित करने की प्रक्रिया है उसमें बाधा पड़ती है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत से जानकारी, विषय था खरीफ फसल में जल प्रबंध। और अब समय हो चुका है संस्कृत समाचारों का, तो सबसे कुछ ही देर में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेहे बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शान्तिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्ष मण्डलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोक कल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना एतानि वक्तव्यानि फ्रांस देशस्य पैरिस नगरे समायोजिते अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनावसरे आभासीय माध्यमेन प्रकाशितानि।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सबलं प्रतिपादितवान् यत् अंतरिक्ष कक्षासु समृद्धि संघर्ष स्थाने सहयोग भावना अल्पकालिक लाभ स्थाने शाश्वतता बहिष्करण स्थाने च समावेशिता प्राथमिक रूपेण स्यात् इति प्रतिपादितवान्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघटनस्य भूमिकां प्रतिपादयन् श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् स्वीय कार्यदक्षता कारणेन स्वीय ऐतिहासिक अभियानैश्च एतया संस्थया वैश्विक प्रशंसा समर्जिता। अष्टादशं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनं श्वः प्रभृति नवदेहल्याः भारत मण्डपम् इत्यत्र समारप्स्यते। सम्मेलनम् आलक्ष्य भव्यायोजनस्य समग्र सज्जाः सम्प्रति अन्तिमे चरणे प्रविष्टाः। द्विदिवसीये शिखर सम्मेलने ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारतम् ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात इत्येतम् समेत्य एकादश प्रमुखाः विकासशील अर्थव्यवस्थाः मञ्चं धारयिष्यन्ति। भारतस्य अध्यक्षतायां समायोक्ष्यमाणस्य एतस्य शिखर सम्मेलनस्य विषयः नवाचार सहकार सतत विकासाय च निर्माणमिति। शिखर सम्मेलने रूस देशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिन इत्यसौ चीन देशीयः राष्ट्रपतिः शी जिनपिंग इत्यसौ दक्षिण अफ्रीकायाः राष्ट्रपतिः सिरिल रामाफोसा इत्यसौ मिश्र देशीयः राष्ट्रपतिः अब्देल फतह अल सीसी इंडोनेशियायाः राष्ट्रपतिः प्रब्रुवो सुबियांतो ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेकिश्कियन इत्यसौ अबुधाबी क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इत्यसौ अथ इथियोपियायाः प्रधानमंत्री अबी अहमद अली इत्येतं समेत्य वैश्विक नेतारः सम्मेलने भागं भजिष्यन्ति। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनम् आलक्ष्य दिल्ली यातायात आरक्षी बलेन संसूचितं यत् अद्य मध्याह्ने द्विवादनतः सार्ध अष्टवादन पर्यन्तं प्रमुख मार्गेषु यातायाते परिवर्तनं नियन्त्रिता च व्यवस्थिता प्रभवेत। आरक्षिबलानुसारेण आपत्कालिकाः आवश्यकाः

जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।

आप सुन रहे थे अभी उमा देवी की आवाज़ में दर्द फिल्म के इस गीत को, और इस गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत दिया था नौशाद साहब ने।

बेटी फिल्म में ये आवाज़ थी खुर्शीद बानू की। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

0: 呀吼，哎呀吼，哎呀吼，哎呀吼，哎呀吼，哎呀吼，哎呀吼。
1: श्रोता साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं पुरानी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के अंतर्गत। और अभी जो आपने गीत सुना था वह था फिल्म एक थी लड़की, और गीत को लिखा था अजीज कश्मीरी ने, संगीत विनोद का था। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं। आपने सुना भी इस फिल्म के गीत को, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। लिखा था गीत को शायर जनाब मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत खयाम साहब का था। इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अगला प्रसारण अब से कुछ ही देर में।
1: प्यास आँखों की बुझा लो।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का

0: सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल टीटी, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूरा होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की उपस्थिति में अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के दौरान सेवा गतिविधियों, विकास कार्यों, लाभार्थियों की वास्तविक कहानियों, युवाओं की प्रतिभा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जन प्रतिनिधियों की भागीदारी को जोड़कर अभियान को सेवा से संकल्प की व्यापक यात्रा के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को सेवा दिवस के तहत दीप प्रज्वलन के साथ होगी। 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। इनके अतिरिक्त प्रमुख स्मारकों और पर्यटन स्थलों पर नमो सेवा थीम पर लेजर शो, तीर्थ स्थलों और शक्तिपीठों में राष्ट्र कल्याण एवं विकसित भारत के संकल्प के लिए महायज्ञ, 25 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम चौपालों का आयोजन किया जाएगा। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: सेवा संकल्प अभियान को लेकर मुख्यमंत्री ने कल प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों, महापौरों और जिला पंचायत प्रशासकों सहित नगर पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों के साथ भी वर्चुअल बैठक की।
3: मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी से इस अभियान में गांव से लेकर शहर तक समाज के हर वर्ग को जोड़ें। मुख्यमंत्री ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर की शाम आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम में लाभार्थी परिवारों के साथ दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही सरकार की योजनाओं से बने प्रमुख भवनों और विकास परियोजनाओं के स्थलों पर भी दीप जलाए जाएंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करें। समाचार कक्ष से रितेश।
1: उधर केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कल सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर देश के सभी राज्यों के नगर विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा शामिल हुए। श्री शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कुल 157 घंटे का अनवरत स्वच्छता अभियान प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में चलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में स्ट्रोक यूनिट, सुपर स्पेशलिटी ओपीडी और न्यूरो सर्जरी वार्ड का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं की शुरुआत भी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गंभीर रोगों वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सा देने के लिए सरकार ने विभिन्न अस्पतालों के बीच समन्वय स्थापित करने की शुरुआत की है।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी व स्ट्रोक के जो पेशेंट्स आते थे, न्यूरोलॉजी के, उनको तत्काल उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और सिविल अस्पताल के बीच में समन्वय स्थापित करते हुए और वहाँ के चिकित्सक आकर के यहाँ पर ओपीडी करेंगे।

0: मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि सिविल अस्पताल में सुविधाएं पहले उपलब्ध नहीं थी, अतः सिविल अस्पताल को उच्चीकृत करते हुए यहाँ पर चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ाने का काम किया है और इस प्रयोग को हम अन्य अस्पतालों में भी ले जाएंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। शिक्षकों के लिए स्पेशल TET 3 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने स्पेशल TET के आयोजन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 अक्टूबर है, वहीं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कल बिजनौर में महिलाओं से संबंधित विवादों पर जनसुनवाई की, साथ ही उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की दीदियों को संबोधित भी किया।
2: ये बहनें केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं है, बल्कि ये सभी बहनें विकसित भारत के संकल्प को लेकर अपनी प्रगति करने वाली सभी बहनें हैं। आप सभी वो शक्ति है जो परिवार को संवारती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य का निर्माण भी करती है।
1: सरकार ने 2 जिलों के जिलाधिकारियों सहित 5 IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे को बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, वहीं समीर अब जालौन के नए जिलाधिकारी होंगे। चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं का आगमन कल से ही होने लगा था। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु चित्रकूट पहुंचकर मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिर की परिक्रमा कर रहे हैं। वहां के पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाएं की हैं।
3: हमारे इस मेले की सुरक्षा में डिप्टी SP रैंक के 14 अफसर हैं, SO इंस्पेक्टर्स 15 लगे हुए हैं, 36 इंस्पेक्टर, 262 सब इंस्पेक्टर, 13 महिला सब इंस्पेक्टर, 820 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 125 महिला कांस्टेबल, ट्रैफिक के 18 उप निरीक्षक और 80 कांस्टेबल्स, PAC की 2 कंपनियां हैं, फ्लड प्लाटून भी हमारे पास 2 प्लाटून है।
1: प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वर्षा और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 26 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार निगरानी करते हुए राहत और बचाव कार्यों को संचालित कर रहा है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार कल 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस बीच राज्य की कई नदियां अब भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 4 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन किए जाएंगे। इटावा के जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव आरती द्विवेदी ने कल वहां राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दी। इस दौरान प्राधिकरण की सचिव ने अधिकाधिक पात्र वादियों से राष्ट्रीय लोक अदालत में आने की अपील की।
4: मेरी जनता से ये अपील है कि उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो अपने मुकदमों का निस्तारण हमारे पास आके करवा सकते हैं, ना उनसे हम कोई लफड़े छूट लें, और यदि पहले तो उनसे कोई जुबानी प्रकरण लंबित है और उसमें वो समझौता करते हैं तो न्याय शुल्क की वापसी की भी व्यवस्था है।
1: सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। संशोधित नियमों के तहत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को परखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सेवाकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने

0: लखनऊ के सिविल अस्पताल में नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा, अस्पतालों के बीच समन्वय से जनता को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षकों के लिए 3 नवंबर को होगी स्पेशल TET, 4 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और चित्रकूट में भाद्रपद अमावस्या मेला शुरू। मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाकर कामतगिर की परिक्रमा कर रहे हैं श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

श्रोता साथियों, आज जो है ब्रज माधुरी कार्यक्रम में हम आपके ताई लेके आए हैं रास लीला, और रास लीला में आज है प्रसंग माखन चोरी को। तो कान्हा की कैसी कैसी देखो लीलाएं हैं, और सब सहर जो है लीला है कान्हा की, वो मन भावनी है, मन को तो मोह ले है और मन चोराए ले है। अब देखो यह माखन चोरी लीला को देख लो, कैसे बढ़िया जो है कान्हा ने लीला करी है। तो या के यानी कि लेखक जो हैं स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा है, और प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की है। तो फिर आओ सुने रासलीला में आज माखन चोरी लीला।

0: हे सुदेवी जी, हे विशाखा जी, प्यारे श्याम सुंदर हमारे तुम्हारे घरंसों माखन मिश्री की चोरी करके ले जाए।
1: हाँ साची कह रही है सखी।
2: हाँ सखी।
0: पर सखियो, तुम में सो कोई ऐसी चतुर सखी है जो उनको पकड़ के और बांध के हमको दिखावे?
1: हाँ सखी, श्याम सुंदर को पकड़ के मैं दिखाए सकूं हूँ।
3: सखी कैसे पकड़ेगी उनको?
1: अरे सखी, मैं अपने घर में कोरे कोरे माट मटकान में दही दूध माखन मिश्री धर दूंगी सजाए के। जब वे आमेंगे ना चोरी करवे, झट उनको पकड़ लूंगी और तुम देख लीजो।
0: तो ठीक है सखी, हम अपने घर को जा रही हैं, तू पकड़ के राखियो उनको।
1: अरे ना ना ना, अभी मत जाओ, अभी उनको कीर्तन तो कराए के जाओ। जब हम कीर्तन करेंगी तभी तो वे यहाँ चोरी करवे आवेंगे।
3: करो सखियो।

0: अब हम अपने घर को जा रही हैं।
1: अरे सखियो तुम जाओ और संजा को आ जाइयो, श्याम सुंदर यहाँ बधे मिलेंगे।
0: ठीक है सखी,
1: जाओ जाओ जाओ। हाँ मैं अब जल्दी सो, श्याम सुंदर के ताई सुंदर सुंदर मटकान में दही दूध जमाए के धर दूं। आमेंगी देखेंगे, माखन नहीं मिलेगा तो लौट जाएंगे। हाँ मैं एक काम और करूँ, छिप जाऊं कहूँ, जब वे आमेंगे मोकू देखेंगे तो भीतर नहीं पधारेंगे, मैं छिप जाऊं।

कितने सुंदर दर्शन है रहे हैं। श्याम सुंदर तो बड़ी पक्की चोर चाल सो आए रहे। आहा कितनी सुंदर छटा है इनकी, जबई तो सब ब्रज में कहे हैं गोरस लोभी।

ये ब्रज की रसिया जो ठेरे जबई तो माखन के लोभ में देखो तो आहा कितने सुंदर लग रहे। अरे मेरो तो अभी सो मन इनके प्रति इतनो आकर्षित है रहे है, मैं कैसे पकड़ूंगी। हाँ जब ये माखन मिश्री खामेंगे, जब इनकी वास सुंदर

गज के रसिया जो ठेरे जबई तो माखन के लोभ में देखो तो आहा कितने सुंदर लग रहे। अरे मेरो तो अभी सो मन इनके प्रति इतनो आकर्षित है रहे है, मैं कैसे पकड़ूंगी। हाँ जब ये माखन मिश्री खामेंगे, जब इनके वहां सुंदर रूप के दर्शन करूंगी, तब इनको पकड़ूंगी। कैसे मलूक लग रहे हैं मेरे बाल कृष्ण।

श्याम सुंदर पकड़ लिए। अजी अब तुम कहां जाओगे भाज, चोरी करत फिरत नित घर घर, तुम्हें तनक न आवत लाज। अजी बांधूंगी मैं हाथ तिहारे, भले मिले हो आज, नारायण निज भवन होएगो नंद मेहर को राज। अजी तुम्हारो राज तो तुम्हारे नंद बाबा के यहाँ है, अब कहाँ जाएगो रे।

0: चोर महाराज कहाँ जाओगे, बांधूंगी तुम्हारे दोनों हाथन ने।
1: कहाँ कही सखी, ये तेरा घर है।
0: हाँ जी मेरा घर ना है तो का तुम्हारे बाबा को घर है।
1: अरे सखी आज तो मोती चूक पर गई।
0: चूक पर गई?
1: हाँ।
0: का भयो?
1: अरे सखी मैं जानो ये गेह आपनो याई धोखे में आयो। अरे सखी ये तेरा घर मैंने अपनो समझो, मैं याई धोखे में आ गयो, अब ना हांगो।
0: अजी जा कहाँ रहे हो, अब ना हांगो, चोरी करिए माखन मिश्री खायो है और तुमने मेरो घर जानो कोई बात ना है, पर जी माखन में हाथ चो है रहे।
1: अरे सखी देख मैं तेरे पाम पूजू, तेरी पैया परू, तेरी नाक रिगड़ू, तुमो को आज छोड़ दे फिर मैं तेरे घर में कबहू चोरी कर भी ना हांगो।
0: अजी मेरे यहाँ ना आओगे तो और सकीन के घर में तो जाओगे।
1: और काउ सकीन के घर को तेने ठेको ले राखो है।
0: अरे नेक्सी से तुम तो देखने में नेक्सी से लगो, बड़ी लंबी लंबी बात करो, चुपचाप हाथ आगे करो, बांधूंगी।
1: अरे सखी तू ना माने तो मैं तो को नाच गाय के दिखाए दूं, जब तो छोड़ देगी।
0: हाँ तुम नाच के दिखाओगी, अच्छा तुम नाच के दिखाए दो, फिर मैं सोचूंगी तुम्हें छोड़ू कि ना छोड़ू, नाच के दिखाए दो।

0: अजी
1: तुम्हारो नाचवो गायबो मोकु तो नेकौ चोखो नाय लगयो।
2: का कही सकी तोकु हमारो नाचवो नेकु अच्छो नाय लगयो।
1: नेकु चोखो नाय लगयो।
2: पतोय नाचवे में कितनो जोर परे।
1: कितनो जोर परे।
2: चोटी को पसीना एडी पे आ जाए इतनो जोर परे।
1: अजी तुम्हें पता माखन निकासे में कितनो जोर परे। तीन जगह ते कमर टेढ़ी करनी परे। अपनी मैयाए पूछियो और झट्टी वाय खा जाओ बंदरन को बांट दियो। ने कुछ जोर थोड़ी परे तुम पे।
2: अरे सखी तुमको मेरे मुखार बिंदे नहीं देख के ने कु दया ना आवे।
1: अजी कहा बताऊं श्याम सुंदर आपको जो मुखार बिंदे ने इतनो मलूक है यह देख के तो बड़ी दया आवे बड़ी दया आवे। पर जब तुम अवगुण करो हो ना जब ऐसी दिशा आवे कहा बताऊं जब तो पानी में वो आग लग जाए।
2: तो सखी तुम हमारे मुखार बिंद ये देखे करो यदि करतू तो नहीं देखोगी ना तो पानी में आग लगेगी ना।
1: अजीब बात ने मत बना जल्दी में अपने हाथ ले कहा तुम्हारे ले और
3: मन मुसो मुस्काए के दीनी भुजा पसार।
1: अरे
3: लाल लाल सुपल्लवन लखे बाल
1: रही डोरी ही ये हार। माखन में हाथ है रे रेशम की डोरी झट्टी फिसल जाए कैसे बांधूं कैसे कहा करूं।

0: कपड़े से बांधूं
1: देह सुधी।
0: अजी बांध रो को नहावे कहां बताऊं, सब आवयो पर तुम्हारे मुखार बिंदे देख के सब भूली सी है रही हूं, कहां बांधूं?
2: तो फिर बांध लेना।
0: अजी कैसे बांधूं कहां बताऊं, रेशम की डोरी माखन में हाथ तेरे झट ही फिसल जाए।
2: वाह सखी वाह, नाच न जाने आंगन टेढ़ो, एक तो तू पे बांध वो आवे ना है, और या रेशम की डोरी को और मेरी या कोमल कोमल बयान को दोष लगा रही होगी।
0: अजी अब बताओ कहां करूं?
2: देख सखी, तू कावा गुरु बना, जब आप ते बांध वो सीखियो, जब हमें बांधियो।
0: अजी जी तो बहुत लंबी बात कह दी, पहले कहो गुरु वे ढूंढूं, फिर वाय बनाऊं, फिर सीखूं, अब ऐसा करो आप ही सिखा दियो ना।
2: सखी मुंह पे तो बहुत जोर ते बांध वो आवे।
0: बहुत जोरन ते आवे?
2: हाँ।
0: अजी मनमोहन तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मुंह सिखा दियो।
2: अच्छा सखी तू लो लंबे हाथ कर।
0: लंबे हाथ तो कर दूं, पर मुंह ऐसो मत करियो को बांध के चले जाओ।
2: ना सखी तू बांधवे की तो खोलवे की तो चिंता ही मत करियो, मैं बिना कहे खोल दूंगा।
0: अच्छा लियो बांध दियो।
1: मनमोहन करी दियो
2: लपेट।
0: हाँ जी
2: सखी दो लपेट।
0: हाँ जी
2: सखी तीन लपेट।
0: अजी तीन तीन लपेट कर दे पर खोल दोगे ना?
2: तू खोल भी की तो चिंता ही मत करे, बिना कहे खोल दूंगा।
0: अच्छा लियो बांध जल्दी से खा
2: कर। एक गांठ।
0: अच्छा जी
2: सखी दो गांठ।
0: हाँ अजी दो दो गांठ लगाए देंगे, तीन तीन लपेट लगाए देंगे, अब तुम अब तो छोड़ दे, अब आएगो आएगो।
2: अब मुंह पे ना बांध दी जा।
0: अजय ना ना ऐसा मत करो, अजी गुरु जी ऐसा मत करो, बांध दे।
2: और सखी ऊपर ते ये गुर्र गांठ।
0: अच्छा कहा करूँ अब? अम्मो पे बांधो आएगो, अम्मो खोल दो, मैं यहाँ पे बांधूंगी।
2: अरे सखी तू यहाँ

0: अजी कृतार्थ है गया मुँह पे आएगा बांध में, खोलो मुँह को, खोलो जल्दी खोलो, मैं आपको बांधूंगी।
1: अरे सखी काके तू हमें बांधेगी, गुरु की विद्या गुरु पे ही चलानो चाहे।
0: अच्छा
1: अरे हमने तो तू बांध वो सिखाया, तू हमें ये बांधेगी। और सखी मेरे गुरु ने तो मुझे बांध वो सिखायो है, खोल वो तो मैं उन्हें जानू।
0: अजी जी कहा कह रहे हो तुम, जी कहा है रहे हो, मुँह को पहले बांध दिया कह रहे खोल बंदा, मुँह को जल्दी खोलो, मैं कहा करूँ, मेरी सास आ जाएगी और वो आ जाएंगे सब, मुँह को कहा कहेंगे कैसे करूँ मैं।
1: और सखी अब तो मैं

0: कन्हैया राम राम।
1: क्यों
0: क्यों बुला रहे है?
1: चोरी करवे ना चल रहे।
0: चोरी करवे?
1: हाँ।
0: अरे चोरी तो हमने करी ना, हमारे बाप ने करी ना, तू भली मांस के बेटी बेटा ने चोरी करवो से कह रहे।
2: कन्हैया भैया तू यार चोरी है छोड़ दे, हम तेरे हाथ जो रहे।
3: हाँ भैया ये चोरी को काम नहीं, को अच्छो ना है, चोरी है छोड़ दे।
4: अरे

0: अरे दादा, अरे एक तो तू बड़े गोप को है, तू चोरी करे, अरे हमारी सबकी हंसी होए, बदनामी होए, नौलाह गैया तेरे यहाँ दूध दे हैं, और फिर तू ब्रज गोप पीर के यहाँ चोरी करवे जाए।
1: अरे भैया, तेरी बरसाने ते सगाई की चर्चा चल रही है।
0: अरे हम में युवा सत्य है,

0: अरे कन्हैया, तेरी सगाई की चर्चा बरसाने ते चल रही है। यदि वहाँ वहाँ राजमहल में यह बात को सुनेंगे तो तेरी बदनामी होगी। सगाई की चर्चा जो सब समाप्त है जाएगी, तेरी कोई सगाई ना करेगा।
1: तू यह चोरी को छोड़, हम तेरे हाथ जोड़े भैया।

0: चोरी की ना ही सुन की तू रोवे क्यों लगे भाई?
1: अरे चुप मैं भी आके।
0: अरे दादा बता बता बता
2: भैया, मैं यामारी रो रहा हूँ कि माखन मिश्री की चोरी मुँह पे ना ही छूटे।
1: हाँ कन्हैया, तू तो मत छोड़ एक बार और हम ना छोड़े हजार बार।

0: कर ली। अजी अब तुम कहाँ वक्की जाओगी, अब तो मैं तुमको पकड़ के तुम्हारी मैया के पास ले जाऊंगी।
1: हाँ सखी, तू इनको मैया के पास ले जा। देख मोकू तो इन्हें उल्टे बांध के अठाड़ो कर रखे हुए, तू जा सखी इनको ले जा मैया के डोरे।
0: चलो जी।
2: अरे सखी देख, तू मोकू मैया के पास मत ले जाए, मैया मोकू मारेगी।
0: अजी तुमको पिटवे को डर हो तो चोरी कर भी ना आते, अब देर मत करो जल्दी चलो चलो
2: चल
0: चलो चलो
3: चलो।

0: मैया कौन है बेटी? मैया तुम नितप्रत कहो करें कि सखियों मोसों तुम्हारी काय बात की लड़ाई है। मेरे कन्हैया को तुम झूठो चोरी को नाम लगाओ हो।
1: कहा तुम्हारो बोसों।
0: तो मैया आज मैं आपके लाला को पकड़ के लाई हूँ, मेरे घर चोरी करवे गए।
2: कहा मेरे कन्हैया को पकड़ के लाई है?
0: हाँ मैया।
2: कहा है मेरो कन्हैया?
0: ये ठाड़े।
2: अरे कन्हैया,
3: मैया दंडोत।
2: अरे कन्हैया, तू बेटा या सखी के घर में चोरी करवे गयो?
3: मैया मैया सखी के घर में चोरी कर भी ना गयो।
2: झूठ बोल रहे हो। ये सखी कह रही है कि मेरे घर में चोरी कर भी गयो। हाँ, और तू ही पकड़ के लाई है। तू कह रहे हो कि चोरी कर भी ना गयो?
3: मैया मैं चोरी कर भी ना गयो, ई मोकू मार्ग में ते पकड़ लाई है।
2: तू झूठ बोल रहे हो। चोरी कर भी गए हो तू?
0: ये चोरी कर भी गए, ये झूठ बोल रहे हैं।

0: कन्हैया सखी के घर कब चोरी करवे चले गयो?
1: हाँ सखी, मेरो कन्हैया सवेरे गैया चरावे जाए, फिर कब तेरे घर चोरी करवे चले जाए।
2: भैया यहाँ ते तो ये गैया चरावे जाए, पर वहाँ ग्वाल वालन को गैयान पे छोड़ आमे और जब चोरी करवे आमे।
1: हाय सुच चतुर है गयो है, ग्वाल वालन को गैयान पे छोड़ आवे चोरी करवे आवे, तू है क्यों गयो आके घर में?

0: मैं तो छोटा सा हूँ और मेरी ये कोमल कोमल भैया है। ओ मैया, इन सखीन के छीके तो छत्तन पे लटके रहे हैं। अब तू ही बता, मैं इन सखीन के छीकिन पे ते मटकिन को कैसे उतार लूंगा।
1: मैया, ये आधे ग्वाल वालन को गैयान पे छोड़ा में, आधे को संगला में, और उनको घोड़ा बना के उनके ऊपर चढ़ के जब उतारे मटकी को। हाय,
2: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे ये रासलीला के अंतर्गत आज स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा की का लिखा हुआ ये प्रसंग माखन चोरी, प्रस्तुति नरेश मल्होत्रा की थी। आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम यही विश्राम ले। आप सब उनको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
3: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: और अब मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि। अमरीकी ट्रंप प्रशासन ने नौकरी जाने के बाद H-1B कर्मचारियों के लिए 60 दिन की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। और भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिवसीय इस सम्मेलन के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख विकासशील देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस वर्ष ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन हिस्सा लेंगे। अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में शामिल होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नई दिल्ली पहुंच गए। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पहुंचने पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस के बीच लंबे समय से विशेष रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मजबूत और बहुआयामी संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की भी संभावना है। श्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: ब्रिक्स समूह का गठन सितंबर 2006 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। वहीं सितंबर 2010 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ ब्रिक का विस्तार हुआ और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण अफ्रीका ने अप्रैल 2011 में चीन के सान्या में आयोजित तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार भाग लिया। जनवरी 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के पूर्ण सदस्य बनने के साथ ब्रिक्स का और विस्तार हुआ। भारत ने इस वर्ष 1 जनवरी को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली। यह चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ब्रिक्स व्यापार मंच 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। एक दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों के 1000 से अधिक कारोबारी, व्यापार मंत्री, वित्तीय क्षेत्र के नेता, वैश्विक निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन ब्रिक्स व्यापार परिषद द्वारा फिक्की, CII और एसोचैम के सहयोग से किया जा रहा है। ये सम्मेलन 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला प्रमुख कारोबारी कार्यक्रम है। इस सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इन्क्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सामान्य रूप से चलती रहेंगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सिलवासा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राजकीय महाविद्यालय में सार्वजनिक

0: समारोह में भाग लेंगे। वे सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर और नमो आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान सहित प्रमुख संस्थानों का भी दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति दमन में नमो अस्पताल भी जाएंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण के संचालन दिशा निर्देश जारी किए। श्री चौहान ने कहा कि इस कार्यक्रम से ग्रामीण नागरिकों, किसानों और संपत्ति मालिकों के लिए जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि भूमि से जुड़े दस्तावेज सही और आसानी से उपलब्ध होना बेहद जरूरी है।
1: अब सभी भूमि के रिकॉर्ड डिजिटाइज किए जा रहे हैं और अब ऑनलाइन और पारदर्शी प्रक्रिया से कोई भी उनको आसानी से प्राप्त कर सकता है। रजिस्ट्रार जो ऑफिस थे उनको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां नागरिकों को बैठने का स्थान होगा, लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, आसानी से पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा वो कहीं से भी अपने रिकॉर्ड्स को प्राप्त कर सकेंगे।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि उचित वैज्ञानिक उपायों, नीतियों और बाजार सहयोग से सूखे क्षेत्रों को भारत के लिए ताकत का स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए।
1: हमें ये तय करना होगा कि 2047 तक ड्राई लैंड में पानी की उत्पादकता कितनी बढ़ानी है, मिट्टी का स्वास्थ्य कितना सुधारना है, दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, आयात निर्भरता भी घटाना है, किसान की आय बढ़ाना है और जलवायु सहनशीलता को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का सातवां संस्करण आज मुंबई में संपन्न हो रहा है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: चार दिवसीय ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में फिनटेक के भविष्य पर व्यापक चर्चा हो रही है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्लोबल फिनटेक फेस्ट को संबोधित करेंगे। कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष सुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित सत्रों को संबोधित किया था। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को दुनिया की आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख आधार बताया है। यह बयान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था की 7.8% की वृद्धि के बाद आया है। मुद्रा कोष के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी मुख्य वजह सेवाओं और निर्यात में हुई बढ़ोतरी है। ट्रंप प्रशासन ने H-1B कर्मचारियों और कई अन्य रोजगार आधारित वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद भी अमेरिका में 60 दिन रहने की छूट अवधि को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। गृह सुरक्षा विभाग का ये प्रस्ताव आज फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित होगा। एक रिपोर्ट।
6: इस बदलाव के बाद नौकरी जाने पर नई नौकरी तलाशने या वीजा की दूसरी व्यवस्था करने के लिए मिलने वाला समय काफी कम हो सकता है।

0: ये प्रस्ताव E1, E2, E3, H1B, H1B1, L1, O1 और TN जैसी वीजा श्रेणियों और उनके आश्रितों पर लागू होगा। अगर ये प्रस्ताव अंतिम रूप लेता है तो लोगों की नौकरी या वीजा से जुड़ी पात्र गतिविधि समाप्त होने के बाद उन्हें तुरंत अमेरिका छोड़ना होगा या उन्हें वहां रहने के लिए कोई दूसरी कानूनी अनुमति लेनी होगी। विभाग के अनुसार प्रस्ताव का उद्देश्य पहले की व्यवस्था को बहाल करना है। इसके तहत प्रायोजक नियोक्ता की नौकरी खत्म होते ही कर्मचारी को अमेरिका छोड़ना होता था। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षार्थी 13 सितंबर तक यूजीसी नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अंग्रेजी और वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा कल आयोजित की गई थी। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराया। भारत के 150 रन के लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश 109 रन ही बना सकी। शेफाली वर्मा को 64 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। केरलम के कई हिस्सों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने पथनम थिट्टा, कोट्टयम, एर्नाकुलम और इडुक्की जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पथनम थिट्टा, एर्नाकुलम, इडुक्की और पलक्कड़ जिलों में कल भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। इस बीच कल रात 11 बजे से केरलम तट पर ऊंची लहरों के कारण तटीय कटाव की आशंका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी दिन के दौरान भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल तक उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण सहायता शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत दिल्ली सरकार के खेल केंद्रों और स्टेडियम में नियमित प्रशिक्षण लेने वाले पात्र खिलाड़ियों को हर महीने 2000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@airnewshindi और public@airnewsalerts को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद फरहत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमानों का राजधानी दिल्ली में आगमन और रोशनी से जगमगाता भारत मंडपम आज सभी समाचार पत्रों में है। हिंदुस्तान लिखता है ब्रिक्स के लिए आज से दिल्ली किले में तब्दील, पुतिन मोदी की मुलाकात आज। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री मोदी का चित्र साझा करते हुए लिखा है बढ़ता दायरा, बदलता विश्व, अक्षर से महाशक्ति बनने का सफर, ग्लोबल पावर का नया ध्रुव ब्रिक्स। अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। जनसत्ता की खबर है, लोकसत्य लिखता है प्रधानमंत्री मोदी का अंतरिक्ष में सहयोग को प्राथमिकता देने का आह्वान। अगस्त में बाजार 2% गिरा, फिर भी रिकॉर्ड 32,000 करोड़ SIP। दैनिक भास्कर ने यह खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है। शहरों से ज्यादा गांवों में बिक रहे दोपहिया, 55% पहुंची हिस्सेदारी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटी बाइक पहली पसंद, वहीं महाराष्ट्र और बिहार में बड़े इंजन पर जोर, दैनिक भास्कर के बिजनेस पन्ने की खबर है। दैनिक जागरण ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कश्मीरी कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देने का समाचार सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है जन्नते कश्मीर में 4 दिन तक चला बॉलीवुड के दिग्गजों का मेला, बॉलीवुड का वादा, कश्मीर को फिर बनाएंगे फिल्मों की जन्नत।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था में 7.8% की वृद्धि के बाद भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की दोबारा हुई परीक्षा की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत साथियों आप सबकी नजर इस गीत से है।

साथियों, आपने अभी सुना मन्ना डे साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म उजाला के इस गीत को। शब्द रचना थी शायर जनाब हसरत जयपुरी साहब की और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए अब सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आपने अभी सुना था लता मंगेशकर की आवाज में शराफत फिल्म के गीत को। आनंद बख्शी के लिखे इन बोलों को धुन से संवारा था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने।

आपने अभी सुना किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अपना बना लो का ये गीत, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। साथियों, आप इस वक्त आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि के अंतर्गत, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे दलाल फिल्म के गीत को कविता कृष्णमूर्ति और कुमार शानू की आवाज़ में। गीत को लिखा था अनजान ने और संगीत दिया था बाप्पी दा ने। अब ये अगला गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार शानू की आवाज़ में कुमार फिल्म चमत्कार का ये गीत। और आज का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, आइए सुनते हैं ये स्वास्थ्य कार्यक्रम में डॉक्टर पार्थ भार्गव की वार्ता। विषय है बरसात में होने वाली बीमारियां और उनसे बचाव।
1: आप सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्थ भार्गव और आज मैं एक ऐसे विषय बात करने वाला हूं जो कि हम सभी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियां और उनके बचाव। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, हरियाली और मौसम में बदलाव लेकर तो आता ही है, लेकिन इस मौसम में कई तरह के डिसीजेज और हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर भी देखने को मिल जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि बारिश

से भीग गए थे इसलिए बुखार हो गया, मच्छर बहुत हो गए थे इसलिए डेंगू का डर लग रहा है। इस मौसम में सर्दी जुकाम तो होना ही है, लेकिन क्या वास्तव में बारिश में बीमार पड़ना तय है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम थोड़ी सी भी सावधानी रखें तो बरसात में मौसम में होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बारिश के मौसम में बीमारी का खतरा क्यों बढ़ जाता है। दरअसल बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है, कई जगह पर पानी जमा हो जाता है, गंदे पानी और कचरे कारण बैक्टीरिया और अन्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। इसके अलावा जगह जगह पर पानी जमा होने के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है और यही मच्छर आगे चल के डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलाने का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर पीने का पानी दूषित हो जाए या खाने को ठीक तरह से साफ सुथरा ना रखा जाए तो उल्टी, दस्त, टाइफाइड और अलग अलग पेट संबंधी बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है। और अधिक नमी के कारण कुछ लोगों में फंगल इन्फेक्शन, खुजली यानी दाद या खाज या रिंग वॉर्म जैसी अन्य संबंधित बीमारियां जो त्वचा संबंधी होती हैं वो देखने को मिल सकती हैं। इसलिए बारिश में मुख्य रूप से तीन चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। पहला स्वच्छ पानी, दूसरा स्वच्छ भोजन और तीसरा मच्छरों से बचाव। चलिए अब बात करते हैं बीमारियों के बारे में, उनके सिम्टम्स और उनके कॉजेज के बारे में और उनसे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं बारिश में होने वाली सबसे आम समस्या की, जो कि है सर्दी, खांसी, गले में खराश और वायरल फीवर। बारिश के मौसम में तापमान और वातावरण में अचानक बदलाव, बारिश में भीगने के बाद लंबे समय तक गीला रहना और किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, इन सभी कारणों से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल एंड बैक्टीरियल फीवर का इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है। अगर आपको या किसी व्यक्ति को जो कि आपके आसपास हैं उन्हें हल्का बुखार, नाक बहना, छींक, गले में खराश, हल्की खांसी या ठंड लगकर बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले आप खुद को या उस व्यक्ति को बोलें कि वह आराम से रेस्ट करें, अच्छा खाना खाएं, साफ पानी पिएं और खुद का सही ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे मामलों में शरीर का इम्यून सिस्टम भी इन्फेक्शन से लड़ने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए अच्छी नींद, पौष्टिक भोजन और पर्याप्त हाइड्रेशन को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हर किसी पर्सन के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दवा अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो काफ़ी कॉमनली प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जिनमें से एक है एकोनाइट नेपलस। लेकिन किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम सुन के उसे खुद से शुरू करना सही नहीं है। आप पहले किसी डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद ही कोई दवा शुरू करें। अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी का जिसका नाम सुन के लोगों में चिंता होने लगती है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एडीज मच्छर काटने से फैलती है, जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर और जोड़ों में दर्द, कमजोरी तथा कई बार स्किन पर रैशेज जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि हर बुखार डेंगू नहीं होता, इसलिए केवल सिम्टम्स के आधार पर खुद को डेंगू की दवा शुरू करना सही नहीं है। डॉक्टर सलाह लीजिए और आवश्यकता पड़ने पर NS1 या CBC नाम की जांच करवानी चाहिए। होम्योपैथी की बात करें तो बुखार और डेंगू के मामले में होम्योपैथिक दवाओं का चयन व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यूपिटोरियम परफोरेटम, सिंकोनोफिशनलिस, फेरमफॉस, यह कुछ काफ़ी कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसका उपयोग चिकित्सक डेंगू लाइक फीवर में करते हैं, लेकिन इसे भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। और डेंगू से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि मच्छरों को पैदा ही ना होने दें, घर के आसपास कहीं पानी जमा ना होने दें। अब बात करते हैं मलेरिया की। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने के कारण मच्छरों की संख्या बढ़ने को देखने को मिलती है और मलेरिया के मामले भी इसलिए बढ़ जाते हैं। मलेरिया इन्फेक्टेड एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। इस बीमारी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये रहता है कि ठंड लगकर कपकपी होना, फिर तेज पसीना आना, सिर दर्द, शरीर में दर्द और काफ़ी कमजोरी महसूस होने लगती है। कई बार मरीज को लगता है कि यह सामान्य वायरल बुखार है, लेकिन अगर बुखार बार बार आ रहा है तो उसके साथ ठंड लगकर कपकपी आ रही है और ये पैटर्न देखने को मिल रहा है तो मलेरिया की जाँच करवाना बेहद ज़रूरी है। होम्योपैथी में मरीज के बुखार के पैटर्न के ऊपर और उसकी सारी कंडीशंस को देखते हुए मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। जैसे चाइना, जेलसीमियम, रस्टॉक्स, ये कुछ विशेष परिस्थिति में लक्षणों के आधार पर दी जाती है। एंड मेन थिंग

प्रिवेंशन को बिल्कुल भी ना भूलें। मच्छरों से बचाव ही मलेरिया से बचने का सबसे अच्छा कदम है। आसपास पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें। और अगर बरसात में बुखार आए तो उसे सिर्फ मौसम का बुखार समझ के टालें ना। अब बात करते हैं चिकनगुनिया की, एक ऐसी बीमारी जिसमें बुखार के साथ साथ जोड़ों का दर्द सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला लक्षण बनता है। बरसात के मौसम में इसके मामले भी देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया में अचानक तेज़ बुखार के साथ साथ हाथ पैर के छोटे और बड़े जोड़ों में दर्द, सूजन, अकड़न देखने को मिलती है। और इस बीमारी की खास बात यह है कि बुखार ठीक होने के बाद भी कुछ लोगों में जॉइंट पेन, स्टिफनेस काफ़ी लंबे समय तक बनी रहती है। इसलिए इन लक्षणों को केवल सामान्य कमजोरी समझ कर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। होम्योपैथी में लक्षणों के अनुसार मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है। रस्टॉक्स इसकी एक कॉमन मेडिसिन है। और हाँ, चिकनगुनिया से बचाव के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मच्छरों को पनपने का मौका ना दें और मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ करें। बारिश के मौसम में कई जगह पानी के स्रोत दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो दस्त, पेट दर्द, वोमिटिंग, इंडाइजेशन और कई तरह के GIT इन्फेक्शन हो सकते हैं। स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों में बार बार उल्टी, दस्त होने पर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बन जाती है और इसे हल्के में ना लें। होम्योपैथी में भी डायरिया और GIT इन्फेक्शन के लिए अलग अलग मेडिसिन हैं, जैसे पोडोफाइलम, ब्रायनिया, लेकिन इनके सिम्टम्स के अनुसार इन्हें कंसिडर किया जाता है। लेकिन यहाँ ट्रीटमेंट से ही महत्वपूर्ण बात यह है कि साफ पानी पिएं और सही हाइड्रेशन रखें। अगर उल्टी दस्त हो रहे हों तो ORS का इस्तेमाल करें। इसलिए बारिश में एक आसान नियम याद रखें कि पीने के लिए साफ पानी, सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करें। ज़रूरत हो तो पानी को उचित तरीके से बॉयल करें, फिल्टर करें और उसके बाद में उसे पिएं। और बाहर मिलने वाले खुले खाद्य पदार्थों से बचें। अब बात करते हैं एक ऐसी समस्या की जो कि बारिश में बहुत आम हो जाती है, जो कि है फूड पॉइजनिंग और पेट से जुड़ी परेशानियाँ। बारिश के मौसम में वातावरण में नमी बढ़ जाती है और खाने पीने की चीज़ों को अगर सही तरह से ध्यान ना दिया जाए, स्टोर ना किया जाए तो वो खराब हो सकते हैं। खासकर खुले में रखे हुए खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल, सड़क के किनारे मिलने वाली खाना जो कि कंटामिनेटेड हो सकता है, वो पेट के दर्द का या पेट के इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं। ऐसे में पेट दर्द, उल्टी, दस्त, कमजोरी जैसी शिकायतें भी हो सकती हैं। होम्योपैथी में ऐसे डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स के लिए आर्सेनिक एल्बम एक काफ़ी अहम मेडिसिन है। प्रिवेंशन के लिए बात याद रखें कि ताज़ा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं और साफ खाना और साफ सुथरा खाना जो कि अच्छी तरीके से स्टोर किया हो वही खाएं। खाने से पहले हाथ जरूर धोएं और कच्चे खाने को ना खाएं। अब बात करते हैं बारिश में होने वाली सबसे आम परेशानी की, जो है स्किन इन्फेक्शन एंड फंगल इन्फेक्शन। बारिश के मौसम में पसीना, नमी और गीले कपड़े हमारी त्वचा से लंबे समय तक मॉइस्ट रखते हैं। यही वजह है कि खासकर जांघ के बीच, बगल में, पैरों के बीच में और स्किन फोल्ड्स में फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसमें अक्सर तेज खुजली, रेड रैशेज, जलन और स्किन पर गोल गोल फैलते निशान दिखाई दे सकते हैं। होम्योपैथी में स्किन कंप्लेन का असेसमेंट केवल रैश देख के नहीं बल्कि उसके पूरे सिम्टम्स के पैटर्न के बेसिस पे किया जाता है। जैसे सल्फर इसमें काफ़ी अहम मेडिसिन है। हाँ, लेकिन हर खुजली या रैश फंगल इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है और बिना किसी डॉक्टर के सलाह के बार बार स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम लगाना अवॉइड कीजिए। ऐसी क्रीम्स जो खुजली को, रेडनेस को कुछ समय के लिए कम जरूर कर देती हैं लेकिन उसके बंद करने के बाद भी वो खुजली या रैशेस बढ़ जाते हैं। बचाव के लिए कुछ छोटी छोटी बातें बहुत काम आती हैं। गीले कपड़े अगर आप पहने तो उसे तुरंत बदलें, शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, पैरों को सूखा रखें, सॉक्स तथा शूज को नियमित रूप से चेंज करें। अगर खुजली या रैशेज लगातार बढ़ रहे हों, फैल रहे हों और ट्रीटमेंट के बाद भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हों तो डॉक्टर को इसके बारे में बताइए, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाइए और मेडिसिन लीजिए। याद रखिए, बरसात में त्वचा को साफ रखने के साथ साथ उसे सूखा रखना भी बेहद जरूरी है। बारिश के पानी और कीचड़ में चलने के कारण पैरों की समस्याएं भी अधिक देखने को मिलती हैं। गीले जूते, मोजे लंबे समय तक पहनने से फंगल इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए घर पर आने के बाद में पैरों को धोकर, सुखाकर तब आप बैठें, पैरों को गीला ना छोड़ें। अगर जूते गीले हो गए हों तो उन्हें अच्छी तरीके सुखाकर ही पहनें। अब एक बहुत ज़रूरी बात, बरसात के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना चाहिए। बच्चे अक्सर बारिश में खेलने में, पानी में कूदने में,

0: बाहर का खाना खाने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे गंदे पानी में या जमा हुआ पानी में ना खेलें और बाहर का खाना ना खाएं, खासकर बारिश के मौसम में। बच्चों में बीमारी के लक्षण कभी कभी तेजी से देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अगर बच्चे को लगातार बुखार, बहुत ज़्यादा सुस्ती, बार बार उल्टी, दस्त या सांस लेने परेशानी हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसका उपचार शुरू करवाएं। होम्योपैथी में भी बच्चों और बुजुर्गों की कंप्लेंट्स में मेडिसिन का चुनाव उनकी उम्र, सिम्टम्स और ओवरऑल कंडीशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए बच्चों केवल कम उम्र या किसी एक सिम्टम के आधार पर कोई मेडिसिन देना शुरू न कीजिए और खुद से कोई मेडिसिन नहीं दीजिए। एक डॉक्टर से मिलिए, फिर ही कोई मेडिसिन शुरू कीजिए। बुजुर्गों के मामले में भी विशेष ध्यान रखना जरूरी है। लगातार बुखार, बहुत ज़्यादा कमजोरी, चक्कर, कम पेशाब या डिहाइड्रेशन के संकेत अगर दिखाई दें तो उसे सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज ना करें। बुजुर्गों और बच्चों में पानी कमी ना होने दें, साफ सफाई का ध्यान रखें, बीमारी की शुरुआत की संकेत को पहचानें और उनका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि बारिश के मौसम में प्रिवेंशन जितना जरूरी है उतना ही जरूरी ट्रीटमेंट लेना भी है और खुद का ध्यान रखना भी है। अब एक बहुत सामान्य सवाल जो शायद आप में से बहुत लोगों के मन में आता होगा, क्या बारिश में भीगने से सीधे बीमारी हो जाती है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। केवल बारिश में भीग जाने से अपने आप कोई बीमारी या इन्फेक्शन नहीं होता है। किसी इन्फेक्शन के लिए आमतौर पर बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शरीर में प्रवेश करना बेहद जरूरी है, इसलिए इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी शरीर के इन इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाँ, बारिश के मौसम में भीगने के बाद अगर शरीर लंबे समय तक गीला रहे और ठंडा रहे, नींद पूरी ना हो, खान पान खराब हो या हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो शरीर पर बीमारियाँ हो सकती हैं, और अगर एक्सेसिव स्ट्रेस भी रखा जाता है तो भी शरीर को बीमारी हो सकती है। कॉन्टामिनेटेड फूड से दूर रहें, इन्फेक्टिव व्यक्ति के संपर्क में आए से बचें। अगर आप ये करते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर आप बारिश में कहीं भीग जाएं तो घबराने की जरूरत नहीं है। घर आने के बाद गीले कपड़ों को तुरंत बदलें, शरीर को अच्छी तरह सुखाएं, पर्याप्त आराम करें, पौष्टिक खाना खाएं और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर एक्सरसाइज और हाइजीन का बेहद ख्याल रखें। अब मैं आपको बरसात में स्वस्थ रखने के लिए 7 आसान नियम बताना चाहता हूँ। पहला, साफ पानी पिएं। दूसरा, ताज़ा खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं। तीसरा, घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। चौथा, मच्छरों से बचें। पांचवा, गीले कपड़े और लंबे समय तक जूते ना पहनें। छठा, हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखें। सातवां, तेज बुखार को नज़रअंदाज ना करें और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। याद रखिए, बीमारी का इलाज करने से बेहतर है बीमारी का बचाव करना। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर पार्थ भार्गव की ये वार्ता। विषय था बरसात में होने वाली बीमारियाँ और उनसे बचाव।

0: एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। 9:15 होने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला प्रसारण।
1: Do you remember the wonderful nights and the days we spent together?

0: सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बस्ती और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बस्ती जिले की हलचल, आलेख और स्वर है अमित सिंह का।
2: बस्ती जिले में घाघरा और कुआनो नदियों के जलस्तर बढ़ने से एक दर्जन गांव में घुसा पानी और एक दर्जन से अधिक गांव प्रभावित। बस्ती जिले में नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण घाघरा कुआनो नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई हैं, तो करीब एक दर्जन गांव मैरून हो गए हैं, जबकि दो दर्जन से अधिक गांव पानी से प्रभावित हो गए हैं। जिले के हरैया और बस्ती सदर तहसील के एक दर्जन से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित। ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर बांधों और शरणालयों में शरण लिए हैं। जिला प्रशासन राहत बचाव के साथ बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया।

0: बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव और स्टीमर लगाए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशना ने बताया कि
1: बाढ़ क्षेत्र में हम लोग पहले भी आए थे, तब थोड़ा कटान हो रहा था और जो रेस्टोरेशन वर्क था वो किया जा रहा था। इस बीच में क्योंकि कटान थोड़ा और ज्यादा हुआ था, और कप्तान साहब थाना दिवस के पहले वहाँ गए थे। हमने पूरी अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे सबके साथ वहाँ पे विजिट की थी। रेस्टोरेशन वर्क वहाँ पे काफी ठीक तरीके से किया गया है और कोई भी आबादी अभी फिलहाल वहाँ पे प्रभावित नहीं।
0: बस्ती जिले के वाल्टरगंज के तत्कालीन थाना अध्यक्ष सूर्यप्रकाश सिंह की फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक एक महिला और उसके साथियों पर हनी ट्रैप के जरिए लोगों को फंसाने, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और लाखों रुपए वसूलने का आरोप है। इस संबंध में बस्ती के पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव त्यागी ने बताया कि
2: जब ये गैंग का खुलासा हुआ है तो निकल के आया कि इस तरह के और भी कई प्रकरण हैं जिसमें ये गैंग इन्वॉल्व है। वो बार बार एसओ को निगोशिएट करने के लिए अमाउंट बुला रहे थे। ये लोग उनसे 1 करोड़ रुपए वसूलने की प्रयास में थे। इसी तरह से मध्य प्रदेश में एक बिजनेसमैन को इन्होंने अपने हनी ट्रैप में फंसा के उससे भी 1 करोड़ रुपया मांगने का प्रयास किया जा रहा था। जो इन्होंने संपत्ति पिछले समय में हनी ट्रैप के मामलों से अर्जित करी है, इसको 107 BNS की धारा के अंतर्गत जब्त करवाया जाएगा।
0: बस्ती में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच के दौरान सामने आए 1017 लाइसेंसों को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारी की भूमिका सामने आने के बाद 4 कर्मचारियों के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। RTO बस्ती की ओर से दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद संबंधित सेवा प्रदाता कंपनी पर भी कार्रवाई की तैयारी है। फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात सामने आई है। RTO फरीउद्दीन के मुताबिक उच्चाधिकारियों से मिले निर्देश के क्रम में 4 कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इस संबंध में RTO बस्ती फरीउद्दीन ने बताया कि
3: जांच के उपरांत जो आउटसोर्स कर्मचारी है सेवा प्रदाता कंपनी, उनके कर्मचारियों की भूमिका सामने आई थी, जिसके क्रम में RTO प्रशासन बस्ती श्रीमती माला वाजपेयी के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारी जो 4 कार्य थे उनके विरुद्ध FIR दर्ज करा दी गई है। पुलिस के द्वारा विवेचना करके आगे कार्रवाई की जाएगी। लगभग 1017 ड्राइविंग लाइसेंस के फर्जी तरीके से बनाए जाने की मामला जो है जांच समिति के द्वारा बताया गया है, और इन सभी ड्राइविंग लाइसेंस के धारकों को विभाग के द्वारा नोटिस प्रेषित किए जा रहे हैं और इनके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित करने की कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएगी।
0: बस्ती के मंडलायुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट योजना के अंतर्गत मंडल स्तर पर बृहद रूप में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कराकर निवेश कर उद्यमियों को रोजगार प्रदान कराना है। विभागीय अधिकारी मंडल के उद्यमियों की इकाइयों की स्थापना एवं निवेश तथा स्वरोजगार में आ रही समस्याओं का त्वरित गति से समाधान कराएं। संयुक्त आयुक्त उद्योग बस्ती मंडल गौरव मिश्रा ने बताया कि बस्ती जनपद में कुल 183 इकाइयों द्वारा 2,206 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश एवं 7,138 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है, जबकि सिद्धार्थ नगर में 72 इकाइयों द्वारा 2,266 करोड़ की पूंजी निवेश एवं 5,812 व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित है। संत कबीर नगर में कुल 98 इकाइयों द्वारा 564 करोड़ 38 लाख का पूंजी निवेश एवं 2,949 व्यक्तियों का रोजगार प्रस्तावित है। मंडल में कुल 353 निवेशकों द्वारा 5,036 करोड़ 58 लाख रुपए का पूंजी निवेश एवं 15,899 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। उक्त के सापेक्ष मंडल में कुल 310 निवेशकों के रुपए 2,787 करोड़ 28 लाख रुपए के निवेश प्रस्तावित धरातल पर आए, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 10,825 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। मंडलायुक्त ने विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना ODOP वित्त पोषण योजना तथा निवेश मित्र पोर्टल पर लंबित मामलों का गहनता से समीक्षा किया। बस्ती जिले में चीनी की उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था को लेकर जिला अधिकारी कृतिका जोशना ने कलेक्टर सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आम जन को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने तथा आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से चीनी की वर्तमान उपलब्धता, आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जनपद में चीनी की उपलब्धता को लेकर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। संबंधित अधिकारी नियमित रूप से स्टॉक की निगरानी करें और आवश्यकता के अनुसार समय से आपूर्ति सुनिश्चित कराएं। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि चीनी के वितरण में किसी भी स्तर पर अनियमित

0: ता कालाबाजारी या जमाखोरी की शिकायत मिलने पर तत्काल जांच नियमानुसार कार्रवाई की जाए, साथ ही निर्धारित दर एवं मानकों के अनुरूप उपभोक्ताओं को चीनी उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जाए।
1: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद नईम का।
2: बदायूं जिले में लगातार हो रही बारिश और डैमों से पानी छोड़े जाने के कारण दातागंज तहसील क्षेत्र में बहने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर आसपास के गांवों में पहुंचने से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधि और जिला प्रशासन ग्रामीणों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने बाढ़ प्रभावित ग्राम जटा का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता अनुसार प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमें नियमित रूप से पहुंच रही हैं अथवा नहीं। शिक्षक दिवस पर योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में आयोजित राज शिक्षक पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया, जिसका सजीव प्रसारण बदायूं में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में सदर विधायक महेश चंद गुप्ता, बिलसी विधायक हरीश शाक और मुख्य विकास अधिकारी गामनी सिंगला सहित अन्य अधिकारियों शिक्षक शिक्षिकाओं ने देखा। इस दौरान CDO गामनी सिंगला ने कहा कि शिक्षक समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि उनके नवाचार, समर्पण और अनुभव से अन्य शिक्षक भी प्रेरणा लेकर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। नवाचार के अंतर्गत उमंग एक पहचान कार्यक्रम जनपद के परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक और सविलियन विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा को निखारने और जीवन कौशल के लिए विभिन्न शैक्षिक प्रतियोगिताएं कराए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों देश के युवाओं के साथ सीधा संवाद किया। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़े। बदायूं VIMT और राजकीय महाविद्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छात्र छात्राओं को दिखाया गया। इस दौरान सदर विधायक महेश चंद गुप्ता ने कहा कि आज देश के युवा विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलों से शरीर में जोश, स्फूर्ति और ताकत आती है। लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ो, मंजिल जरूर मिलेगी। किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत खुद मेहनत की मोहताज होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि देश का युवा आगे बढ़कर विश्व में नाम रोशन करे। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में उद्यमी प्रोत्साहन अभियान के अंतर्गत बीते दिनों बदायूं के डाइट परिसर स्थित ऑडिटोरियम में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र बदायूं द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित योजनाओं पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य जिले के उद्यमियों, युवाओं और नए उद्यम स्थापित करने के इच्छुक लोगों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना रहा। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी गामनी सिंगला के द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम योजना, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना, औद्योगिक आस्थान प्रबंध समिति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के प्रदर्शन में तेजी लाने और त्वरित संबंधी कार्यक्रम व उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य विकास अधिकारी गामनी सिंगला ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और उचित मार्गदर्शन के उद्देश्य से छात्र छात्राओं के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान छात्र छात्राओं ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी सहित विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्य विकास अधिकारी ने छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में उचित मार्गदर्शन देते हुए नियमित अध्ययन, लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी करने और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित किया। बदायूं जिले के कादर चौक रोजहानी ब्लॉक के गांव अलापुर चमारी, चेतु नगला, निजामपुर के 13 लोगों की बागपत में एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण सड़क हादसे में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने पूर्व मंत्री आबिर रजा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, हमारी पूरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। पूर्व मंत्री आबिर रजा ने कहा कि एक्सप्रेस वे पर एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

0: बजने दे जरा।
1: जी हाँ, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है।
2: कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत आइए हेमंत झा से ये सुनते हैं जानकारी। विषय है

विकास का एक पक्ष यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के फलस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 13 लाख हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। बढ़ती हुई आबादी की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ी, चरागाह, ऊर्जा की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। वनों की निरंतर कटाई के फलस्वरूप किसानों के लिए मैदानी खेतों में बाढ़ या सूखे की स्थिति बन गई है। दूसरे शब्दों में यूं कहा जाए कि देश को प्रदूषण, वन विनाश और मरुस्थलीकरण की स्पष्ट जीवन संकटमयी चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ रहा है। यदि समय रहते हम अपने तुरंत के स्वार्थों में लिप्त होकर गांवों में पेड़ पौधों को काटते रहे तो पर्यावरण का पतन हो जाएगा और जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव औसत तापमान को बढ़ाकर हमारे कृषि प्रधान देश को नष्ट कर देगा। और यह भी सुनिश्चित है कि स्थानीय संसाधनों व जंगलों के क्षीण होने पर इसका विस्तृत क्षेत्रों पर परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। अतीत में हम अपने ग्रामीण संस्कृति व पर्यावरण को शुद्ध रखने के प्रति संवेदनशील रहे हैं, लेकिन अब हम परिस्थितिवश और परिवेशगत तनावों को पैदा कर वनों को पतन करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। अतः हमारी सामाजिक परिस्थितियों में सामाजिक वानिकी की योजनाओं का निर्माण करते हुए उसकी सफलता के साथ क्रियान्विति प्रभावशाली ढंग से की जाए। सामाजिक वानिकी एक विकासात्मक आयोजन है जिसमें नीति निर्धारण और परियोजना क्रियान्विति के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अधिकार, भूमिका, लाभ और सहभागिता को विस्तृत रूप प्राप्त होगा। हमारे देशवासी वैदिक काल से वृक्षों एवं नदियों को पूजते आ रहे हैं। तुलसी, वट, पीपल, बेल व आंवला आदि वृक्षों की आज भी हम पूजा करते हैं। जब जनसंख्या व संसाधनों में संतुलन था तब प्रत्येक गांव, कस्बा, शहर अपनी अपनी सीमाओं पर वन क्षेत्रों को समेटे था। बढ़ती जनसंख्या व प्रगति के नाम पर आर्थिक लाभ के लिए वनों को द्रुत गति से काटा गया, जिसके फलस्वरूप वह भूमि खेती के लिए काम में आने लगी या बंजर ही पड़ी है। आज बचे कुचे वन भी विनाश की कगार पर खड़े हैं। अतः सामाजिक वानिकी योजना को प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। उसके लिए ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्षेत्रों के भीतर एवं सीमाओं पर वन क्षेत्रों को विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को वन उपज की आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय रूप से संभव हो सके। इस परियोजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरेगी तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार भी प्राप्त होगा तथा वन क्षेत्र विकसित होने से पर्यावरण में सुधार तो होगा ही, इसके साथ हमारी वन उपज की जरूरतों की भी पूरा किया जा सकेगा। इससे योजना पर किए गए खर्च का लाभ राष्ट्र को प्रचुर मात्रा में मिल सकेगा तथा पर्यावरण भी संतुलन रहेगा।

कार्यक्रम आबो हवा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे हेमंत झा से जानकारी सामाजिक वानिकी और पर्यावरण विषय से संबंधित। कार्यक्रम आबो हवा के बाद आइए अब ये सुनते हैं कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज मानव शरीर के संबंध में गांधी जी के विचार प्रस्तुत हैं और प्रस्तुति है आगरा केंद्र की।

गांधी चर्चा के इस क्रम में आज सबसे पहले प्रस्तुत है गांधी जी के मानव शरीर के संबंध में विचार। शरीर की जानकारी के पहले हमें आरोग्य का अर्थ समझ लेना चाहिए। आरोग्य का अर्थ है तंदुरुस्ती। जिसका शरीर व्याधि रहित है, जो साधारण काम करने योग्य है, अर्थात जो बिना थके रोज 10-12 मील चल सकता है, जो बिना थके कार्य कर सकता है, साधारण खुराक पचा सकता है, जिसकी इंद्रियां और मन दोनों सजीव हैं, वह स्वस्थ कहा जाएगा। दुनिया के भूगोल को यदि तोते की तरह रटा जाए तो मैं इसे अनुपयोगी नहीं कहूंगा, लेकिन सभी चीजें मौके से शोभा देती हैं। हमें अपने शरीर, घर, गांव, वहां पैदा होने वाले पेड़ पौधों और गांव के इतिहास का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस नींव के आधार वाला अन्य ज्ञान हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। मानव शरीर 5 महाभूतों से बना है। कवि ने कहा है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 प्राकृतिक तत्वों से ये शरीर बना है। शरीर का व्यवहार 10 इंद्रियों और मन द्वारा चलता है। इन 10 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 हैं ज्ञानेंद्रियां। शरीर के जिन अंगों से मनुष्य कार्य करता है वे कर्मेंद्रियां, और जिनसे ज्ञान प्राप्त करता है वे ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं। मन के द्वारा हम विचार करते हैं। कुछ लोग मन को 11वीं इंद्रिय भी कहते हैं। इन इंद्रियों के व्यवहार पूरी तरह चलते रहने पर ही मनुष्य तंदुरुस्त कहा जा सकता है। मानव शरीर की कुल रचना आश्चर्य में डालने वाली है। शरीर इस संसार का एक छोटा सा लेकिन जीता जागता नमूना है। जो उसमें नहीं है वह संसार में नहीं है, जो संसार में है वह शरीर में है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जिस तरह बीज के अंदर सारा पेड़ समाया हुआ है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर में सारा बाहरी जगत समाया हुआ है। ये महावाक्य हमें बतलाता है कि शरीर को पूरी तरह से जान लेने पर कहा जा सकता है कि हम जगत को, विश्व को जानते हैं। पर ऐसा ज्ञान तो डॉक्टर, वैद्य, हकीमों तक को नहीं मिल पाता। हम साधारण मनुष्य तो पा ही कहां सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जिससे मन की स्थिति को जाना जा सके। विशेषज्ञ शरीर के भीतर बाहर होने वाली क्रियाओं के आकर्षक वर्णन तो दे सकते हैं, लेकिन वे क्रियाएं होती कैसे हैं ये नहीं बता सकते। किसने जाना कि मौत क्यों आती है? कौन बता सकता है कि वह कब आएगी? मतलब मनुष्य ने पढ़ा, सोचा, अनुभव किया बहुत, लेकिन अंत में वह इस निष्कर्ष पर आया कि वह अल्पज्ञ है। शरीर के अंदर चलने वाली अद्भुत क्रियाओं पर ही इंद्रियों का सुख आधारित है। शरीर के सभी अंगों की नियमबद्धता पर शरीर का सही संचालन निर्भर है। किसी भी खास अंग का काम रुका कि शरीर की गाड़ी अटकी। अब शरीर के उपयोग के बारे में विचार किया जाए। हर वस्तु का भला और बुरा उपयोग हो सकता है। शरीर पर भी यह नियम घटित होता है। उसे स्वार्थ या उच्छृंखलता अथवा दूसरों को हानि

हानि पहुंचाने में बरतना उसका दुरुपयोग है। संसार की सेवा में लगाना, उससे संयम साधना, उसका सदुपयोग समझा जाएगा। हमारा शरीर यदि आत्मा को, जो परमात्मा का अंश है, पहचानने में लगाया जाए तो वह आत्मा के रहने का मंदिर बन जाता है। हीरे या सोने की खान को देखा जाए तो वास्तव में वह मिट्टी की खान ही है, पर उसमें सोना या हीरा होने का ज्ञान मनुष्य से उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करवाता है और उस पर अनेकानेक विशेषज्ञों की बुद्धि लगती है। फिर हमें आत्मा के मंदिर रूपी शरीर के लिए कुछ करने में क्या कठिनाई है? जगत में मनुष्य उसका ऋण चुकाने यानी उसकी सेवा में करने को जन्म लेता है। इस दृष्टि से तो मनुष्य अपने शरीर का संरक्षक यानी ट्रस्टी सिद्ध होता है। उसे अपने शरीर का ऐसा जतन करना चाहिए कि वह सेवा धर्म के पालन में पूरा काम दे सके। और अब आइए सुनते हैं ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा के अंतर्गत मानव शरीर के संबंध में गांधी जी के विचार। प्रस्तुति आगरा केंद्र की थी, FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साथियों, आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता जिसका कि विषय है राष्ट्रीय लोक अदालत उद्देश्य एवं

0: लाभ और इस विषय पर अनीता सिंह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: आपसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अनीता सिंह जी, जो सचिव हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा में। राष्ट्रीय लोक अदालत जो एक साथ

0: इनके निर्णयों की क्या वैधता है और एक व्यक्ति कैसे इसका लाभ पा सकता है, ये आज हमारे सामान्य प्रश्न है। मैडम आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार
1: नमस्कार।
0: जी। तो ये जो लोक अदालतें लगाई जा रही हैं, इसमें इनके पीछे अगर हम उद्देश्य जानना चाहें एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहा है व्यक्ति, वो कैसे इससे जुड़ सकता है, इस पे थोड़ा सा बताइए कि इनके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है।
1: लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो इस समय मतलब जो लंबित मामले हैं
0: जी
1: वो बहुत अधिक संख्या में हैं। पूरे देश में इस चीज़ की एक व्यापक स्तर पर पहल चल रही है। ये पहल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरुआत की गई
0: जी
1: और आज तक ये चलती आ रही है। इसका मुख्यतः उद्देश्य ये है कि ताकि मामले को आपसी समझौते के आधार पर और सुलह के आधार पर निस्तारित किया जा सके, ताकि लोग कम समय में और शीघ्रता से न्याय प्राप्त कर सकें।
0: जी
1: और
0: जी
1: जो मामले लंबित हैं उनको हम जैसे कि प्रति हम जान रहे हैं कि यहाँ पर एक रेशियो नहीं बन पा रहा है कि एक जज के पास कई मामले हैं, मतलब पेंडेंसी हजारों की, 10 हजारों की पेंडेंसी एक जज के पास है, जो मामले वो निस्तारित नहीं कर पा रहे। और छोटे मामले जो शमनीय प्रकृति के मामले हैं, इतने मामलों के लंबित होने के कारण उन पर ध्यान भी नहीं जा पाता कई बार। तो इसीलिए इस एक ये एक ऐसा अवसर है जिस पर आप स्वयं उपस्थित होकर अधिक से अधिक संख्या में मामले को निस्तारित करा सकते हैं और आपसी सुलह समझौते के आधार पर। और ऐसे मामले जिनको आप बैठ कर आसानी से निस्तारित करा सकते हैं उनको इसमें शामिल किया
0: मतलब
1: जाता है।
0: एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जो अदालतों में समय लग रहा है, अनावश्यक खर्चे हो रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भाई मेरी और सामने वाले की सहमति बन
1: जी
0: सकती है, तो
1: बिल्कुल
0: हम क्यों ना
1: बिल्कुल
0: इसको जो है अपनी
1: जी
0: आपसी सहमति से।
1: जी
0: तो इसमें
1: बिल्कुल
0: क्या प्रक्रिया क्या रहती है, वो अदालत में जाके इसकी एक आवेदन करता है इसमें।
1: नहीं, उस दिन ऐसा होता है किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं होती। आप
0: जी
1: वहां जाकर पता करिए कि हमारा ये जो है मामला है जिस संबंधित कोर्ट में, जैसे मान लीजिए इसमें, मैं पहले इससे पहले बताना चाहूंगी कि
0: जी
1: कैसे मामले इसमें
0: जी
1: शामिल
0: जी
1: हैं।
0: जी
1: तब के
0: हाँ जी बिल्कुल
1: इसमें सभी प्रकार के जो आपराधिक मामले जो शमनीय प्रकृति के हैं, शमनीय प्रकृति से मतलब जो केवल 2 साल तक के अपराध से संबंधित हैं, वो सभी मामले इसमें शामिल हो जाते हैं।
0: जी
1: इसके अलावा चेक बाउंस एनआई एक्ट से संबंधित मामले, बैंक रिकवरी से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद से संबंधित मामले, श्रमराज से संबंधित मामले, बिजली व नल बिल से संबंधित मामले, वैवाहिक पारिवारिक मामले, भूमि भूमि से रिलेटेड मामले और सेवानिवृत्ति के परिलाभों से संबंधित मामले, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद और वैवाहिक प्रकृति के सभी वाद इसमें
0: जी
1: शामिल हैं।
0: मतलब जो छोटी छोटी चीजें जीवन में जो आती
1: हाँ,
0: हैं कि हम
1: कठिनाइयाँ आ
0: गए,
1: रही
0: हमारा
1: हैं।
0: चालान हो गया तो वो
1: हाँ
0: पेंडिंग पड़ा
1: हाँ
0: हुआ
1: हाँ
0: है,
1: वो
0: परिवार में कोई हो
1: परिवार
0: गया
1: के
0: या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसमें
1: जी
0: एक्सीडेंटल
1: जी
0: केस
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: बहुत सारी पॉलिसीगत चीज़ें होती हैं, तो डे टू डे की जो जीवन में चीज़ें उठती हैं और लीगल
1: जी
0: रूप ले
1: जी
0: लेती हैं, उनका हम इसमें
1: इसमें
0: समाधान
1: समाधान करते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं। उसमें उसकी बात कर रहे थे कि प्रक्रिया क्या रहती है
1: हाँ,
0: इसमें। जी
1: ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है प्रत्येक 3 महीने में आयोजित की जाती है।
0: जी
1: वर्ष में 4 लोक अदालतें आयोजित होती हैं। ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को ये बहुत अच्छा एक अवसर है कि वो इसका लाभ ले सकता है कि प्रत्येक 3 माह में ये राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती है व्यापक स्तर पर। और साथ ही प्रक्रिया इसमें यह है कि अगर आप जैसे सुगमता से चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले उस न्यायालय में जिसमें आपका मामला लंबित है उसमें लोक अदालत से 1-2 दिन पहले चले जाइए, वहाँ प्रार्थना पत्र दे दीजिए, तो आपका मामला जो है वो लोक अदालत वाले दिन
0: वहां पर वहां
1: लगा दिया
0: सूचीबद्ध हो
1: जाए,
0: जाएगा।
1: सूचीबद्ध हो जाएगा। और अन्यथा की दशा में भी अगर यदि आपके पास समय नहीं है तो आप उस दिनांक पर जाइए और दोनों पक्ष यदि समझौते के लिए तैयार हैं, जैसे सिविल मामले संबंधित मामला है
0: जी जी
1: तो दोनों पक्ष जो परिवादी और प्रतिवादी हैं वो दोनों न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों और ये अपना कथन देते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें कि हम समझौते के आधार पर अपना मामला निस्तारित कराना चाहते हैं
0: कराना
1: और
0: चाहते।
1: ये हमारी शर्तें और हम दोनों को मंजूर हैं। तो उस डेट पे यदि वो फाइल लगी भी नहीं है तब भी, सबसे अच्छी बात यह है कि उस डेट पर वो फाइल हो भी ना तब भी कोर्ट उस डेट पे उस फाइल को निस्तारित कर सकती
0: अगर
1: है।
0: आप गए हैं तो
1: तो
0: आपके
1: आपके
0: साथ कोर्ट
1: समझौते,
0: खड़ा
1: हाँ,
0: हुआ
1: खड़ा
0: है,
1: है।
0: खड़ा हुआ है।
1: और सबसे अच्छी बात यह है कोर्ट उस दिन आपके लिए प्रॉपर, मतलब कोई बीच अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे भी जाते हैं तो भी आपकी बात सुन ली जाएगी।
0: जी जी जी
1: जी
0: तो वो जो निर्णय होता है आपसी सहमति से, हमने वहाँ सूची

0: कराया या उस दिन चले गए, सहमति पत्र दे दिया, फिर वो एक तरह से जो जजमेंट होता है वो उस तरह वो लिखा जाता है, उसकी वैधता बनी
1: जी जी
0: उतनी
1: जी
0: है जितना कोर्ट में होती है।
1: जी बिल्कुल, जो ऑर्डर होता है उसकी वैधता वही है जो एक ऑर्डर न्यायालय द्वारा किया जाता है, और साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि उस ऑर्डर की अपील नहीं होती है, उस
0: क्योंकि आपसी सहमति से
1: आपसी
0: वो
1: सहमति से होता है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती, और
0: हाँ
1: जो मामले उस दिन निस्तारित होते हैं उसकी कोर्ट फीस भी जो होती है वो भी आपको
0: वो
1: वापस मिल जाती है। जैसे
0: माँ
1: मान लीजिए कोई सिविल मामला उस दिन आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित होता है, तो लोक अदालत में जो मामले निस्तारित हो रहे हैं उसके बाद आप प्रार्थना पत्र देते हैं उसी न्यायालय में, तो न्यायालय आपका कोर्ट फीस
0: माफ कर
1: माफ
0: देगा,
1: कर देता है
0: माफ
1: और वो
0: कर
1: कोर्ट फीस आपकी वापस हो
0: जी।
1: जाती है।
0: तो इतनी अच्छी प्रक्रिया और बरसों से चल रही है, और आपने कहा कि हर साल में 4 बार ये होता है, 3 महीने में एक बार ये मौका आता है, व्यक्ति मतलब सुगमता से भी मिल रहा है, सरलता से भी मिल रहा है, बिना फीस के मिल रहा है, आपसी सहमति से मिल रहा है, तो व्यक्ति इसका लाभ लेने में चूक कहाँ हो रही है? कोई ये मतलब कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, व्यक्तियों तक ये मैसेज अभी पहुंच नहीं पा रहा, बावजूद इसके कि आप लोग बहुत इसका कोशिश कर रहे हैं, और अब हम देखते हैं कि शहर में भी जो जो भी चौराहे हैं, जो भी वो हैं, वहाँ लाउडस्पीकर से सूचनाएं होती रहती हैं, तो एक व्यक्ति के मन में क्या है कि वो इस इन चीज़ों का लाभ क्यों नहीं ले पा रहा है इसमें?
1: जी बिल्कुल, हम मतलब ये जो लोक अदालत है वो प्रशासन और न्यायपालिका के सम्मिलित प्रयासों से आयोजित की जाती है, और जिसमें व्यापक स्तर पर मामले निस्तारित किए जाने के लिए हम समय समय पर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी करते हैं। साथ ही हम सोशल मीडिया आजकल चल रही है उस पर भी, और प्रिंट मीडिया, अन्य मीडिया जो
0: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ जी जी
1: इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साधनों से हम प्रॉपर प्रचार प्रसार करते हैं, फिर भी ना जाने क्यों ऐसा रह जा रहा है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कई बार मतलब कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होती, या लोगों को नॉलेज होती है तो मतलब कहीं ना कहीं एक पक्ष
0: एक झिझक
1: अधिवक्ता
0: सी
1: गण,
0: है।
1: हाँ झिझक
0: हाँ
1: सी गण, झिझक
0: हाँ
1: है, और थोड़ा सा अधिवक्ता गण को भी हम ये कहना चाहेंगे कि जितने भी अधिवक्ता गण हैं वो अपनी पार्टीज को मतलब समझाएं और इसके लिए प्रोत्साहित करें
0: प्रोत्साहित
1: कि वो
0: करें।
1: समझौते के आधार पर मामले निस्तारित करें। कई बार ये होता है कि मिसकम्युनिकेशन या मतलब जो भी मामला निस्तारित भी होना चाहता है लेकिन अधिवक्ता कई बार इस तरीके से प्रयास करते हैं कि
0: कि
1: वो
0: वो और लंबा चले।
1: और लंबा चल जाए, तो वो
0: हाँ।
1: मतलब वो चीज़ पेंडिंग रह
0: तो एक
1: जाती है,
0: व्यक्ति को
1: तो
0: अपने इतनी ये
1: मतलब
0: समझना चाहिए कि
1: समझना
0: अधिवक्ता भी हमें
1: चाहिए
0: कहीं ऐसा तो नहीं है
1: नहीं
0: गलत
1: कि
0: सलाह की
1: हाँ,
0: तरफ ले जा रहे हो।
1: और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी मीडिएशन में भी हम
0: हाँ
1: रेगुलर जो विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है यहाँ
0: जी
1: पर, एक इसके साथ एक और सुविधा मैं यहाँ आज बताना चाहूँगी इस
0: जी
1: आपके माध्यम से, कि हमारे यहाँ एक कार्यक्रम और आयोजित किया जा रहा है कि 3.0, जिसके मध्यस्थता अभियान 3.0, जिसमें हम रेगुलर बेसिस पर समझौते के आधार पर मामले निस्तारित कर रहे हैं, जिसमें आप डेली आप जिस न्यायालय में आपका मामला लंबित है उस न्यायालय में जाके आप प्रार्थना पत्र देंगे, वो मामला विधिक सेवा प्राधिकरण में आएगा, और हमारे यहाँ अधिवक्ता जो मीडिएटर हैं वो भी अधिवक्ता हैं, वो भी समझौते के आधार पर मामले निस्तारित कराते हैं, और कई हमारे यहाँ करीब 14 अधिवक्ता से अधिक अधिवक्ता हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: इस मामले मतलब रेगुलर बेसिस पर हम बैठते हैं, मतलब उनकी बेंच बैठती है, 4 अधिवक्ता हमारे यहाँ रेगुलर बेसिस पर हैं, हर हर रोज़ बैठते हैं और वो इसको समझौते के आधार पर मामले निस्तारित करा रहे हैं। तो बस मैं शायद लोगों तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है, या कहीं
0: मतलब ये
1: कहीं
0: सिर्फ
1: बीच में गैप है
0: 3 महीने
1: जिसके,
0: की बात नहीं,
1: हाँ
0: रोजाना भी इसका लाभ ले
1: रोजाना भी
0: सकते
1: इसका हो रहा है लाभ, कि
0: हैं।
1: मतलब आपको ये भी नहीं, अब तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में ये जो व्यवस्था चल रही है इसका आप लाभ रेगुलर बेसिस पर ले सकते हैं, और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हम सोशल मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से कर भी रहे हैं, फिर भी मतलब,
0: मतलब जागरूकता आएगी और
1: और
0: हम
1: एक
0: समझते हैं कि
1: समस्या शायद मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों मामले को खींचने की बजाय प्रोत्साहन के लिए हम कहेंगे कि मामले को खींचने की बजाय और अपना समय और न्यायालय मतलब समय बर्बाद करने और अपना पैसा बर्बाद करने की जगह अगर मध्यस्थता के माध्यम से 16 समझौते के आधार पर मामला निस्तारित करते हैं तो एक बहुत अच्छी पहल है जो समाज को एक अच्छे उस पर ला सके,
0: हाँ,
1: खड़क
0: कम से
1: पायदान पे
0: कम
1: लाके खड़े
0: समाज
1: कर
0: में
1: सके।
0: हम रह रहे हैं तो समरसता आ जाए,
1: हाँ
0: सहनशीलता आ जाए, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के पक्ष को भी समझें।
1: जी
0: कई
1: जी
0: बार लेने की बजाय देने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
1: जी जी

0: न्याय की उसमें अवधारणा में भी यही है कि अगर देखे शांति हो जाती है तो उसको हम जो है ले लेना हमारे लिए बेहतर है। इसमें आपने जो डे टू डे की प्रतिदिन की बताई, तो ये कहाँ आपका विधिक सेवा प्राधिकरण का जो कार्यालय वहाँ पे ये
1: वहीं
0: लगती है?
1: वहीं पर आयोजित हो
0: जी
1: रही है ये, मतलब आप, लेकिन इसके लिए आपको प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में देना
0: न्यायालय में
1: है।
0: देना चाहिए कि
1: आप
0: मैं
1: संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र दीजिए कि हम अपने मामले को समझौते के आधार पर मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा कराना चाहते हैं, तो आपकी पत्रावली
0: जी
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेज दी जाएगी और वहां पर हमारे अधिवक्ता द्वारा समझौते के आधार पर दोनों पक्षकारों को बुलाया जाता है। उसके बाद समझाया जाता है कि मतलब समझौते के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, और दोनों पक्ष जब समझौता करना चाहते हैं तो वहां पर हम कई मामले हमारे यहाँ निस्तारित हो भी रहे हैं।
0: जी। तो श्रोता बंधुओं, ये बात हम कर रहे थे राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर शनिवार को लग रही है, एक त्वरित, सस्ता, सुलभ और ऐसा न्याय जो एक नागरिक का नैतिक अधिकार भी है। अगर आप भी किसी कारण से न्यायालय में आपका कोई केस लंबित है और सहमति बना पाते हैं तो आप जरूर फायदा उठाएं। 12 सितंबर को नहीं है तो जैसा अनीता जी ने बताया कि प्रतिदिन भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अब ये सुविधा मिल रही है, तो हम एक सहमति का वातावरण अगर समाज में बनाते हैं, परिवार में बनाते हैं, कोई भी बात हो अगर हम उसको निपटा लेते हैं तो जीवन में बहुत बड़ी शांति लेकर के आ सकते हैं। कुछ और चलते चलते कहना चाहेंगे मैडम?
1: जी धन्यवाद। बाकी मैं नागरिकों से, समस्त मस्तरावासियों से अपील करती हूँ
0: जी
1: कि अधिक से अधिक संख्या में उस दिन उपस्थित हों और अपने इस राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान करें।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद सर।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

साथियों, आप जो सुन रहे थे भी भेंटवार्ता राष्ट्रीय लोक अदालत उद्देश्य एवं लाभ इस विषय से संबंधित ओपी सिंह की थी। भेंट करता थे ये और अनिता सिंह से बातचीत इस विषय पर अभी आपने सुनी और अब ये गीत।

लता मंगेशकर साथियों की आवाज़ में आपने सुना फिल्म गीत के इस गीत को, और अब ये अगला गीत।

आपने अभी सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में महेंद्र दहलवी के लिखे इस गीत को। फिल्म दादा से था और इस गीत को संगीतबद्ध किया था संगीतकार उषा खन्ना ने। अब ये अगला गीत।

खुद गर्ज फिल्म में ये आवाज़ें थीं मोहम्मद अज़ीज़ साधना सरगम की। साथियों, आप आनंद ले रहे हैं इस वक्त फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम का अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में मेरे हुजूर फिल्म के इस गीत को। गीत लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने, संगीत शंकर जयकिशन का था। साथियों आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप अभी सुन रहे थे कुमार शानू अलका याग्निक की आवाज़ में फिल्म बाजीगर फिल्म के इस गीत को। लिखा था नवाब अर्जुन ने, संगीत अनु मलिक का था। और अब सुनते हैं ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे चंद्रा दीक्षित और अभिजीत की आवाज़ में फिल्म कुली नंबर वन का गीत। साथियों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला।

मोम की गुड़िया, आपने सुना अभी इस फिल्म के गीत को लता मंगेशकर की आवाज़ में। लिखा था आनंद बख्शी ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और अब आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

बेताब फिल्म में इस गीत को आवाज़ दी थी शब्बीर कुमार ने, और इस वक्त साथियों आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ में फिल्म किरायेदार के इस गीत को। हसन कमाल के लिखे इस गीत को पप्पी दा ने धुन से संवारा था। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सलमा आगा की आवाज़ में फिल्म निकाह के इस गीत को। गीतकार थे हसन कमर और संगीत रवि कुमार शर्मा का था। साथियों, आकाशवाणी मथुरा वृंदावन केंद्र से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का।

पेंटर बाबू, इस फिल्म में आपने सुना भी इस गीत को? लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाज़ में, मनोज कुमार ने गीत को लिखा था, उत्तम सिंह का संगीत था। साथियों, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है और आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। हम आपको बता दें कि किन्हीं कारणवश आपका ये फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी हम नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: वेलकम फिल्म में अभी आप सुन रहे थे ये गीत आनंदराज आनंद और कल्पना पटोवरे साथियों की आवाज़ में। ये कार्यक्रम का प्रस्तुत है अगला गीत।
1: तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तकिन तक

0: अरिजीत सिंह की आवाज़ में आप सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म का गीत। फिल्म संगीत का आनंद आप इस समय आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से ले रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: लस्टारिया।

शेरोन प्रभाकर और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था किसकी बीवी। आइए अब सुनते हैं सलामी फिल्म का दो गाना। आवाज़ें कुमार सानू और आशा भोंसले की हैं, शब्द रचना मदन पाल की, संगीत नदीम श्रवण का।

अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए बाजीगर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम अर्पण।

अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन के स्वर में अभी आपने गणेश वंदना सुनी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन। स्वर है लता मंगेशकर का।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से FM 102.2 MHz पर।

पंडित गोपाल, सुखदेव, कौशलेंद्र और राघवेंद्र शर्मा के स्वर में आप सुन रहे थे ये भजन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली भक्ति रचना। गायक कलाकार हैं जगजीत सिंह।

भाई हरी सिंह रागी और साथियों की गाई इस शब्द रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अब पेश है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम गीत बात और SMS। आज कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ संजय सारस्वत। अपने सभी श्रोताओं का हम कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। और मित्रों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आपकी फरमाइश के इस गीत के साथ।

आशा भोसले और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था शिकार। हसरत जयपुरी के गीत को संगीत से संवारा शंकर जयकिशन ने और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं ने की। उमाली से अनूप कुमार और उद्धव पाटिल और पलसी से वीएस शेगोकार और डॉक्टर जयश्री ने इस गीत को सुनना चाहा। अगले फरमाइश करता हैं बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू, मोहित, लक्की, तानिया नारंग और इनके संगी साथी। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत और मयंक भाटिया। अगला संदेश हमें भेजा है कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा ने। आप हैं नेहरू चौक पैंठण के श्रोता। डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव। जालना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। ये श्रोता हैं हमारे आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज शर्मा, मीना, योगेश, नवी, निवान, मैंडी शर्मा, सौरभ और शायना शर्मा। अगला संदेश हमारे पास आया है गंगा वणकर, गोविंद, विकास, प्रीति, जूली, गीता, महिमा, विशाल, विराट, विजय, रमेश और महेश।

जयंती का कच्छ गुजरात से। ये संदेश भेज रहे हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार खमहरिया, छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं हमारे आप। अगला संदेश हमारे पास आया चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना सर्वेश और अधीरा इंगले का। ये श्रोता हमसे जुड़े हैं राजनगर से जगदीश, ज्योति, सिलेखा देवी, फूलो, जीवद राय, विजय राय, रागिनी देवी, राधा नामदेव और इनके बहुत सारे संगी साथी। स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी और तमन्ना भाटिया। आप हैं नसवाला चौक मलकापुर महाराष्ट्र के श्रोता संजय पाटिल और उषा पाटिल। ये संदेश हमारे पास आया है कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल का, उत्तम नगर दिल्ली से। अगले फरमाइश करता हैं महसौल सीतामढ़ी के अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज नदीम, शमीम अकरम, ममता रानी और पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से है मोहम्मद आसिफ खान और निगहत परवीन। ये संदेश हमारे पास आया है नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे का, वरवट वकाल बुलढाणा से। आप हैं भिलाई छत्तीसगढ़ के श्रोता मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और इनके सभी परिवारीजन। और बांडीवाला फाजिलका पंजाब के श्रोता हमसे जुड़े हैं ओम बगड़िया, क्रियांश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। और अगला संदेश हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल का। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं अब गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आपने डॉन फिल्म का गीत सुना। अनजान ने गीत लिखा था, धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की थी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल ने इस गीत को सुनना चाहा। साथ हैं इनके गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन, स्वाति, देव कुमार और आर्य कुमार जायसवाल। अगले फरमाइश करता है इस गीत के लिए कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, जादव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे, जगुताई और संचित देशमुख, प्रथमेश, सरवद, हर्षिता, सानवी और प्रणाली देशमुख। ये संदेश हमारे पास आया है शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल और प्रियांशी का। अगले फरमाइश करता है बागपत यूपी से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र के श्रोता पी एस न्हावकर, निर्मला, विशाल न्हावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हैं नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मुरहेकर। ये संदेश हमें भेजा है नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा एमपी से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं सोहन जोशी। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। ये श्रोता हैं हमारे ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी के रामशरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें भेजा है जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी डे। आप हैं काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर के श्रोता प्रकाश रंभाड़े, भारती, जाह्नवी, वैष्णवी और हर्षल रंभाड़े। ये संदेश हमें भेजा है नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल, क्रांति और इनके बहुत सारे संगी साथियों ने, राजनगर मधुबनी बिहार से। अगले फरमाइश करता है हमारे गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली के तुलसी मस्कीन, वीणा, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता, केशु और रिधान खुराना। अगले फरमाइश करता है जलालाबाद वेस्ट के सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ये श्रोता हमसे जुड़े हैं फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद और शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनैद मुजा

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म का गीत सुना। गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनना चाहा था सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। इस गीत के लिए अगला संदेश हमें भेजा फुटानी चौक नरहन स्टेट से लल्लन मिश्रा और साजन मिश्रा ने। आप हैं बुढ़ाना महाराष्ट्र के श्रोता वासुदेव बोधबड़े, अनीता गांठोड़े और रमेश राव गांठोड़े। ये संदेश आया है मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा का, और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। अगले श्रोता हैं हमारे मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और नुमैर मंसूरी। आप हैं नेपानगर एमपी के श्रोता सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। और ये संदेश है सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और गौरव मंदूरकर का, डाबकी रोड अकोला से। आइए मित्रों, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम फरमाइशी गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे तुम्हारे लिए फिल्म का गीत। गीत को संगीत से संवारा था जयदेव ने, और इस गीत को सुनने की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ के बलकरण वर्मा, अंजनी रजमत वर्मा, मुरली नीरा वर्मा और ज्योति प्रहलाद वर्मा। आप हैं पुरानी भिलाई 3 चरवदा छत्तीसगढ़ से डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदुन सिद्दीकी, जीशान अहमद, शाहनवाज अहमद सिद्दीकी और इनके सभी परिवारीजन। नांदेड़ से हमसे जुड़े हैं प्रकाश जैन, और लातूर से हैं संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। ये संदेश आया है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का। आप हैं सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान के श्रोता रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण और प्रतीक चौहान। अगले फरमाइश करता हैं धानोरा विटाली के नांदुरा बुलढाणा से भगवान पाटिल, मंगेश और सचिन पाटिल। दतनेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। इसी के साथ ही मित्रों, आज के गीत बात और एसएमएस कार्यक्रम को अब यहीं विराम देते हैं। सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, कसे क्लिक में, अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रांझा गायन। कलाकार हैं भगवान दास अज्ञानी और उनके साथी। आज आप इसका 5वां भाग सुनेंगे।
2: ध्यान से सुनना कि बाबा ने कही कि मेरे भैंसा से भैंसा लड़ा। इधर ऊपर चनुआ बैठो है कदम के पेड़ पे और नीचे के सारे सीन को देख रहे हो। जब रांझे के भैंसा ने और बाबा के भैंसा भूरा को पेट फाड़ दियो तो रांझो बाबा

भैया घबरावे की तो बात आई है। चेटी है मनुष्य जिंदा ना कर सके, पहले तो बाबा ने कही भैंसा लड़ा ले। अब भैंसा लड़ायो तो भैंसा मर गो भैया लड़ाई में, तो अब बाबा कह रहे कि जब भैंसा जिंदा कर, तो भैया जी तो मालिक के हाथ में मेरे हाथ में तो है ना, जा मारे ज्यादा पसीना माथे पे आरो है, आ गई समझ, जो मरो भयो कैसे जिंदा हो जाए, तो केवल मालिक ही जिंदा कर सके। फिर बोले राजे जहां में कोई घबरावे की बात ना है। बोले अरे भैया तुम कह रहे हो घबरावे की बात ना है, जे तो बहुत बड़ो बवाल है। तो बोले देख।

तेरी जेब में दाहिने हाथ की में एक लाल रुमाल रखो है और वह रुमाल निकार करके और पढ़ करके बिस्मिल्लाह या भैंस आप तीन पोत घुमाए दे भैया भैंस जिंदा है जाओ। पीर रूपोस हो जाते हैं, राजे ने पढ़ करके बिस्मिल्लाह और तीन बार वो लाल रुमाल घुमायो, बाबा को भैंसा उठ करके खड़ो है गयो। बाबा की दम में दम आई और राजे की बातें ज्यादा, दम में दम आई बनी मरो भयो जिंदा कर दियो बारे मालिक, मालिक को आदाब कियो वाने, बोले मालिक तू तो तू ही है भाई। रांझे को बाबा ने परवानो दे दियो, रांझो भैंसा जब जिंदा है गयो और वो चनुआ भतीजो बाको कदम के पेड़ के ऊपर जो पत्तन में छुपके बैठो है वो परवाने को पढ़ रहे हो। इधर बाबा से रांझो बोलो, बोले बाबा जे मेरी इतनी गैया इन्हें घर घेर के छोड़े आऊं, आ गई समय या मेरो कोई ग्वारिया पारिया तो है ना सिवा मेरे भाइया। तो बोले ठीक है, मेरो काम मैंने बुक कर दियो, तेरो काम है भाई तू कर। वो तो गैया घेर पे चलोगो और चनुआ कदम के पेड़ से उतर करके और नीचे खड़ो है गयो। जब रांझो गैयन ने घेर के लायो और चनुआ के ऊपर जब बाकी नजर पड़ी तो बाको शेर पर खून भड़गो, बोले अब तो घर तक ना जानो पड़ेगो छोड़ भी के ताई। तो चनुआ से और चाचा क्या कह रहे हो बता।

इतना मारा रांझे ने कि कपड़े फट गए, खाल फट गई, खून चुचाने लगे। और जब चनुआ ने कही कि चाचा खूब मार ले, मगर मैं मैया ते ना कहूंगा कि मुझे चाचा ने मारो है, तो रांझे के हाथ से लकड़ी छूट गई और जमीन पे गिर गई। चनुआ समझो कि अब तो चाचा मुझे लेके जाएगा। चनुआ ने गैया तगरे में हाक दी नहीं है, इधर रांझे की भौजाई सेती। बड़ी देर है गई, कोई ना आयो तो सात मंजिल महल पे से जंगल दीख तो महल पे चढ़ जाए और अपने देवर को के बनने की देवर ना आयो तो जब महल पे चढ़ करके क्या देखती है कि दगरे में धूल उड़ रही है। छेती नीचे आती है और आकर के अपनी दौरानीन से क्या कह रही है,

करके और खिरक को दरवाजो खोल दियो। तो गैया धीरे धीरे खिरक में घुस रही और एक ऊंचे से चबूतरा पे खड़ी है करके और वह रांझे देवर को निहार रही है। सबरी गैया धीरे धीरे खिरक में घुस गई और रांझे की जगह जब अपने बेटा पे नजर पड़ी तो चबूतरा से कूद करके और बेटा को आलिंगन भर लियो और जगह जगह से गालन को चूम रही है और मैया बेटा से क्या कहे।

मैं तेरी माँ हूं, अगर मोए अगर सत्य ना बतावे को तो बेटा कौन को बतावे को। हम यहाँ के बादशाह हैं, राजा हमारा इतना महाबली देवर है बेटा, तू तो कौन गरिया लगावे बारो। या तो मालिक मार सकता है या तेरो राजा चाचा मार सके, अन्यथा काऊ की ताकत ना है तो उसे उंगरिया लगावे की। माँ की ममता कछु और होए, सब कपड़ा फट रहे, खून चुचा रहे, बेटा की बाह पकड़ के और महल की ओर चल देती है। महल में जाकर के क्या देखती है, एक डोली दो डोली पार करने के बाद तीसरी डोली पे हमारे उस्ताद लोगों ने बताया कि रांझे की मैया की अवस्था 100 वर्ष की है। मैया पीड़ा पे बैठी, मगर इधर भी माँ की ममता और उधर भी माँ की ममता, हाथ पकड़ के ले गई है और सासू से क्या कह रही है, बहू

जंगल में राजे की मैया आ जाए भैया श्रोताओं, और आकर के इधर माँ की ममता वहां थी और इधर माँ की ममता यहाँ मौजूद है। राजे की सूरत को देख करके और मैया को कलेजा के जाते मैं कछु नहीं कहूं, तो क्या कह रही है मैया? क्रोध को शांत

ब्रज लोकगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रांझा गायन। कलाकार थे भगवान दास अज्ञानी और उनके साथी। आज आपने इसका पांचवा भाग सुना। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। इस समय 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्किन के साथ भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा के उपराष्ट्रपति जेसुका अलुपो कल से शुरू हो रहे 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवो ओजोकवो और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबिथकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री देनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज सुबह ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने ये बात कही।
1: For BRICS particularly, higher economic activity.
2: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
0: है। इस अवसर पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से

0: अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
1: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
0: प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित लोन के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के ARSS ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं वर्षगांठ पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 384 अंक गिरकर 74,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। इस समय 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण।

हमारी इसी सभा में दिन में 1:15 पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम होगा वनिता लोक। आज कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे होम बेस्ड बिजनेस और घर तथा काम के बीच संतुलन। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे केबी लाल कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रस्तुत विनोद वार्ता रेल यात्रा। इसके अलावा आप आनंद लेंगे कुछ फिल्मी गीतों का तथा सुन पाएंगे कुछ घरेलू टिप्स हमारे इसी कार्यक्रम में। दिन में 1:45 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। अपराह्न 2:30 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। तत्पश्चात अपराह्न 3:00 समापन होगा हमारी इस पहली सभा का।

हमारी आज दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5:10 पर। इसमें सबसे पहले आप सुनेंगे पॉडकास्ट प्रोग्राम जिसका विषय होगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। संध्या 5:40 पर युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। आज इस कार्यक्रम में आज की बात के विषय होंगे विनोबा भावे जयंती और सुब्रमण्यम भारती पुण्यतिथि। इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे सुरेश राग भाई द्वारा प्रस्तुत वार्ता विनोबा भावे जी और उनका उत्तराधिकार। इसके अलावा आप सुन पाएंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में दिए गए संबोधन की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। इसके अलावा आप कुछ फिल्मी गीत भी हमारे इसी कार्यक्रम में सुन सकते हैं।

जमुना मौसी, प्रस्तुत करेंगे मनमोहन अभिलाषी। फिल्मी भक्ति गीतों का कार्यक्रम संध्या वंदन आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर।

संध्या 6:50 पर किसान भाइयों के लिए हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम रेडियो कृषि पाठशाला। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर अरुण कुमार से ली गई भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा सरसों की उपयुक्त किस्में तथा खेत की तैयारी। इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। संध्या 7:30 पर आप सुनेंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। ये प्रसारण आप हमारे ट्रांसमीटर पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे नियमित प्रसारण हमारे ऐप रेडियो ऐप न्यूज ऑन AIR पर सुन सकते हैं। संध्या 7:31 से 7:31 पर आप सुनेंगे व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 8:30 पर। अपनी फरमाइश के फिल्म की ताप नवरंग कार्यक्रम में सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे सामंतलाल की लिखी नौटंकी कृष्ण सुदामा, प्रस्तुति होगी हरिबाबू कौशिक की। इसके अलावा रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम होगा। इसमें आज आप सुन पाएंगे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए आप सुनते हैं ये देशभक्ति परक गीत।

समवेत स्वरों में आपने सुनी ये देशभक्ति परक रचना। रचनाकार थे गिरजा कुमार माथुर। FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए हमारा कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं आशु रावत।

न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। जिंदगी मुकम्मल तो है मगर पूरी से कुछ कम है। नमस्कार बहनों, मैं हूँ आज आपके साथ आशु रावत, लेकर आपका अपना कार्यक्रम वनिता लोक, जिसे आप सुन रही हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। बहनों, महिलाएं अपने घर की धुरी होती हैं, ये हम सब अच्छे से समझते हैं, जानते हैं कि महिलाओं के बिना, हमारी सखी सहेलियों के बिना, हमारे बिना घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें अधूरी सी होती हैं। परिवार की, घर के हर काम की जिम्मेदारी लगभग उन्हीं के कंधों पर होती है। अब सुबह से उठकर रात तक क्या उनको करना है, घर की हर महिला का काम लगभग तय होता है। सुबह उठकर बच्चों के लंच में क्या बनाना है, कितने टाइम में बनाना है, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को कैसे मैनेज करना है, उनके कामों को कैसे मैनेज करना है, खाने पीने में क्या करना है अगर बुज़ुर्ग घर में मौजूद हैं तो, सब कुछ उन्हीं को सोचना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब घर तक तो सब कुछ फिर भी ठीक रहता है, दिक्कत तब सामने आती है बहनों जब हमारी कुछ सखी सहेलियां घर के बाहर काम पर जाती हैं। घर का काम तो पूरा होता ही है, साथ में उन्हें बाहर का भी काम करना पड़ता है, तो ऐसे में तालमेल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना कभी कभी करना पड़ जाता है, क्योंकि काम तो दोनों ही जगह पूरी तरह से होते हैं और घर में काम को मैनेज कर भी लिया जाए, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है लोगों से अपना तालमेल बैठाने में कि काम को मैनेज करें कि लोगों के साथ। और दिक्कत तब आती है कि काम भी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, फिर लोगों, घर के लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है कि घर में, घर के कामों में, लोगों में या बाहर के कामों में तालमेल ना हो सके। अगर हम थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, इन सारी बातों को समझदारी से बनाने की कोशिश करें, तो घर और बाहर के काम के बीच में संतुलन बनाया जा सकता है।

और इसमें बहनों सबसे बड़ी भूमिका जो निभाता है वो है समय प्रबंधन, यानी कि अपने समय का हम सही उपयोग कैसे करें। अगर हमें बाहर काम पर जाना है तो घर की जिम्मेदारी तो है ही है, घर में भी अगर आप काम वाली भी साथ में रखती हैं तो काम भी फिर भी आपको नज़र देखनी ही पड़ती है कि किचन में क्या बन रहा है, कैसे करना है, घर का और काम कैसे मैनेज हो रहा है। ये जिम्मेदारी घर की महिलाओं की ही मानी जाती है। तो अगर हो सके तो सुबह जल्दी उठकर अपने उन कामों को मैनेज करिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर घर के अन्य सदस्य भी अगर आपके साथ रहते हैं तो अपने घर के कामों में उनकी भी मदद ले सकती हैं। अगर बच्चे छोटे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो छोटे मोटे कामों में बच्चों की भी मदद ली जा सकती है। और जल्दी उठने से क्या होता है बहनों, जल्दी उठने से अपना दिन थोड़ा बड़ा हो जाता है और जो काम हम जल्दबाजी में करते हैं, आपाधापी सी में करते हैं, वो काम थोड़े सहजता से और सरलता से हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप ऑफिस जाती हैं या स्कूल जाती हैं, जो भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर भी आप जाती हैं, वहाँ पर भी हो सके तो पहले ज़रूरी कामों को निपटाइए। और काम कोई सा भी हो बहनों, हर काम के बीच में थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लीजिए कि जिससे कि आपका तन और मन इतना ज़्यादा पजल ना हो, इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि आपको फिर दूसरा काम करने में थकान हो। और वर्क प्लेस पर हो सके तो केवल वर्क को ही अहमियत दीजिए, उन्हीं चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करिए, घर के कामों के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। और अगर ऑफिस में कोई ज़्यादा प्रेशर का काम आपके पास आ जाता है, करवाने के लिए बोला जाता है तो, और वो आपकी पहुंच से थोड़ा सा बाहर है या उसको करना आपके लिए टफ है, तो शालीनता से ना कहना भी सीखिए। इस तरह से करके बहनों हम घर और बाहर दोनों के काम को मैनेज कर सकते हैं। और फिर घर आकर अपने बाहर के जो भी काम के नोटिफिकेशन अगर आपके फ़ोन पर आ रहे हैं, आपके लैपटॉप पर आ रहे हैं, तो उनको बंद कर दीजिए, जिससे कि आप अपने घर परिवार के बीच में, अपने बच्चों के बीच में अपना समय गुजार सकें। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बहनों, अपने आप को खुश रखना। अपने आप को ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करिए, अपने तन मन का ध्यान रखिए और कोई भी काम हो उसे अगर पीसफुल माइंड के साथ, शांति के साथ अगर कोशिश की जाए करने की, तो वो काम ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। और अगर नहीं भी हो पा रहा है तो ज़्यादा तनाव मत पालिए, दुनिया आपसे ही नहीं चलती है। यह सबको खुश रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा और सबसे ज़रूरी है कि आप अपने तन मन को खुश रखें, सहज रखें, बाकी सब अपने आप फिर सरलता से हो जाता है। दोनों जगह के बीच तालमेल बिठाना बहनों इतना भी कठिन नहीं होता जितना हम उसको अपने मन में बना लेते हैं। हर काम को अगर सरलता से किया जाए, सहजता से किया जाए, तो सब कुछ धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि अगर आपका तन और मन तालमेल में रहेगा तो घर और बाहर दोनों सामंजस्य में रहेंगे। और अब बात आती है बहनों कि हमारी जो भी सखी सहेलियां हैं, जो भी महिलाएं हैं, अगर वो घर के कामों की वजह से बाहर नहीं जा पा रही हैं या उनके घर का माहौल ऐसा है कि उनके लिए बाहर काम करना मुमकिन नहीं है, तो कभी कभी उनके मन में भी ऐसी बातें आने लगती हैं, ऐसे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं या हम घर पर रहकर केवल घर की ही कर पा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, घर पर रह के भी बहुत से ऐसे होम बेस्ड बिजनेस होते हैं जिनको आप कर सकती हैं और उनको करके अपनी कमाई भी कर सकती हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट भी बना सकती हैं। और आज के समय की बहनों अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि एक व्यक्ति की आय से घर को चलाना, बच्चों के सपनों को मैनेज करना, बच्चों के तौर तरीकों, उनके रहन सहन को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप घर पर रहकर कुछ करना चाहती हैं, कुछ कमाई अपनी बनाना चाहती हैं, तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको कि आप उनका लाभ लेकर अपने घर से ही अपनी कम लागत में काम शुरू कर सकती हैं। अगर आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस डालना है तो आज बहुत ही अच्छी तरीके से बैंक के द्वारा लोन दिया जाता है और बहुत ही कम इंटरेस्ट में आप वो उसको शुरू कर सकती हैं। और अगर इसके अलावा आप कोई लेन देन नहीं रखना चाहती, ना पैसा ज़्यादा लगाना चाहती हैं, ना लेना चाहती हैं बैंक से, तो बहुत से ऐसे काम हैं बहनों, जैसे कि अगर आपको पढ़ाना पसंद है, आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और आप पढ़ा सकती हैं अपने किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखकर, तो आप घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास ले सकती हैं, अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकती हैं इस तरह से, और अपनी आमदनी बना सकती हैं। होम बेकरी,
टिफिन सर्विस आज के समय में एक बहुत अच्छा

व्यवसाय माना जाता है बहनों, क्योंकि बहुत से आदमी ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने कामकाज के चक्कर में, अपने कामकाज की वजह से अपने होम टाउन से बाहर रहना पसंद करते हैं या उनको रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आती है कि अब उनका खाना पीना कैसे मैनेज किया जाए। तो टिफिन सर्विस एक बहुत अच्छा व्यवसाय है और अच्छी आमदनी का स्रोत भी आपके लिए बन सकता है। इसके अलावा बहनों, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप घर पर बैठे बैठे कर सकती हैं, जैसे रीसेलिंग है या पैकेट्स को पैकेज बंद करना है, उनका पैकेजिंग करना है। ये काम बहुत ज़ोरों पर हैं, जिनसे कि जो हमारी बहनें ज़्यादा मतलब पढ़ाई के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं, तो इन कामों के ज़रिए अपनी आमदनी बना सकती हैं। और जो लोग बहनों ज़्यादा आधुनिक तौर तरीकों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहते हैं, अपनी आमदनी करना चाहते हैं, तो वे ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनसे जुड़कर घर पर ही रहकर ऑनलाइन अपनी कमाई कर सकते हैं, अपने स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बहनों, ऐसे बहुत से होम बेस्ड बिजनेस हैं जो महिलाओं के लिए आय का स्रोत तो बन ही सकते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंट, उन्हें आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहती हैं तो पूरे मन के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकती हैं। तो कामकाज की बातें तो बहनों बहुत हो गई, अब आपको लेके चलते हैं फिल्मी गीतों की दुनिया में।

0: मानो कोई भी हंसी मजाक हो, विनोद हो, भारी से भारी माहौल को भी थोड़ा हल्का फुल्का बना ही देता है। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज हास परिहास की दुनिया में। सुनवाते हैं आपको आज एक विनोद वार्ता, रेल यात्रा। वार्ताकार हैं केबी लाल कुलश्रेष्ठ।
1: रेल यात्रा के हमने तीन रूप जाने हैं, खेल यात्रा, मेल यात्रा और जेल यात्रा। आज से 50 साल पहले रेल यात्रा हमारे लिए खेल यात्रा हुआ करती थी। हम आसानी से अपनी इच्छा अनुसार कभी इस सीट पर तो कभी उस सीट पर, कभी खिड़की के सहारे और कभी लेटने के लिए ऊपर की बर्थ पर चढ़ जाते थे। न कोई प्रतिबंध, न कोई रुकावट, न कोई टोका टाकी। हम खिड़की के बाहर जाकर देखकर, झांक कर पेड़ों, घरों, खेतों आदि को पीछे की ओर भागते हुए देखा करते थे। चांद, सूरज, सितारे, ये सब हमारे साथ साथ आगे की ओर भागा करते थे। इस यात्रा से हमें अध्ययन में बड़ा लाभ हुआ। जब हमें इन द ट्रेन कविता कक्षा में पढ़ाई गई कि सारी भौतिक चीजें, पेड़, मकान आदि हमसे पीछे छूट जाते हैं, जबकि दिव्य वस्तुएं, आध्यात्मिक शक्तियां हमारे साथ साथ चलती हैं। सूरज, चांद हमारे साथ साथ दौड़ते हैं। हम आसानी से सारी कविता का भाव समझ गए थे। रेल यात्रा वास्तव में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता की पहचान है। इसमें कभी कोई जाति, रंग, रूप का भेदभाव नहीं होता है। कोई भी नर नारी अपनी इच्छा अनुसार, सुविधा अनुसार कहीं भी बैठने में स्वतंत्र होता है। छुआछात आदि सभी कुरीतियां मिट जाती हैं। समयावकाश होने से कुछ लोग किसी न किसी विषय पर मुखर होते हैं और फिर चल पड़ता है वार्तालाप का दौर। हर आदमी अपनी अपनी समझ सोच के अनुसार कभी सामाजिक, कभी राजनैतिक तो कभी धार्मिक विषय पर बेबाक टिप्पणी करने लगता है। कुछ लोग असहमत भी होते हैं पर उग्र नहीं, और इस प्रकार रेल डिब्बे में एक संसदीय वातावरण पैदा हो जाता है। कुछ ज्ञान, जानकारी में वृद्धि भी होती है। कुछ लोग एक दूसरे से इतने नजदीक आ जाते हैं कि वे आपस में फोन तथा पते का आदान प्रदान करते हैं। कुछ युवा एवं युवतियां भी एक दूसरे के सामीप्य में आते हैं और प्रतिदिन सहयात्रियों के मिलन की परिणति का परिणाम जीवन साथी बनने में भी हुआ है। ये हमें मेल यात्रा के रूप में बहुत भाती थी, लेकिन धीमे धीमे समय बदला। रेल यात्रा का स्वरूप सुरसा की तरह विशाल होता गया।

रेल का सुंदर शरीर पूरी तरह से मानव द्वारा आच्छादित कर लिया गया। छत से लेकर डिब्बे तक और गार्ड के डिब्बे से लेकर इंजन के मुख तक मानव ने ऐसी मानव श्रृंखला बना डाली कि बेचारी रेल का तो स्वरूप ही गायब हो गया। मानव ने इसे मधुमक्खियों का छत्ता बना दिया। जब हम प्लेटफार्म पर पहुंचे तो पूरा प्लेटफार्म, जहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं, बुरी तरह से ठूसम ठास हो रही थी। हमारी नजर दूर से रेल की छत की ओर गई। ऐसा लगा कि इस पर चढ़े यात्री कुतुब मीनार से कूदकर आत्महत्या की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग स्वयं छत पर चढ़ने से पहले अपने अबोध बच्चे को गेंद की तरह फेंक कर ऊपर चढ़े आदमी को लपका रहे थे। हमारी समझ में कुछ नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। अचानक हमें ये पंक्ति याद आई, बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मानव तूने इसे क्या कर डाला। हम उल्टे पैर प्लेटफार्म से निकलकर ऐसे भागे जैसे जेल से छूटा कोई कैदी। रेल यात्रा के संबंध में हमें अंग्रेजी के लेखक एजी गार्डिनर महोदय का ध्यान आता है कि वे रेल यात्रा करते करते किस प्रकार से महान दार्शनिक बन गए। एक बार लेखक लंदन से अपने कस्बे के लिए जाने वाली अंतिम गाड़ी से यात्रा कर रहे थे। यात्रीगण स्टेशनों पर एक एक और दो दो करके उतरते चले गए। जब रेलगाड़ी लंदन से बाहरी घेरे को पार कर गई तो लेखक ने अनुभव किया कि वह डिब्बे में अकेला था। जब लेखक गाड़ी में अकेला रह गया, उसमें स्वतंत्रता की आनंददायी भावना थी। वह अपनी इच्छानुसार कुछ भी कर सकता था, कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसने अकेलापन अनुभव किया। लेखक डिब्बे में अकेला रह गया था। लेखक को उस गाड़ी में अकेले होने से स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता था, जो रात में शोर मचाती हुई झटके देकर जो गाड़ी चल रही थी, हिलती हुई चल रही थी, ये बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता देने वाली होती है। आप जो भी चाहें कर सकते हैं, आप जितनी जोर से चाहें अपने आप से बात कर सकते हैं और कोई भी आपकी बात नहीं सुन सकेगा। आप किसी भी बलवान व्यक्ति से तर्क वितर्क कर सकते हैं और उसके विरोधी प्रहार को सहे बिना सफलतापूर्वक उसे धूल चटा सकते हैं। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी आपको नहीं देखेगा। आप बिना रोक टोक के, बिना बाधा के गा सकते हैं या दो कदम नाच सकते हैं या गोल्फ में गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं या फर्श पर कंचे का खेल खेल सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को विरोध का अवसर दिए बिना खिड़की खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे से किसी भी कोने में बैठ सकते हैं। आप गद्दों पर पूरे पैर फैलाकर लेट सकते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के जब लेखक अपना अखबार पढ़ रहा था, एक मच्छर सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया। उसे गुदगुदाने लगा। उसे ये अनुभव हुआ, उसने ये अनुभव किया कि वो अकेला नहीं था। जब मच्छर उसकी गर्दन पर बैठा, वह फिर से गुदगुदाया गया। मच्छर पुनः आया, वो लेखक के हाथ के पीछे बैठ गया। अब लेखक क्रोधित होता, उसने मच्छर को मारने का निश्चय किया। लेखक ने हर प्रकार की चालाकी तथा तरकीब अपनाई, पर वह मच्छर को न मार सका। ऐसा लगा जैसे मच्छर उससे खेल खेल रहा था। लेखक ने सहयात्री मच्छर को पहले एक मामूली कीट पतंग सोचा था। जब वह मच्छर को न मार सका, वह शर्मिंदा हुआ। अब लेखक ने अपने साथी मच्छर को समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि मच्छर में व्यक्तित्व तथा बुद्धि है। उसके हृदय में मच्छर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। उसने निश्चय किया कि वह मनुष्य के नैतिक सम्मान को बचाने के लिए मच्छर पर सहानुभूति एवं करुणा का प्रयोग करेगा। लेखक ने मच्छर के प्रति एक प्रकार का स्नेह विकसित किया और उसने दूर का एक संबंध भी स्वीकार किया कि भाग्य ने उन दोनों को इस ग्रीष्म की अर्धरात्रि में सहयात्री बनाया। लेखक ने मच्छर में यह अनुभव किया कि मच्छर और यह लेखक, ये दोनों ही एक दूसरे के सहयोगी हैं। दोनों एक कर्तव्य में सहभागी हैं। इस मूल तथ्य पर आधारित है कि वे दोनों नश्वर प्राणी हैं। वे दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। उनके जीवन का चमत्कार तथा रहस्य भी समान है, क्योंकि न तो मच्छर ही अपनी यात्रा के विषय में अनभिज्ञ है, उसी प्रकार से मनुष्य भी अपनी यात्रा के विषय में अनभिज्ञ है। इस प्रकार से लेखक एक दार्शनिक बन गया। एक बार हम दिल्ली की यात्रा के लिए प्लेटफार्म पर खड़े थे। हमें अपनी यात्रा साधारण डिब्बे से करनी थी। हमारी तथा हमारे जैसे करोड़ों लोगों की यही औकात है।
सीटी देती हुई गाड़ी प्लेटफार्म

0: रुकी। विधर देखो दौड़ा दौड़ी मारा मारी और सीट पाने के लिए हर ओर लोग भाग रहे थे। जिधर देखो शयनयान, वातानुकूलित शयनयान। जब हमें जनरल डिब्बा यान के दर्शन नहीं हुए तो हम प्लेटफार्म पर खड़े होकर वातानुकूलित यान के पास खड़े हो गए। हम बाहर से उस वातानुकूलित यान में बैठे यात्रियों की ओर झांकने लगे। हमने सोचा कि नजदीक आकर शायद कोई शीतल झोंका हमारे शरीर को भी स्पर्श करे। संयोगवश हम ब्लू ब्लैक कोट तथा पेंट पहने हुए थे। इतने में एक सज्जन सपरिवार प्रकट हुए और बोले, भाई हम और आप दोनों रेलवे कर्मचारी हैं, कृपया आप हमारे इन बच्चों को अपने वातानुकूलित यान में स्थान देकर दिल्ली पहुंचा दें। मैं आवश्यक कार्यवश इनके साथ नहीं जा रहा हूं, प्लीज आप इतना अवश्य करेंगे। हमने कहा, भाई हमें क्यों व्यर्थ में परेशान करते हो। वह बोले, नहीं भाई, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें अवश्य ही दिल्ली अपने साथ वातानुकूलित स्थान में डिब्बे में स्थान दे देंगे। इतना कहकर वे सज्जन वहां से हटकर गेट पर जाकर खड़े हो गए। हम पशुपेश में थे कि हम कैसे उन्हें समझाएं कि हम डिब्बे के न तो टीटी हैं और न रेल के कर्मचारी। इतने में गाड़ी चल दी और हमारा एकमात्र जनरल डिब्बा आया। हमने बड़ी मुश्किल से हैंडल पकड़ा और एक पैर से पायदान पर खड़े होकर यात्रा करने लगे। दूर से जब उन रेलवे कर्मचारी सज्जन ने हमें इस हीन दीन दशा में पायदान पर लटके हुए देखा तो वे कभी आंख फाड़ कर प्लेटफार्म पर खड़े अपने बच्चों को देखते हैं तो कभी हमें।
1: तो बहनों, अभी आप सुन रही थी ये विनोद वार्ता रेल यात्रा, और वार्ताकार थे KV लाल कुलश्रेष्ठ।

तो बहनों, आज के कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम, फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ आप सभी को आशुरावत का नमस्कार।

अभी महिलाएं अपना कार्यक्रम सुन रही थीं, वनिता लोक। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थीं आशु रावत। हम आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

महेंद्र कपूर की आवाज़ में आपने सुना हमराज फिल्म का गीत, गीत साहिर लुधियानवी का था, संगीत रवि का। आइए अब सुनते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शब्द रचना कैफी आजमी की, संगीत मदन मोहन का।

0: New York. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi expresses hope for positive discussions with aspiration for global welfare as world leaders gather in New Delhi for BRICS summit commencing tomorrow. Prime Minister Modi to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin and Iranian President Masoud Pezeshkian today. BRICS Business Forum begins in national capital. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls for greater resilience, sustainability and cooperation amid rising global uncertainty as BRICS marks 20 years. India reiterates unwavering resolve to combat terrorism on 25th anniversary of horrific 9/11 attacks in the US. In men's junior Asia Cup hockey, India to take on Malaysia in semi-final at Mochi in China this afternoon. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। चीन में जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा और अमेरिकी ओपन टेनिस महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में आयना सबालिंका का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका मार्गदर्शक उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत मंडपम में आयोजित होने वाले दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आएंगी। इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित विश्व के कई बड़े नेता भाग लेंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी इसमें शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरू वीएइरा करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री युवराज फैसल बिन फरहान अल सऊद भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी भी देखेंगे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया संकट, व्यापारिक संबंध और ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज सुबह भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी बातचीत करेंगे। पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात को देखते हुए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह ने हवाई अड्डे पर दोनों नेताओं का स्वागत किया।
4: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रणनीतिक साझेदारी पर आधारित मैत्रीपूर्ण और ऐतिहासिक संबंध है। भारत युगांडा संबंधों पर मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझा इतिहास पर आधारित मैत्रीपूर्ण संबंध है और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय क्षेत्रों में साझेदारी लगातार मजबूत।

0: हो रही है। इस बीच नाइजीरिया के विदेश मंत्री बियांका ओडुमेगवू ओजुकवू और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सीतारामन ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के मुद्दों और व्यापार तथा निवेश संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेइरा से का स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा, ऊर्जा, कृषि और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श हुआ। डॉ. जयशंकर ने उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेटकिन से भी मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, संपर्क और संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर सार्थक बातचीत हुई। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा है कि आज हर देश की आर्थिक रणनीति में आत्मनिर्भरता और संकट से उबरने की क्षमता महत्वपूर्ण हो गई है। साथ ही मजबूत सहयोग और साझेदारी के जरिए सतत विकास को बढ़ावा देना भी जरूरी है। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने ये बात कही।
3: For BRICS particularly, higher economic activity.
4: विशेष रूप से ब्रिक्स के लिए उच्च आर्थिक गतिविधि और अधिक आर्थिक सुरक्षा का अर्थ है अधिक आत्मनिर्भरता। इसका उद्देश्य व्यवधानों को झेलने की हमारी क्षमता को मजबूत करना है, साथ ही आपस में जुड़े रहना और प्रतिस्पर्धी बने रहना भी है। इसके लिए वास्तविक बाजार प्रथाओं, विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स, पूर्वानुमानित व्यावसायिक माहौल, विविध व्यावसायिक संबंधों तथा पारदर्शी व्यापार और निवेश की आवश्यकता
3: and transparent trade and investment.
1: डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के विषय वस्तु लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि वर्ष ब्रिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि समूह संस्थागत सहयोग के 20 वर्ष पूरे कर रहा है।
3: This year is a milestone.
4: ब्रिक्स के लिए ये वर्ष एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि हम संस्थागत ब्रिक्स सहयोग के 20 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं। इस अवधि में ब्रिक्स ने अपनी सदस्यता, उद्देश्य और सहयोग ढांचे में काफी प्रगति की है। भारत की अध्यक्षता में इस विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है।
1: मंच के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से अपनी आर्थिक शक्ति को लोगों के लिए रोजगार, संपदा और समृद्धि में बदलने के लिए मिलकर काम करने की अपील की।
5: ब्रिक्स संगठन आज वैश्विक व्यापार के लगभग एक चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत में निर्मित अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाले साजो सामान और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भारत का निर्यात सर्वाधिक है। भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में भी जाना जाता है। हम ब्रिक्स को इन और अन्य उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में देखते हैं, जिन्हें भारत एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दुनिया तक ले जाना चाहता है।
3: Take to the world as a trusted partner.
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि मंच की सफलता का आकलन अर्थव्यवस्थाओं के आकार से नहीं बल्कि ठोस परिणामों से होना चाहिए। ब्रिक्स संगठन वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी शक्ति के रूप में लगातार उभर रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स समूह में शामिल देश दुनिया की 49% से अधिक आबादी, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के करीब 40% और लगभग 26% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स देश एक दूसरे को लगभग 1,10,000 करोड़ डॉलर का सामान निर्यात करते हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ कुल वस्तु व्यापार 2020-21 में 203.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2025-26 में 417.5 अरब डॉलर हो गया है। अनुपम के साथ

0: अक्षित कुमार वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं सहित एकतरफा व्यापार और वित्तीय उपाय लागू किए जाने पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार प्रभावित होता है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप नहीं है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में मुंबई में कल ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की अंतिम बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में ये बात कही गई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। दिल्ली मेट्रो ने आज बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर मेट्रो सेवाएं सुबह 6 बजे शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद का खतरा लगातार बदल रहा है, लेकिन भारत का संकल्प इसके सभी रूपों के खिलाफ अडिग है। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले की 25वीं बरसी पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की जान ली है। उन्होंने कहा कि सीमापार आतंकवाद से प्रभावित भारत दशकों से इसके खिलाफ लड़ाई में आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सभी प्रयासों में साथ खड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज मुंबई में फास्टैग पोर्टेबिलिटी के लिए वन टैग सुविधा का शुभारंभ किया। इसके अंतर्गत वाहन मालिक अपने मौजूदा फास्टैग को राजमार्ग यात्रा ऐप द्वारा नए बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय को 10 सेकंड से कम करना है। प्रवर्तन निदेशालय धोखाधड़ी या अनियमित ऋण के कथित मामलों की जांच के सिलसिले में कोलकाता, चेन्नई, बंगलुरु और हैदराबाद में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ओडिशा के एआरएसएस ग्रुप के आयोजक, निदेशक, परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों से संबंधित स्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 14 जिलों में 44 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य लगातार जारी है।
2: बाढ़ प्रभावित इलाकों में 1046 सामुदायिक रसोई केंद्र चलाए जा रहे हैं। 1942 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं 812 चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रमुख नदियों के जलस्तर में कमी आई है। हालांकि अब भी 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में, जबकि कोसी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा और कुर्सेला में खतरे के निशान से ऊपर है। पटना के श्रीपालपुर में पुनपुन नदी का जलस्तर हर घंटे करीब 2 सेंटीमीटर घट रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरला, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गुजरात में भी अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। अमेरिकी ओपन टेनिस में दूसरे महिला सिंगल्स के दूसरे सेमीफाइनल में एलेना रायबकीना ने कोको गॉफ को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब खिताबी मुकाबले में कजाखस्तान की रायबकीना का मुकाबला मौजूदा चैंपियन और आरेना सबालेंका से होगा। इससे पहले बेलारूस की आरेना सबालेंका ने पहले सेमीफाइनल में अमरीका की जेसिका पेगुला को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। जूनियर एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष टीम और मलेशिया का मैच जारी है। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का सामना पाकिस्तान से होगा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत आज 4 महीने के उच्चतम स्तर $108.77 प्रति बैरल पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 363 अंक गिरकर 74,540 जबकि निफ्टी 163 अंक गिरकर 23,000

315 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक कल्याण की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक चर्चाएं होंगी। विश्व के नेता कल से शुरू होने वाले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच अधिक लचीलेपन, स्थिरता और सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमले की 25वीं बरसी पर भारत ने आतंकवाद से लड़ने के अपने अटूट संकल्प को दोहराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार। नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी आराध्या साहू जी ने सुविचार भेजा है। वो लिखते हैं, दांत चाहे कितनी भी बार जीभ को काटें, फिर भी वे दोनों साथ रहते हैं और साथ काम करते हैं। यही क्षमाशीलता और भाईचारे की भावना है। धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन। ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज ढाक से। अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेन्द्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी और पोटियागला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। सभी श्रोताओं को आभार खूबसूरत संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, प्रेरक प्रसंगों के सप्ताह के अंतिम दिन हम लेकर आ रहे हैं एक और अद्भुत प्रेरक प्रसंग। आज हम जानेंगे एक ऐसे महान विद्वान और शिक्षाविद के बारे में जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इस महान समाज सुधारक और विद्वान को इतिहास ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से बड़े सम्मान के साथ याद करता है। पहले जानते हैं कैसा था उनका बचपन। जरा सोचिए श्रोताओ, एक बालक पढ़ना चाहता है लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय है। उसके घर में न पर्याप्त रोशनी है, न पढ़ने की सुविधाएं हैं और न ही कोई आरामदायक वातावरण। तो फिर प्रश्न ये उठता है कि वो पढ़ते कैसे थे। कहा जाता है कि वो कई बार सड़क पर लगे गैस के लैंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करते थे, जो आज हम सोच भी नहीं सकते कि कोई विद्यार्थी सड़क की रोशनी में बैठकर घंटों पढ़ाई कर लेगा। श्रोताओ, उस युवक के मन में एक सपना था, ज्ञान प्राप्त करना। उनके पिता ठाकुरदास बंदोपाध्याय बहुत कम आय पर काम करते थे। परिवार के पास बहुत अधिक साधन नहीं थे। ईश्वर चंद्र को बचपन से ही समझ में आ गया था कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी परिस्थितियों से शिकायत नहीं बल्कि संघर्ष करना होगा। उनके सामने दो रास्ते थे, या तो परिस्थितियों को दोष दें या मेहनत करें। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वे पढ़ते रहे, संस्कृत का अध्ययन करते रहे, लगातार मेहनत की। उनकी प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि आगे चलकर उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली, अर्थात विद्या का सागर। ये जानना रोचक होगा कि उनका मूल नाम ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था, लेकिन बाद में सम्मान के साथ उन्हें विद्यासागर कहा जाने लगा।

0: एक सड़क के लैंप के नीचे पढ़ने वाला बालक विद्यासागर बन गया। और सबसे अधिक प्रेरित करने वाली बात, उन्होंने अपनी शिक्षा को केवल अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अपने ज्ञान का इस्तेमाल उन्होंने समाज सुधार और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किया। आइए श्रोताओं, जरा विचार करें, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या हो सकती है? मेरी नज़र में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, सुविधाओं की कमी को बहाना मत बनाइए। दूसरी, लगातार मेहनत कीजिए। और तीसरी, सफल होने के बाद दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। देखिए, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, ऑनलाइन पुस्तकालय हैं, यूट्यूब पर हजारों शैक्षिक वीडियो हैं और पढ़ने के लिए अनेक साधन हैं। मैं तो कहूंगी कि आज हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी पहले शायद कभी नहीं थी। फिर भी हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास वातावरण नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का व्यक्तित्व तो हमें प्रेरणा देता है कि कभी कभी साधन कम हो सकते हैं, लेकिन संकल्प बड़ा हो सकता है। तो श्रोताओ, हमारा आज का प्रेरक प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिता का नाम क्या था? आप 8800440559 पर अपने उत्तर हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ, ताज़ा जानकारी के लिए आप इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को लगातार फॉलो कीजिए। NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनने या हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों को सुनने के लिए आप NCERT ऑफिशियल यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है शो ऑफ क्लाउड्स। कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक बच्ची के बारे में बताया गया है कि जब वो आकाश में बादलों को देखती है तो उनमें उसे सुंदर सुंदर छवियां नजर आती हैं। कार्यक्रम प्रोत्साहित करता है कि बच्चे कल्पनाशील बने।
1: हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू?
2: वी आर फाइन सर।
3: आई एम फाइन।
4: आई एम गुड सर।
1: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
5: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
1: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
1: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
2: Yes, sir.
6: We like.
1: Lovely butterflies?
2: Yes, sir.
1: And lovely, colorful, chirping birds.
2: Yes, sir, we like it.
1: That's very nice, children.
9: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
1: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it?
2: Yes, sir.
1: The rivers, the mountains, and the green trees.
2: Yes, sir.
1: Okay. So let me tell you the story of a sweet child like you.
2: Like us?
1: Would you like to listen?
2: Yes, sir.
6: We love to listen the story.
1: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
2: Okay, sir.
1: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me, okay?
2: Okay, sir. We love to recite it.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a big white bear.
2: I see a big white bear.
1: Looking down at me. As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky.
2: Looking up at the sky.
1: I see a ship sailing.
2: I see a ship sailing.
1: On a white sea.
2: On a white sea.
1: As I lie on my back.
2: As I lie on my back.
1: Looking up at the sky. I see an elephant.
2: I see an elephant.
1: Waving its trunk at me.

0: मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी। एक छोटा सा बल भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय तेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को

0: पास तो यहाँ बहुत भीड़ जमा है।
1: मैं तो इसे अहोभागी कहूँगा कि आज हम हिज होलीनेस दलाई लामा की साक्षात दर्शन करेंगे।
2: सही कहा भाई, मेरी भी बड़ी इच्छा थी उन्हें देखने की। हाँ।
1: अरे देखो देखो, उनका कारवां बिल्कुल निकट आ पहुंचा।
2: ओफो, इस तरफ तो मीडिया वालों की बड़ी भीड़ है।
1: अरे कोई बात नहीं, आओ ना, कोशिश करते हैं। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, पत्रकारों की भीड़ में साड़ी पहने हुए एक लड़की, अब कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं?
2: हाँ भाई, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है।
1: हाँ,
2: और देखो देखो, उसने कैमरा भी टांग रखा है।
1: अरे हाँ,
2: किसी औरत का भीड़ भाड़ में यहाँ वहाँ घूमना,
1: अरे कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। अरे भाई, औरत तो घर की शोभा होती है, शोभा। पता नहीं कैसा समय आ गया है।
2: मालूम नहीं,
1: ये दिन भी देखना था। चलो चलते, अरे चलो चलते, नजदीक आ गए,
2: आ गए, आ गए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो।
3: साथियों, ये समय था 1959 का, जब दलाई लामा पहली बार भारत की यात्रा पर सिक्किम आए थे। उनके अभिनंदन में भारी भीड़ जमा थी।
4: उसी भीड़ में शामिल थी एक लड़की जो हाथ में एक भारी कैमरा लिए दलाई लामा की फोटो खींच रही थी। कैमरे का वजन लगभग 9 किलो था, जिसके बाहरी हिस्से में लकड़ी का कवर था। इतना ही नहीं, उस लड़की ने अपने कंधे पर एक कैमरे का फ्लैश भी टांग रखा था। ये लड़की कोई और नहीं, होमी व्यारावाला थी, जिसे दिल्ली से विशेष रूप से इस मौके की फोटो खींचने के लिए बुलाया गया था।
3: 21वीं सदी में शायद महिलाओं को कैमरे के साथ देखना बेहद आम बात लगे, लेकिन आज से 70-80 साल पहले ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसी बात को लेकर उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था।
5: 9 लोग बहुत रूढ़िवादी हुआ करते थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इधर उधर घूमें। जब उन्होंने मुझे साड़ी में कैमरे के साथ घूमते हुए देखा तो उन्हें बहुत ही अटपटा सा लगा, और उन्हें शुरू शुरू में तो ऐसा भी लगा कि मैं कैमरा लेकर सिर्फ उन्हें बेवकूफ बना रही हूं।
4: होमी व्यारावाला का जन्म गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में दिसंबर 1913 को हुआ था। उनका परिवार गुजरात में सूरत के निकट व्यारा में रहा करता था, संभवतः इसलिए उन्हें व्यारावाला के नाम से जाना गया।
3: उनके पिता पारसी उर्दू थिएटर के मशहूर अभिनेता थे, इसलिए घर पर माहौल भी थोड़ा खुलेपन का था। परिवार स्वतंत्र विचारों वाला था। रंगमंच पर कार्य करने के कारण ये व्यारावाला परिवार की पहुंच से बहुत दूर नहीं था।
6: आज कितना मुबारक दिन है, हम सब की दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही
4: है। समय बदला और उनका परिवार गुजरात से बंबई यानी मुंबई आ गया। उनकी स्कूली शिक्षा बंबई में हुई। पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, लेकिन शौकिया फोटोग्राफी भी करती थी।
3: लेकिन फोटोग्राफर बनना उनका लक्ष्य नहीं था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी। एक रात की बात है।
7: होमी, ओ होमी।
8: जी माँ, आती हूँ।
7: अरे बेटा, अभी तक तुम सोई नहीं।
8: क्या बात है माँ?
7: अरे कोई बात नहीं बेटी, रात का 1 बज रहा है। मैंने तुम्हारे कमरे में बत्ती जलती हुई देखी तो सोचा थोड़ा सा समय तुम्हारे साथ बिता लूं।
8: जी माँ, बिल्कुल।
7: अच्छा बेटी, इन दिनों देख रही हो कि तुम काफी खोई खोई और चिंतित रहने लगी हो, सब ठीक तो है ना बेटा?
8: हाँ माँ, सब बिल्कुल ठीक है। स्कूल की पढ़ाई अब पूरी हो गई है ना, आगे भी तो सोचना है कि मुझे भविष्य में क्या करना है। बस यही विचार मन में बार बार आता है।
7: अच्छा, तो ये बात है, भला तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? अब तो तुम

0: शादी के लायक हो गई हो। बहुत जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे हम। और तुम्हारी चिंता तो वो करेगा। हाँ,
1: अरे नहीं माँ, अभी नहीं करनी है मुझे शादी। और भला मेरे भविष्य की चिंता कोई और क्यों करेगा?
0: अरे
1: मैं खुद क्यों नहीं कर सकती? और माँ, मैं तो डॉक्टर बनूंगी।
0: क्या कहा? डॉक्टर? तो डॉक्टर बनेगी?
1: माँ सुनो तो एक बार मेरी बात।
0: मैंने सब सुन लिया होमी, और मुझे कुछ नहीं सुनना। बात समझ में आई तुम्हें?
1: माँ एक बार बात तो पूरी सुन लो।
0: कुछ नहीं होमी, बस करो।
1: माँ सुनो तो। अरे
2: तो सुना आपने, होमी ने बहुत बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में इस घटना का वर्णन करते हुए कहा था,
3: मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बनूंगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन मेरे जीवन में केवल एक यही समय था जब मेरी माँ ने मुझे कुछ करने से मना किया। उन्होंने देर रात की शिफ्ट में डॉक्टरों को देखा था और वो नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह के पेशे में रहूं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि प्रेस फोटोग्राफी इससे भी बदतर होगी।
4: घर से अनुमति न मिलने के बाद उनके पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना इरादा बदल दिया, लेकिन एक बात थी जिस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ अडिग रहीं।
2: और वो बात थी एक नारी होकर अपनी जगह खुद बनाने की, अपना भविष्य स्वयं गढ़ने की और अपनी उड़ान का आसमान स्वयं तैयार करने की। उन्होंने फैसला किया कि वो फोटोग्राफी को अपना पेशा बनाएंगी। प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया।
4: कला की पृष्ठभूमि और कैमरे के थोड़े बहुत ज्ञान के कारण जल्दी ही वो एक कुशल फोटोग्राफर बन गई। अब उन्हें साइकिल पर बैठकर पीठ पर कैमरा लादे बंबई की सड़कों पर देखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने बंबई के मेहनतकश मजदूरों, निर्धन वर्ग के बच्चों और स्त्रियों के बहुत सारे चित्र खींचे। इन चित्रों को काफी प्रशंसा भी मिली।
2: एक दिन की बात है, कक्षा समाप्त हुई थी और छात्र घर जाने की तैयारी में थे। होमी भी कक्षा से निकलकर संस्थान के मुख्य गेट की ओर जा रही थी।
1: सर मैं अंदर आ सकती हूँ?
5: अरे होमी, आओ आओ आओ, अंदर आओ अंदर आओ, बैठो यहाँ बैठो।
1: जी जी सर, धन्यवाद।
5: होमी जरा इसे देखो।
1: जी।
5: ये आज का समाचार पत्र है। जरा यहां देखो, इस पृष्ठ पर जरा पहचानो तो, किसकी फोटो है ये?
1: सर ये तो मेरी खींची हुई फोटो है।
5: बिल्कुल। हाँ उमी, इसे राज्य भर से आई 100 से भी अधिक तस्वीरों की प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला है। लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। देखो देखो यहाँ क्या लिखा है।
1: जी।
5: देखो पढ़ो। होमी व्यारावाला की इस फोटो ने मेहनतकश मजदूरों की दुर्दशा को बड़ी बारीकी से उकेरा है। और ये लिखा है, ये फोटो हमारे समाज के लिए एक आईना है। बधाई हो होमी, हमें तुम पर फख्र है।
1: धन्यवाद सर।
2: फिर भला क्या था, पूरे राज्य में होमी की ख्याति बढ़ गई। कॉलेज में होमी को छात्र एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। अब उन्हें कई समाचार पत्रों से काम भी मिलने लगा था। कॉलेज में ही उनकी भेंट हुई सहपाठी मानेकशा जमशेद जी से, जो एक बेहद होनहार छायाकार थे और स्वतंत्र छायाकार के रूप में भी बॉम्बे के कई समाचार पत्रों के लिए काम करते थे।
4: मानेकशा स्वयं उन दिनों टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम करते थे। मानेकशा ने उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया। आठ महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद 1938 में होमी व्यारावाला ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक पेशावर की तरह प्रवेश किया। बतौर फोटो जर्नलिस्ट होमी की पहली तस्वीर द बॉम्बे क्रॉनिकल में प्रकाशित हुई। इस दौरान उन्हें एक तस्वीर के लिए ₹1 बतौर पारिश्रमिक मिलता था।
2: 1942 में ब्रिटिश सूचना सेवा के लिए फोटोग्राफर के रूप में काम करने के लिए व्यारावाला युगल को दिल्ली आने का निमंत्रण मिला।

0: दिल्ली आते ही होमी के काम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई।
1: होमी व्यारावाला एक समर्पित और प्रतिभाशाली फोटो पत्रकार थी, जिन्हें अक्सर अपने कैमरे को अपनी पीठ पर बांधे हुए राजधानी दिल्ली में साइकिल चलाते हुए देखा जाता था। दिन की रोशनी के दौरान वो लो एंगल शॉट तथा छवियों के विस्तार के लिए बैक लाइट का उपयोग करती थी, जिससे विषय वस्तु की गहराई और ऊंचाई को दर्शाया जा सके। इन दिनों की कंप्यूटर जनित डिजिटल फोटोग्राफी के हमारे जमाने में ये बातें भले ही बेहद साधारण लगें, लेकिन उन दिनों इन बातों का विशेष महत्व था। उन्हीं के शब्दों में,
2: जब मैं कैमरा टांगकर साइकिल पर निकलती थी तो मुझे देखने के लिए विशेषकर महिलाओं और बच्चियों की भीड़ जमा हो जाया करती थी। उनकी आंखों में एक चमक होती थी, मानो वो मुझ में अपना भविष्य देखने की कोशिश कर रही हों।
0: कोई भी घटना हो, वो मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाले पत्रकारों में से एक थी। अब समय आ गया था छायांकन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के रूप में इतिहास रचने का।
1: वो समय था जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारियां हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की लहर देश के गांव-गांव तक फैल गई थी। बड़े बड़े जुलूसों में, धरना प्रदर्शनों में, हिंसक आंदोलनों में एक महिला का बतौर फोटो पत्रकार उपस्थित रहना और घटनाओं की तस्वीर खींचना कोई आसान बात नहीं थी।
2: जब भी मैं किसी मौके पर कैमरे के साथ पहुंचती थी, मुझे प्रोत्साहन अक्सर नहीं मिलता था। पुरुष प्रधान पत्रकारिता के क्षेत्र में एक महिला के लिए अपनी जगह बनाना बहुत कठिन था। कई बार मेरा मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बात तब बन जाती थी जब मैं अपना परिचय देती थी। लोग मेरे काम के कारण नाम से परिचित थे, नाम बताने पर मुझे सम्मान भी मिलता था।
0: ऐसे समय में होमी व्यारावाला का एक फोटोग्राफर बनना एक बहुत ही बड़ी बात थी। होमी व्यारावाला ने अगस्त 1947 को लाल किले पर पहली बार पहराए गए झंडे, भारत से लॉर्ड माउंटबेटन के डिपार्चर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री की अंतिम यात्रा की भी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों की पूरे विश्व में प्रशंसा हुई और इन्हें बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के चरम उत्कर्ष के दिनों उनके द्वारा खींची गई अधिकांश तस्वीरों को दुर्लभतम कृतियों की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा लगता है मानो उनके कैमरे ने इतिहास को सजीव कर दिया है।
1: होमी ने बतौर फोटो जर्नलिस्ट अपने करियर की शुरुआत 1930 में की थी। वो 1970 तक इस क्षेत्र में सक्रिय रही। 40 वर्षों के इस सफर के दौरान उन्होंने देश विदेश में खूब नाम कमाया। 1970 में अपने पति की मृत्यु के बाद होमी व्यारावाला ने अपने पेशे से संन्यास ले लिया। होमी की विशिष्ट उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2011 में उन्हें भारत की पहली महिला छाया पत्रकार के रूप में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सन 2012 में 99 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया।
0: गूगल ने उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उनके जन्म के 104 साल पूरे होने पर अपने डूडल के साथ उन्हें सम्मानित किया। गूगल ने भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें लेंस के साथ पहली भारतीय महिला यानी फर्स्ट इंडियन लेडी विद द लेंस के रूप में सम्मान दिया।
1: स्त्री अस्मिता के विमर्श पर किसी ज्योतिर्मय प्रेरणा स्तंभ के रूप में अडिग खड़ी भारत की इस पहली महिला फोटो

0: पत्रकार होमी व्यारावाला को हमारा शत शत नमन।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके मित्र विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। इस समय अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये पहली सभा अब यहीं संपन्न होती है। अपनी दूसरी सभा में संध्या 5:10 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: बात आकाशवाणी के साथ,
2: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बच्चों के साथ गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है सोनू सूद।
3: नमस्कार, प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के नए प्रसंस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रसंस्करण बहुत ही विशेष है क्योंकि हम एक ऐसी शिक्षिका से आज बात करने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया है बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का, और इसके लिए उन्हें हाल ही में टीचर्स डे के दिन राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर शुक्ला, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद
3: डॉक्टर शुक्ला। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, ये जो आपको पुरस्कार सरकार की तरफ से मिला है, और आप

0: हमें बताएं कि कैसा आपको महसूस हुआ और कौन सा ऐसा प्रमुख कार्य रहा है जो आपको लगता है कि जिसको सम्मानित किया गया है।
1: यह मेरे लिए बहुत गर्व का क्षण है, और सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे विद्यालय के लिए, मेरे विद्यार्थियों के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए। यदि हम कार्य की बात करें कि किस लिए अवार्ड दिया जा रहा है, तो जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है और शासन को लगता है कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए या उस कार्य से दूसरे टीचर भी इंस्पायर हो सकते हैं, तो आपको अवार्ड दिया जाता है। यदि मैं बात करूं कि ऐसा क्या विशेष किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा जो विज्ञान पढ़ाने का जो ढंग है वो थोड़ा सा, उसकी विधि जो है वो दूसरे शिक्षकों से विभिन्न है। तो इसमें मैं अपने विद्यार्थियों को विज्ञान जो है सिर्फ किताब के माध्यम से पढ़कर या प्रश्नों के उत्तर देकर ना सिखाकर उनको उसे महसूस कराती हूँ। तो जो मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। इसमें मेरे विद्यार्थी अलग अलग तरह की परियोजनाएं करते हैं और उन परियोजनाओं को करते समय हमारी सरकार जो कह रही है कि विद्यार्थी एनईपी 2020 में 21st सेंचुरी स्किल्स पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि विद्यार्थियों में 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही है।
0: सो आपने जैसे कहा कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं, जो प्रैक्टिकल एक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रही हैं, और जो आपने हमें बताया कि बच्चों को प्रकृति से जोड़ने का जो कार्य है, उसका आपको ख्याल कैसे आया, क्यों आपको लगा कि ये बहुत जरूरी है?
1: विज्ञान पढ़ाते हुए मुझे लगभग आज 16-17 साल हो गए हैं, और मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि विद्यार्थियों को विज्ञान सिर्फ कक्षा में नहीं पढ़ाया जा सकता, विज्ञान तो हर चीज में है, विज्ञान तो प्रकृति के हर जगह पर है। तो कोरोना के समय मुझे रियलाइज हुआ, आपने सुना होगा कि कोरोना में लोग कहते थे कि काढ़ा पियो, तो काढ़ा पीने की जब बात आती है तो काढ़े में जो जो चीजें मिलाई जाती हैं, तो मेरे विद्यार्थी उन चीजों को पहचानते ही नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आप अर्जुना रेस्ट बाजार से खरीद कर पी रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपके आंगन में लगा हुआ पेड़ ही अर्जुन है, तो अर्जुन की छाल को आप उबाल कर पी सकते हैं। तो यहाँ से मुझे रियलाइज हुआ कि जिसको भी आप जानोगे नहीं उसको आप मानोगे नहीं। तो यदि आप कंजर्वेशन संरक्षण की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम जो है वो है आइडेंटिफिकेशन। जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक आप चीजों को अपने आसपास के पक्षियों को, पशु को, इंसेक्ट्स को, ट्रीज को जब तक आप पहचानेंगे नहीं, तो आप कंजर्व कैसे करेंगे, तो उनका संरक्षण कैसे होगा? हमारे आसपास इतनी सारी जैव विविधता थी, लगातार कई जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, और जब कोई बड़ी विपदा आती है तब हमें लगता है कि हमने ऐसी क्या गलती की। तो यहाँ पर मुझे लगा कि विद्यार्थियों को प्रकृति से जोड़ना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन।
0: बहुत ही आपने खूबसूरती से बताया कि आइडेंटिफिकेशन यानी जागरूकता सबसे पहला स्टेप है। जो आपने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बात की, उसमें प्रमुख सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट आप जो आपको लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट था, उसका बहुत प्रभाव हुआ बच्चों पर और उनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, उसके बारे में बताएं।
1: मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इस बात को कहा है कि विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करिए। तो विद्यार्थियों में साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे डेवलप होगा? सिर्फ बायोलॉजी को क्लास में पढ़ लेने से डेवलप नहीं होगा। तो इसी तरह से एक बार मैं अपने 11th बायो के बच्चों को कंजर्वेशन पढ़ा रही थी, तो मैंने विद्यार्थियों से पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें किसी जीव को कंजर्व करने की जरूरत है? तो मेरे एक विद्यार्थी ने खड़े होकर कहा कि मैम, पहले एक छोटी चिड़िया आया करती थी, गौरैया। तो जब मैं नानी के घर जाता था, बहुत सारी गौरैया आती थी, हम बहुत चावल खिलाया करते थे, आजकल वो दिखती नहीं है। तो मैंने कहा, ओके, क्या कारण है कि वो खत्म हो गई? तो किसी एक बच्चे ने रैंडम कहा कि मैम, रेडिएशन। तो ऐसे आपने कहाँ पढ़ा कि रेडिएशन कारण है? तो बोले, नहीं मैम, सब जगह आ रहा है सोशल मीडिया पे कि रेडिएशन के कारण बर्ड्स खत्म हो रही हैं। तो मैंने कहा, ऐसे नहीं, यू फाइंड आउट द रिसर्च पेपर्स और फिर कारण पढ़िए, देर आर मेनी रिसर्च पेपर ऑन स्पैरोज। तो हमने एक साल सिर्फ यही काम किया कि हमने रिसर्च पेपर्स निकाले और उसका मुख्य कारण खत्म होने का जानने की कोशिश की। तो बच्चों ने कंक्लूजन में लिखा कि गौरैया की नेस्टिंग साइट खत्म हो रही है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है वो गौरैया को कहीं भी अंडे रखने की जगह नहीं दे रहा है। तो जो आज हम मॉडर्न बिल्डिंग बना, जो आज हम अपने घर बना रहे हैं, उन घरों में कहीं भी गौरैया के अंडे रखने की जगह ही नहीं है। जबकि पहले जब हमारे खपड़े के घर होते थे, अर्थन टाइल्स होती थी, तो वहां कई जगह जगह होती थी जहां पर वो अंडे अपने रख पाती थी। गौरैया एक ऐसा जीव है, जब हमने खेती शुरू की वो हमारे साथ चला आया और जंगलों से हमारे साथ आके हमारे घरों में रहने लगा। धीरे धीरे उसकी जो नेस्टिंग की कला थी वो खत्म हो गई। अब वो प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता है, वो कहीं पर भी जहां जगह होती है वहां पर अंडे रख देता है। तो थोड़ी सी घास रखता है और अंडे रख देता है। तो फाइनली ये निकला कि भाई, हमें गौरैया के लिए नेस्टिंग साइट बनानी पड़ेगी। तो फिर ये हुआ कैसी नेस्टिंग साइट बनाई जाए। 2021 में और 20 में जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किए थे उस समय कहीं पर भी प्रॉपर स्पैरोज के लिए नेस्टिंग बॉक्स नहीं थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि आपको जैसा लग रहा है वैसे बनाइए। तो बच्चों ने इतनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाई, मतलब

0: उसे से घर बनाए, मिट्टी से बनाए कि ठंडा रहेगा, फिर उसमें जो है शू बॉक्स से घर बनाए। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपने घर बनाया इसको अपने घरों में लगा दीजिए और देखिए गौरैया इसको अडॉप्ट करती है कि नहीं, क्योंकि रहना तो उसी को है। तो हमने देखा कि जो शू बॉक्स थे उसमें गौरैया आके रहने लगी। तो वो पहली बार जब किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम वो वेंटिलेटर के ऊपर जो मैंने शू बॉक्स रखा था उसमें गौरैया ने बच्चे दिए हैं, अंडे हैं उसके अंदर, तो वो जो खुशी थी, मतलब आई हैव गॉट गूज बम्स, तो वो मतलब कि यस दिस इज वर्किंग एक्चुअली। फिर ये हुआ कि ठीक है, तो इस तरह के बॉक्सेस होने चाहिए, और फिर हमने उन बॉक्सेस को बनाना शुरू किया। तो पहली बार जब लकड़ी के बॉक्सेस हमने बनाए तो हमने रियलाइज किया कि उसके अंदर दूसरी बर्ड्स एंटर कर रही थी। तो हमने देखा कि मैगपाई रॉबिन एंटर कर रही है, ब्राह्मणी स्टर्लिंग एंटर कर ली है, तो कुछ गड़बड़ है। तो देन वी रियलाइज कि होल साइज बहुत बड़ा है, तो हम इसका होल साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो हमने होल साइज छोटा किया। देन वी रियलाइज कि उसकी छत के ऊपर कबूतर बैठ जाता है, और कबूतर जो गौरैया है वो शाय बर्ड है, तो कबूतर आके अंडे दे देगा तो वो अंदर आएगी नहीं। तो फिर हमने उसकी जो रूफ है वो स्लैंटिंग कर दी ताकि उसके ऊपर जो है वो कबूतर ना बैठ पाए। देन वी रियलाइज की प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फिर हमने उसके दोनों तरफ होल कर दिए। देन वी रियलाइज की अंडे कई बार फूट जाते हैं, उसमें चीटियां लग जाती है, तो फिर हमें रियलाइज हुआ कि नीचे भी होल होना चाहिए ताकि वो पानी नीचे से निकल जाए। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली 4 ईयर्स कंटिन्यूस जब मेरे बच्चों ने वर्क किया, तो हमने इंडिया के फर्स्ट साइंटिफिकली प्रूवन स्पैरो बॉक्सेस बनाए। आप कोई भी नेस्ट बॉक्स लेने जाएंगे उसमें हमेशा स्टिक होती है, पर हमने एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जर्व किया यदि घोंसलों में आगे स्टिक लगी होती है तो उसमें दूसरी बर्ड आकर बैठती है। बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं माँ आई है, और वो बाहर फेस निकालते हैं और वो खा जाती है, तो इसलिए हमने इससे स्टिक हटा दी। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली दिस इज व्हाट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरे बच्चों ने 4 साल में प्रॉपर नेस्ट डेवलप किए। और अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट ये है मैम कि आज इसको हम डिफरेंट स्टेट्स में डिलीवर कर रहे हैं, इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। हमने इसको मुंबई भेजा, जयपुर भेजा, पुणे भेजा, कई जगह से डिमांड आती है, नोएडा भी भेजा, और नोएडा में 1.5 साल के बाद अभी हमें पता चला कि गौरैया आने लगी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, फिर इस प्रोजेक्ट को अभी हमने जून में 42 कंट्रीज से कंजर्वेशनिस्ट आए थे, एशिया कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस जो काठमांडू में हुई है नेपाल में, वहां पर हमने इसको प्रेजेंट किया। 42 कंट्रीज से जो लोग आए थे, जो प्रॉपर साइंटिस्ट है, कंजर्वेशन का काम किया हुआ है, उन्होंने जब इस वर्क को देखा तो दे सेड कि इस तरह का वर्क अगर हम करते हैं तो इसमें बहुत सारा फंड चाहिए होता है, एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 11th क्लास आर डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क? सो वी गॉट लॉट्स ऑफ एप्रिशिएशन फ्रॉम देयर।
1: सो बहुत ही, मतलब कहें कि आपने जो अचीव किया वो एक कम लागत पे भी किया, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट आप बता रही हैं बच्चों की, क्या बच्चों के द्वारा और कम्युनिटी लेवल पर भी इसका इंटरेस्ट जागा लोगों का?
0: जब हमने परफेक्ट मॉडल्स डेवलप कर लिए तो हमें ये रियलाइज हुआ वी नीड फंड फॉर इट सो दैट वी कैन ऑल्सो इलैबोरेट दिस वर्क। तो हमने फिर मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी को अप्रोच किया, और सबसे अच्छी बात है कि बच्चों ने प्रेजेंट किया उनके सामने, और हमने उनसे कहा कि बिकॉज गौरैया जो है वो भी वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आती है, तो इसलिए वी नीड फंड्स फॉर इट, एंड लकली वी गॉट 1 लाख रुपीज फंड फ्रॉम देम। एंड जब हमने जो बॉक्सेस बनाए उस 1 लाख रुपीज से, वो हमने हमारे अवधपुरी के पूरे टेम्पल्स, गुरुद्वारे और जितनी रिलीजियस प्लेसेस थी वहां पर लगाए। तो वहां पर लगाने का एक बेनिफिट ये था कि जो बर्ड है उसको आसानी से दाना मिल जाता है, पानी मिल जाता है, और अगर नेस्टिंग साइट भी मिल जाती है तो उनका नंबर आसानी से इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद मेरे बच्चे इसको कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्व करते हैं, तो दे यूज टू से कि मैम अभी उसमें 3rd टाइम नेस्टिंग हो रही है और इसमें इतने अंडे हैं, इतने बच्चे उड़ गए। तो दिस होल ऑब्जर्वेशन दे आर राइटिंग, एंड वी हैव पब्लिश्ड आवर वर्क नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली।
1: सो एवरेज एडॉप्शन रेट क्या है, और कोई जो हमारे श्रोता अगर वो भी प्रेरित होकर पहल करना चाहे, कैसे वो बना सकते हैं और वो भी दे सकते हैं ये घर एक आशियाना गौरैया को?
0: तो हमारा जो मिशन है वो है कि हर घर गौरैया घर होना चाहिए, क्योंकि आप जहां आज अपने घर बना रहे हैं वो जीवों के ही थे। तो बेसिकली आज हम कहते हैं ना कि लेपर्ड हमारे घरों में घुस गया, टाइगर हमारे घरों में घुस गया, ये उल्लू हमारे घरों में आ रहे, हमारे घरों में नहीं आ रहे, हम उनके घरों में चले गए हैं, तो इसलिए उनका भी आशियाना बना रहे ये जरूरी है। तो जब हम इसके डिजाइन की बात करते हैं, जो होल साइज है वो हमने 1.5 से 2 इंच रखा है, इससे बड़ा होल साइज करने पर बड़ी बर्ड्स इसके अंदर जाने लगती है। दूसरा, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने होल बनाए हैं ताकि हवा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। इसमें नीचे होल्स हैं ताकि कभी अगर पानी इकट्ठा हो तो वो पानी निकल सके। इसका जो रूफ है वो हमने स्लैंटिंग बनाया है ताकि कोई पिजन्स वगैरह इसके ऊपर ना बैठ पाए, और कोशिश ये करनी है कि इसको विंडो या वेंटिलेटर के पास लगाएं या जहां पर आपका एसी लगा हुआ है। दूसरी, हमें ये कोशिश करनी है कि जहां पर भी आप इसको लगाएं उसके ऊपर रूफ होनी चाहिए ताकि पानी इसके ऊपर ना गिरे। और दूसरा, आप जो गौरैया है वो हमेशा वेंटिलेटर से एंटर करने की कोशिश करती है। आजकल हमने अपने रोशनदान में भी जाली लगा दी है, सब चीजों में जाली लगी है, तो गौरैया अंदर आ ही नहीं सकती है, तो इसके लिए सबसे अच्छी जगह वो है। दूसरा, इस पर हम किसी भी तरह का पेंट यूज नहीं करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से या रोड पर जो बॉक्सेस मिलते हैं वो बहुत कलरफुल होते हैं। हम भी कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को देते हैं, इसका जो एडॉप्शन रेट है वो 86% है मैम, तो हमने कई बार देखा कि जब हमने इसको दिया तो लोगों ने इसका होल साइज बड़ा कर दिया ये सोच के कि

0: इतने छोटे में कैसे एंटर करेगी।
1: हाँ
0: और दूसरा, कई बार लोग इसको येलो ऑरेंज कलर का पेंट कर देते हैं, इसमें ग्लासेस लगा देते हैं, क्योंकि ह्यूमंस लाइक एवरीथिंग टू बी ब्यूटिफुल, उनको हर चीज ऐसा सुंदर चाहिए, जबकि कोई भी बर्ड्स मैम कभी ये नहीं चाहती कि उनका
1: ये ज्यादा नेचुरल हैबिटेट से
0: कि उनका नेस्टिंग साइट कहाँ है ये किसी को भी पता चले। तो अक्सर इसको छुपा कर लगाना चाहिए, और हम इसका कलर ऐसा रखते हैं मुल्तानी मिट्टी या गेरू से, ताकि ये कैमोफ्लाज कर जाए वॉल के साथ आसानी से, तो ये दिखना नहीं चाहिए। कोई बर्ड ये नहीं चाहती कि उसका नेस्टिंग साइट किसी को भी पता हो। दूसरा, इसमें दाना पानी नहीं रखना है। इसमें कहीं पर भी अगर आप पानी के लिए बनाते हैं, बैठने के लिए बनाते हैं या दाने के लिए बनाते हैं, तो इसमें दूसरे जो बर्ड्स हैं वो आकर बैठते हैं और उसके वो प्रेडेटर्स हो सकते हैं, उसको चिक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
1: जी, तो बहुत ही आपका सराहनीय ये प्रोजेक्ट है, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि गोरैया तो हमारे जीवन का बहुत एक इंपॉर्टेंट, उसको कहा ही कॉमन हाउस स्पैरो जाता है।
0: आई वुड लाइक टू ऐड जस्ट वन थिंग इन दिस क्वेश्चन, ये आता है कि क्यों हमें लगा कि गोरैया को बचाना जरूरी है, गोरैया हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो गोरैया जो है मैम, ये ह्यूमंस के साथ रहती है, बहुत कम ऐसी बर्ड्स हैं जो ह्यूमन कम्युनिटी के साथ रहती है, गोरैया उनमें से एक है। और ये क्या करती है कि जब इसके बच्चे अंडा फोड़कर बाहर आते हैं तो उनको हाई प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और उस हाई प्रोटीन के लिए ये हमारे बगीचे में जितनी भी लार्वाज हैं, जो हमारी नालियों में है, जो हमारे पौधों में है, जो हमारे गमलों में है, उससे लार्वा को चुन चुन के अपने बच्चों को खिलाती है। और ये वही लार्वाज हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारी फूड चेन में एंटर करते हैं। तो यानी यदि आप एक छोटा सा गोरैया घर नहीं लगाते हैं, तो आप हर महीने किसी न किसी रोग या बीमारी की वजह से डॉक्टर को विजिट करते हैं। क्योंकि जो कम्युनिकेशन, जो आपके डिजीज हैं, जो आसानी से फैल सकते हैं, उन डिजीजेस को रोकने का एक ही तरीका है कि जो आपके पास लार्वाज हैं आसपास, जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको आप खत्म करें। तो खत्म करने का ये नेचुरल तरीका है, ये बायोपेस्टिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, और दूसरा तरीका है आप केमिकल्स डालेंगे।
1: तो आप जो कह रही हैं कि इतने सारे आपने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व किया है, जो खुद उन्होंने अपने आप रिसर्च की और बहुत एक कहें कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रही उनकी, तो उनके जो आसपास के जो उनका घर वाले हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, उनमें भी वो जागरूकता फिर एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट होता है।
0: यस यस ऑफकोर्स मैम, जब मैं किसी बच्चे को कुछ सिखाती हूँ तो वो बच्चे से अभिभावक और अभिभावक से कम्युनिटी में जाती है। तो जब ये स्पैरो बॉक्सेस मेरे बच्चे घर में बनाते हैं या लगाते हैं तो सबकी नजर जाती है, और जब उसमें चिड़िया आती है या अंडे देती है तो सिर्फ वो नहीं देख रहे हैं, इवन उनके दादा दादी बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले बहुत आया करती थी। तो इस तरह से एक पूरा घर, एक पूरा समुदाय, एक पूरी कम्युनिटी धीरे धीरे उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने एक दिया, बाद में वो 10 बनाते हैं, तो अब उनको ये पता है कि मेरे घर में अगर सोफा का कुछ लकड़ी बच गई है या डोर बनाते समय कुछ बच गया है तो उसको काट कर हम स्पैरो हाउस बना सकते हैं।
1: तो ये लकड़ी से ही बनता है या गत्ते से भी या किसी और मटेरियल से भी?
0: अगर आपको सिर्फ एक सीजन के लिए लगाना है तो आप गत्ते से भी बनाकर लगा सकते हैं। स्पैरोस आसानी से आ जाती है अगर आप एक नॉर्मल शू बॉक्स लेते हैं और उसमें होल कर देते हैं। जो सबसे बड़ा डर है मैम वो ये है कि उसमें पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो फूल जाएगा, तो उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार चींटियां आ जाती हैं जो बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, कई बार वो वीक हो जाता है और टूट जाता है, गिर जाता है, कई बार हवा से गिर जाता है। तो इसलिए हम एक सेफ नेस्टिंग जो है उनको प्रोवाइड करना चाहते हैं।
1: और एक और जो आपकी पहल जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, जो पेड़ों को लेकर आपने जो जागरूकता बच्चों में, जो QR कोड सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, थोड़ा सा ये बताएं।
0: मैम सेम आई वुड लाइक टू मेंशन, कोरोना के बाद जब बच्चे मेरे पास आए, कोरोना में हम लोगों ने ही सभी बच्चों को इंसिस्ट किया कि स्मार्टफोन्स खरीदिए, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए। तो ऑनलाइन क्लासेस लगभग 1.5 साल चली और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे बच्चों को सोशल मीडिया की आदत पड़ गई। तो जब पेरेंट्स मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि मैम हमारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल ही हाथ से नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे ये लगा कि वो टेक्नोलॉजी को जानते हैं, अब उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है, दैट आई हैव टू सी, बिकॉज उनके हाथ से मोबाइल छुड़ाना इज नॉट द सोल्यूशन, बट मोबाइल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, ये एक समस्या थी मेरे साथ। मैं एज अ क्लास टीचर आई वॉज फेसिंग दिस। एंड दूसरी तरफ मेरे बच्चों को मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे ही स्कूल में जो लगे हुए पेड़ हैं, बच्चे उनके भी नाम नहीं बता पा रहे, मतलब वो सिर्फ कुछ पेड़ों के नाम जानते हैं, वो पीपल और बरगद में अंतर तक नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने एक दिन 9th क्लास में बच्चों से पूछा कि क्या हम पेड़ों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक बच्चे ने कहा कि मैम जैसे हम अपना नाम बताते हैं, यदि वो भी अपना नाम बता दें खुद ही तो हम पहचानने लगेंगे। तो मैंने कहा इसके लिए क्या किया जाए, तो देयर वाज अ स्टूडेंट चाहत मिश्रा इन द 9th क्लास, सो ही सेड कि मैम QR लगा देते। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड कि QR लगा देते हैं, कैसे QR लगाओगे? तो बोले मैम आप देखिए ना, आपके लैपटॉप में QR लगा है, ये पेन में लगा हुआ है, हर चीज में, बुक्स में QR लगे हुए हैं, पेड़ों पे QR क्यों नहीं लगा सकते, 2021 की बात है ये। तो मैंने कहा लगाते हैं फिर, तो चलिए आप लोग QR बनाइए, फिर बना लोगे? तो दे सेड यस। बच्चे कभी ना नहीं कहते मैम, कुछ भी कहिए तो दे लाइक हाँ कर लेंगे ना मैम, दे नेवर से कि नहीं होगा, इवन आई वॉज ब्लैंक कैसे होगा। तो अगले दिन 5 QR कोड बन के पेड़ों पे लग गए मैम। और

0: ने उन सबको स्कैन किया, देयर वर ग्लिचेस, उनमें से एक भी चल नहीं रहा था, लेकिन QR बन गए थे। तो उससे एक होप डेवलप हुआ कि हम बना सकते हैं। फिर बहुत सर्च किया तो इंडिया में कहीं पर भी नहीं मिल रहा था जिन्होंने ये काम पहले किया हो। इंडिया के बाहर एक दो जगह मिला, पर वो जिस तरीके से लगा रहे थे वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है QR बनाते हैं। तो QR बनाने के लिए सबसे पहले आपको बॉटनिकल सर्वे करना पड़ेगा कि आपके स्कूल में कौन से पेड़ हैं, कितने प्रकार के हैं और कितने नंबर में हैं। तो ये एक बॉटनिकल सर्वे शुरू हुआ। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारे स्कूल में टोटल इतने पेड़ हैं और इतने प्रकार के हैं। तो शुरू किया कि इस पेड़ का QR बनाना है। अब ये काम जो है वो काफी डेप्थ में जा रहा था और इतना टाइम आप स्कूल में दे नहीं सकते क्योंकि स्कूल में बच्चों के फिक्स पीरियड होते हैं, क्योंकि जूम मीटिंग हम पहले सिखा चुके थे बच्चों को। तो हमने उसको यूटिलाइज किया और हम डेली 8 से 9:30 नाइट में बच्चों के साथ मिलने लगे। ऑलमोस्ट 50-55 स्टूडेंट्स नाइन्थ के सभी सेक्शन के मिला।
1: बच्चों में बहुत उत्साह था।
0: तो वो बच्चे कनेक्ट होते थे और हम डिस्कस करते थे कि क्या क्या लिखना चाहिए, QR में क्या क्या होना चाहिए। तो फाइनली 1.5 साल की मेहनत के बाद हमने प्रॉपर QR बनाया जिसमें इंग्लिश नेम, उसका हिंदी नेम, साइंटिफिक नेम होता था। और हम ये चाहते थे कि आप जिस जगह रहते हैं उस भाषा का भी विवरण उसमें होना चाहिए क्योंकि कम्युनिटी अगर स्कैन करे तो उसको पता हो। तो हम सिर्फ इंग्लिश नहीं चाहते थे, हम उसको हिंदी में भी चाहते थे, बाद में कई लैंग्वेजेस में बने ये। तो हमने उसको बनाया और उसमें इन्फॉर्मेशन दी कि ये पेड़ आपको कितना ऑक्सीजन देता है, इसका मेडिकल यूज क्या है। और इसके अलावा ये सब तो हमें नेट से मिल रहा था, लेकिन उसके बाद ये आया कि हमारी कम्युनिटी में इसका कैसे यूज करते हैं। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो गाँव से आते हैं, तो वो कई तरह से, जैसे अमलतास की फली है वो अपने गाय भैंस को खिलाते हैं डाइजेशन के लिए, और आज इसको हम पढ़ रहे हैं रिसर्च में कि अमलतास की फली इस तरह से यूज हो सकती है। कदम का जो फूल होता है हम कभी नहीं जानते थे उसके फल को खाया जाता है, पर मेरे बच्चे ने बताया कि मैम इसकी तो हम चटनी बना के खाते हैं। तो हमने उसमें विधि लिखी, अगर आपको इसको खाना है तो चटनी कैसे बनाई जाए। तो जब आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फ्रूट की चटनी कैसे बनाई जाती है। फिर हमने साइंटिफिकली पढ़ा तो पता चला कि अगर अक्टूबर नवंबर में जब ये फल आता है यदि आप इसे खा लेते हैं तो दिसंबर जनवरी में आपको सर्दी खांसी बुखार कुछ नहीं होगा।
1: कोई भी जो विजिटर है जो भी वहां से गुजर रहा है स्कैन करिए और आपको
0: यस यू डोंट नीड एनी ऐप फॉर इट, सिंपली विद द QR स्कैनिंग आप उसको स्कैन कर सकते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे वहां कमिश्नर मैम थी तन्वी हुड्डा, शी केम टू नो अबाउट इट। तो शी कॉल्ड अस कि कैन वी डू इट इन ऑल द पार्क्स ऑफ आर एरिया। तो शी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 72 पार्क्स। तो हमने 72 पार्क्स में QR कोडिंग की मैम, और हर बच्चा जो है जो उस पार्क के पास रहता था वो वहां जाता था सुबह वॉक करने अपने पेरेंट्स के साथ, वहां के जो लोग थे उनसे पूछता था कि इस पेड़ का नाम क्या है, और वो लिखता था कि ये पेड़ इतने हैं, ये पेड़ इतने हैं, और फिर हमने QR कोड्स लगाए। मोर देन 4,000-5,000 ट्रीज अभी तक हम QR कोडिंग कर चुके हैं। फिर हमने पन्ना टाइगर रिजर्व में लगाए, फिर हमने मुकुंदपुर में लगाए, ऐसे कई टाइगर रिजर्व्स में हमने QR कोडिंग की, एंड फिर पुणे में किया हमने सिखाया इसको, बैंगलोर में सिखाया। तो वो एक छोटे से जिले से जो काम शुरू हुआ था वो पूरे इंडिया में फैल गया, और फाइनली मिशन लाइफ के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लिया और लास्ट मार्च में सभी इंडिया के स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को मस्ट कर दिया गया। अब सभी स्टेट ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल्स में ये हो रहा है।
1: बहुत ही मतलब एक इनोवेटिव पहल है जिससे एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बच्चों का। और जो दूरगामी फायदे क्या हैं, क्या आपको पता लगता है कि कितनी बायोडायवर्सिटी है, नहीं है, किस तरह के सजेशंस या पॉजिटिव आउटकम्स क्या आती हैं?
0: अगर हम पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें मैं देखती हूँ। एक कम्युनिटी की तरफ से अगर हम देखें तो जब मेरे बच्चों ने ये डेटा निकाला, मैम बॉटनिकल सर्वे किया, तो जब हमारे पास रिजल्ट आया कि किस पार्क में कितने पेड़ लगे हैं और उसको जब हमने एनालाइज किया, दिस इज व्हाट इज रिसर्च, तो हमने देखा कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज है हमारे एरिया में वो रॉयल पाम था। दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज क्योंकि मेरा एरिया जेरोफाइटिक एरिया है नहीं, तो ये रॉयल पाम का नंबर सबसे ज्यादा कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि प्लांटेशन में आप रॉयल पाम सेलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब आप महुआ काटते हैं, शीशम काटते हैं, आम, बरगद, नीम, महानीम, कहां गए सब? ये सब कहां गए? जंगल जलेबी कहां गया? आपने इन सबको काट के और प्लांटेशन में क्या लगा दिया? रॉयल पाम। क्यों लगा दिया रॉयल पाम? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कम है। तो इस तरह से क्या हुआ कि मेरे नेटिव पेड़ सारे गायब हो गए, और अगर नेटिव पेड़ गायब हो जाएंगे तो पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जाएगी। उस पेड़ से जो मेरे इंसेक्ट्स रिलेटेड है, जो मेरे बर्ड्स रिलेटेड है, जो मेरी बटरफ्लाइज रिलेटेड है, एक पेड़ के खत्म होते ही वो सब खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे उस एरिया की पूरी बायोडायवर्सिटी खत्म हो जा रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हम ये सोचे कि यदि हम कोई पेड़ काट रहे हैं, यदि हम शीशम काट रहे हैं, महुआ काट रहे हैं, बरगद काट रहे हैं, हम लगा क्या रहे हैं? क्या हम वहां उस एरिया के नेटिव पेड़ लगा रहे हैं? सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, यदि आप QR कोड या PBL का इंपैक्ट की बात करें कि इसके रिजल्ट्स क्या हैं, तो आज से 4-5 साल पहले एक स्टूडेंट था युवराज, वो मेरे साथ QR कोडिंग करता था। करता था, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके फादर नहीं थे, तो कई बार ऐसा होता था कि युवराज से जब बात करो तो वो रोने लगता था अचानक से। बाहर से जब लोगों से इंटरेक्ट करके आता था तो कहता था मैम वो तो ऐसा कह रहे हैं, और बहुत जल्दी हार जाता था। पर वो प्रोजेक्ट करते समय मैंने उसमें देखा कि कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और फिर जब वो कमिश्नर सर से मिल रहा है, कलेक्टर सर से मिल रहा है, जब उसकी फोटो न्यूज़पेपर में आ रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस उसमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। और फिर उस बच्चे को क्योंकि QR कोड बनाना था तो उसको टैब मिल रहा था, उसको मेरा

0: लैपटॉप मिल रहा था, तो उसको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और अभी जुलाई में मुझे पता चला कि उस बच्चे ने IIT रुड़की ज्वाइन किया है।
1: कितना मतलब एक एक्सपैंड होता है आपका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है जो छात्रों का। और कोई ऐसा एग्जाम्पल आप बता सकें कि जो उन्होंने ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के दौरान सीखा उसको आगे जाके उनको उसकी हेल्प हुई हो?
0: एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है मैम, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट ही किया था तो आई यूज टू गिव दिस प्रोजेक्ट टू माई स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में देयर वर स्टूडेंट, बच्चों को मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था कि आपको अपनी सिटी में जो बर्ड्स मिलती हैं उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और उन बर्ड्स को आइडेंटिफाई करके आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, उनकी फोटोग्राफ्स आपको लेनी है। तो उस बच्चे ने वो प्रोजेक्ट किया एंड देन कुछ साल पहले दिल्ली से मुझे एक कॉल आया और वो बच्चा मुझे कॉल करके बोलता है कि मैम मैं विनायक बोल रहा हूँ, मैम आपने मुझे 9th में साइंस पढ़ाई थी, ओके। तो ही सेड कि आज मैं UPSC का इंटरव्यू देके आया हूँ। तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड देन ही वाज लाइक मैम आपको पता है आपने 9th में मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था जो बर्ड्स के ऊपर, तो आज मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपने कोई भी ऐसा काम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है प्रैक्टिकली किया है? तो बोलता मैम वो 9th में जो मैंने बर्ड्स का आइडेंटिफिकेशन किया था, मैं सुबह कैमरा लेके जाता था, बर्ड्स की फोटो खींचता था, गूगल से मैच करता था और कितना डिफिकल्ट होता था उस काम को करना, वो सारा मैंने आज डिस्क्राइब किया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज आई सॉ इन द न्यूज़पेपर दैट इज UPSC ranking was 47.
1: Wow.
0: So that is an achievement, ma'am.
1: Yes, yes. आपको लगता है कि ये जो experience इनको मिलता है project based learning में, जैसे आप कह रही हैं कि वो research जो stage है उसमें भी involved होते हैं और जिस तरह से धीरे धीरे dynamic changes होते हैं project में, उसको एक success तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से involved रहते हैं बच्चे, तो आपको लगता है कि पूरा उनका जो mindset है for life, ता उम्र के लिए वो एक जो conservation है, हमारी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उसके संरक्षण के प्रति जो जागरूकता है, वो आपको लगता है कि उन्हें हमेशा वो रहेगी, उनका पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी बन जाती है?
0: जो 40 स्टूडेंट्स या 50 स्टूडेंट मेरी क्लास में आज बैठते हैं, मेरा ये मानना है कि कल समाज वही बनाएंगे। आज जो समाज हम देख रहे हैं, यदि हम उसमें कुछ बुराइयां देख रहे हैं या कमियां देख रहे हैं, ये समाज कभी किसी दिन किसी टीचर की क्लास में बैठा होगा और आज जो मेरी क्लास में बैठा है ये आने वाली पीढ़ी है, ये कल समाज की नींव रखेगी। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लास में जितने विद्यार्थी बैठे हैं वो सभी के सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स बन जाएं। तो यहां पर मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं अपने विद्यार्थियों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाऊं, मैं उन्हें इस चीज के लिए समझा पाऊं, सेंसिटाइज कर पाऊं कि प्रकृति हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आप प्रकृति से लेते हैं कुछ तो उसके बदले में उसे दीजिए। हमें प्रकृति को बचाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। तो ये जो सेंसिटाइजेशन है यदि हम इस कच्ची उम्र में कर पाते हैं तो वो जीवन पर्यंत उनके साथ जाता है। जैसे मेरा एक विद्यार्थी है मैम, वो इंजीनियर है, तो वो बहुत पहले पढ़ाया था मैम, 2010-11 में पढ़ाया था, सबसे पहला बैच था मेरा। तो उस बच्चे को जब हम क्या करते थे, नेस्टिंग साइट्स ढूंढते थे कि चलो आज देखते हैं कहाँ कहाँ नेस्टिंग साइट्स हैं, गांव में जाते थे मेरे साथ और नदी के किनारे नेस्टिंग साइट ढूंढते थे। तो बड़ा मजा आता था कि ओपन बिल की नेस्टिंग साइट है, ये ईग्रेट्स की नेस्टिंग साइट है। वो वहां पढ़ाया और खत्म हो गया और बच्चे ने मैथ्स ले लिया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे उसका मैसेज आता है कि मैम मैं यहां से इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाल रहा था तो मैंने वो ना डायरेक्शन चेंज करा दिया मैम। आई सेड क्यों, क्या हुआ? तो ही वाज लाइक मैम वहां पे तो नेस्टिंग साइट है, तो ईग्रेट्स की और ओपन बिल्स की नेस्टिंग साइट है, तो वो पेड़ नहीं काटता मैम, बिकॉज दे नो कि ऐसी कई माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कई हजार किलोमीटर उड़कर बार बार इंडिया आती है और जब वो इंडिया आती है तो वो उसी पेड़ को ढूंढती है, उसी एरिया को ढूंढती है। तो इन एरियाज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। यदि वो पेड़ वहां पे नहीं है और बिल्डिंग बन गई है, क्योंकि वो उसका ब्रीडिंग सीजन है, वो ब्रीडिंग सीजन मिस आउट हो जाएगा। तो इसलिए इन नेस्टिंग साइट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बच्चा किस फील्ड में है, लेकिन नेचर से कनेक्ट होना तो सभी के लिए जरूरी है। मैं
1: बिल्कुल जरूरी है हमारे खुद के भविष्य के लिए भी। सो डॉक्टर शुक्ला, जैसा आप कह रहे हैं कि हर एक जो नागरिक है वो आगे चलकर किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन जो पर्यावरण का संरक्षण है वो तो हम सभी के भविष्य के लिए, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य के लिए भी बहुत ही जरूरी है, जैसा हम देख ही रहे हैं। एक और जो आपकी पहल है बीजों को लेकर, सीड बिन्स को लेकर, उसके बारे में आप हमें बता सकती हैं उसका क्या है ये पहल और उसका क्या उद्देश्य है?
0: मैम इसकी कहानी भी इसी तरह से शुरू हुई थी कि एक बार मैं 3rd फ्लोर पे खड़ी हुई थी और मैंने देखा कि नीचे से जो गार्बेज व्हीकल थी वो निकल रही थी और लोग क्या कर रहे थे, आम के बीज को काली पन्नी में बांधकर और उसमें डाल रहे थे। तो मैंने अपने विद्यार्थियों को यही समझाया कि बीज कचरा नहीं है, क्योंकि बीज को जो आप कचरे की गाड़ी में डाल रहे हैं वो कचरा है ही नहीं। दूसरा, बीज का जो मौलिक अधिकार है उसको मिट्टी पानी मिल सके, आपने वो भी खत्म कर दिया। तो और वो बीज का एक पोटेंशियल है कि हर बीज जो है या तो 40 दिन में या 1.5 महीने में वो उगाता है, अगर उतने दिन में उसको मिट्टी पानी नहीं मिला तो बीज खत्म। इस तरह से लाखों बीज हम भारत में हर साल बर्बाद कर। तो इस यहां से ये मुहिम शुरू हुआ कि हम जो बीज है उसको गार्बेज व्हीकल में नहीं डालेंगे। तो फिर इसको लेकर हमारी नगर निगम कमिश्नर मैम से बात हुई कि मैम क्या हम बीज को अलग से इकट्ठा कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने गाड़ियों में थैलियां डलवाई और पूरे एरिया में

0: लोगों से रिक्वेस्ट किया कि बीजों को अलग से दीजिए और इन बीजों को हमने बोरियों में कलेक्ट किया। तो जब ये काम कौन कर सकता था, मेरे विद्यार्थी पूरे शहर में फैले होते हैं तो वो हर जगह अपने अपने एरिया में बता रहे थे और इस तरह से हमने बीजों को कलेक्ट किया। और यहाँ पर यह हुआ कि स्कूल में कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हमने स्कूल में डस्टबिन के साथ सीड बीन्स रखे, तो मेरे विद्यार्थी जो सीताफल खाते थे वो सीताफल के बीज लाके उसमें अलग से डालते थे, जो आम खाते थे वो आम लाके अलग से डालते थे। तो यहाँ से सीड बीन्स का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और इस मुहिम के चलते हम नगर निगम के साथ मिलकर आम के उस साल लगभग 6,000 बीज और सीताफल के लगभग 10,000 बीज बचा पाए थे और वो 6,000 में से 2,500 पेड़ हमने डेवलप किए थे।
1: तो बहुत ही मतलब एक नेचुरल रिसोर्स है देखा जाए तो। ये एक और जो आपका कॉन्सेप्ट है प्लांट्स में इमोशन है, ये क्या तथ्य है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं और इसका क्या फायदा है?
0: एक बार क्लास में ही पढ़ाते हुए मैंने जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में जब अपने विद्यार्थियों को बताया तो मैंने कहा था कि वो कहते हैं कि उनमें फीलिंग्स होती है, उनमें भावनाएं होती है, वो फील करते हैं। तो मेरा एक बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मैम सच में फील करते हैं क्या, क्या वो हमारी बात समझते हैं? तो मैंने कहा करके देखते हैं। तो विद्यार्थी बड़े एक्साइटेड होते हैं, यस मैम कर सकते हैं क्या, मैंने कहा करते हैं। तो हम दो पौधे लाए और दोनों पौधे जो है वो बराबर साइज के थे, एक जैसी मिट्टी थी, एक जैसे गमले थे, एक जैसे सूरज की रोशनी मिल रही थी और हम नाप कर दोनों में पानी डालते थे, बराबर खाद डालते थे। बस एक डिफरेंस जो था, हमने पांच बच्चों का एक ग्रुप बनाया जो पेड़ों से बात करता था, तो एक ग्रुप जो है वो उस पेड़ को ग्रेटिट्यूड शो करता था, अप्रिशिएट करता था, और जो दूसरा ग्रुप है वो थोड़ा क्रिटिसाइज करता था। तो उसकी जो लैंग्वेज होती थी वो रफ होती थी और क्रिटिसाइजिंग होती थी। तो मैंने इनसे कहा कि आप बात करिए इनसे, लेट्स सी कि कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो जब बच्चों ने बात किया, एक महीने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट थे, तो जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ ज्यादा थी। तो मुझे लगा कि शायद हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ तो है जो हम गलत कर रहे हैं। तो फिर दे सेड कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं हो रहा है। मैंने कहा लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, अभी रोकते नहीं है इसको। हमने अगले महीने फिर उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया, तो मैम इसकी जो ग्रोथ थी जिससे हम नेगेटिवली बात कर रहे थे उसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक गई और इसमें नई पत्तियां निकलने लगी। तो हम नोट करते थे कि इसमें नई लीफ आ रही है, स्केल से नापते थे कि कितनी बड़ी होगी। 3 महीने आते आते मैम जो पौधा जिसको क्रिटिसाइज करते थे वो मर गया और जो दूसरा वाला पौधा था वो हरा था। तो मतलब अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो जिन बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया, जब उन्होंने पीपीटी प्रेजेंटेशन इस प्रोजेक्ट का दिया, तो वो बच्चे जितनी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे उतने अच्छे से तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो अब मेरे बच्चे सुबह आते हैं तो पेड़ों से हेलो करते हैं, मैं खुद हेलो करती हूँ, बात करती हूँ।
1: तो बहुत ही कहें कि दूरगामी इसके प्रभाव है और लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है एंड बच्चों के लिए भी उनकी जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें आपको लगता है कि इसका बहुत अहम भूमिका है।
0: यस मैम, हमने एक और मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम बच्चों को पेड़ों को हग करने के लिए कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज हग अ ट्री मूवमेंट। तो जब वो पेड़ों को हग करते हैं, देयर इज अ साइंटिफिक रिपोर्ट जो ये कहती है कि अगर आप सिर्फ 28 सेकंड्स तक अगर किसी पेड़ को हग करते हैं तो आपके अंदर एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है और ये वही हार्मोन है जो मदर को हग करने से रिलीज होता है। और मैंने बच्चों के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखे हैं।
1: डॉक्टर शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई आकाशवाणी स्टूडियोज में और आपने इतने विभिन्न पहलुओं पर इतने विस्तार से बताया और एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको सम्मानित किया है भारत सरकार ने उसके लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक लाइन आखिरी में बोलना चाहूंगी, महात्मा गांधी ने कहा था बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी और मुझे खुशी है कि हम वह परिवर्तन है। धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बच्चों के साथ गौरैया और पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष योगदान देने वाली तथा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अर्चना शुक्ला के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: FM 102.2 MHz पर ही आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में दिए गए संबोधन की रिकॉर्डिंग का प्रसारण।
5: दिस इज आकाशवाणी। यू विल नाउ लिसन टू द एड्रेस बाय द प्राइम मिनिस्टर एट द इंटरनेशनल स्पेस समिट हेल्ड टुडे इन फ्रांस व्हिच ही एड्रेस्ड वर्चुअली।
6: प्रेसिडेंट मैक्रों, एक्सलेंसीज, डिस्ट्रिक्ट Participants, Namaskar. I'm happy to be a part of the first International Space Summit. I thank President Macron for his gracious invitation and for taking this timely initiative.

0: सुरेश राग भाई।
1: की पदयात्रा तमिलनाडु में चल रही थी। एक पड़ाव पर लोकसभा की एक सदस्य उनसे मिलने आई। उन्होंने कहा, विनोबा जी, आप कुछ करके दिखाइए। विनोबा मुस्कुराए और बोले, आप हमसे ऐसी उम्मीद मत रखिए, हम तो सहज आलसी जीव हैं। कुछ करके दिखाने के लिए जोर आजमाना पड़ता है, ताकत लगानी होती है। मान लीजिए गुस्सा ही करना हो तो चेहरे को एक विशेष आकृति देनी होगी, आंखों को टेढ़ा करना होगा, वाणी में कठोरता लानी होगी। हमसे ये कुछ नहीं बन पड़ेगा, हमें ये अपने स्वभाव के विपरीत लगता है। कुछ करके दिखाना हमारा धंधा नहीं है। कुछ करके दिखाने की ना उन्हें कोई इच्छा थी और ना आदत, लेकिन कुछ किए बिना तो रह ही नहीं सकता कोई। सवाल है कि कैसे किया जाए। इसकी युक्ति गीता बताती है कि कर्म को अकर्म में बदल दो। ये कैसे संभव होगा? इसका अनोखा जवाब विनोबा ने अपने एक सूत्र में दिया है, कर्म प्लस विकर्म बराबर अकर्म। आमतौर से विकर्म का मतलब लोग लगाते निषिद्ध कर्म, मगर विनोबा ने इसे एक अजीब अर्थ दिया है। उनकी दृष्टि में कर्म माने विशिष्ट कर्म, चित्त शुद्धि का आंतरिक विशेष कर्म। अगर बाहर से स्वधर्म रूपी कर्म के साथ साथ अंदर से विकर्म रूपी हृदय शोधन की प्रक्रिया चलती रहे तो निष्कामता अपने आप आएगी और कर्म का रूपांतर अकर्म में हो जाएगा। इस तरह कर्म यानी अकर्म करने वाला हमेशा मस्त रहेगा, और ये मस्ती विनोबा जी की प्रमुख विशेषता थी। इसी सिलसिले में एक प्रसंग याद आ रहा है। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया था। ब्रिटिश सरकार अपने स्वार्थ के लिए उसमें कूद पड़ी। उसमें उसने भारत को भी जबरदस्ती झोंक दिया। महात्मा गांधी ने सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का निश्चय किया। गांधी जी ने दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू को चुना, मगर वो सत्याग्रह करने के पहले ही पकड़ लिए गए। सत्याग्रह फैल गया और लगभग 1 लाख स्त्री पुरुष उसमें जेल गए। एक सत्याग्रही विनोबा से 1 लाख हो गए। महात्मा गांधी की सुप्रसिद्ध पुस्तक मंगल प्रभात का उन्होंने मराठी पद्य में अनुवाद किया, नाम दिया अभंग व्रते। उसकी भूमिका देखने लायक है। पहला पद है, प्रेरणा परमात्म्याची महात्माची प्रसन्नता, वाणी संत कृपेची ही विन्याची कृत्योन्नता। प्रेरणा परमात्मा की है, प्रसन्नता महात्मा की है, वाणी संतों की कृपा से मिली है, और विन्या यानी विनोबा का क्या है, कृति की शून्यता, ठेठ सिफर। और पांचवें पद में तो हद हो गई है, अद्वितीय ची एकत गुरुचे गौरव उन्जे विन्या शून्य बिना भूत फावला गणिता परी। विनोबा गणित के शून्य जैसा है, गुरु एक है और अद्वितीय है, जिसके आगे शून्य या जीरो जोड़ने पर उनका गौरव बढ़ता जाता है। ये शून्य सचमुच विलक्षण है। इसी का प्रताप है कि विनोबा द्वारा बहुत व्यापक कर्तृत्व संपन्न हुआ। 13.5 साल तक देश की अखंड पदयात्रा करते हुए गांव-गांव उनका जाना, लगभग 60,000 किलोमीटर की चलाई, 8,000 सभाओं में संबोधन, 2.5 करोड़ लोगों का साक्षात्कार और 40 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन भूमिहीनों के लिए मिली। उसमें कुछ झगड़े की रही, कुछ बंजर, लेकिन आधी के करीब बढ़िया बेहतरीन निकली। इसमें से 13 लाख एकड़ भूमिहीनों में बांटी जा चुकी है। इतिहास में ऐसे बड़े पराक्रम की मिसाल बिना जोर जबरदस्ती के लोगों का स्वेच्छा से ज़मीन का दान देना दूसरी नहीं मिलेगी। मगर विनोबा जी को इसका स्पर्श तक नहीं हुआ। आप पूछेंगे कि उन्हें ये सद्धता कैसे था। जवाब में उन्हीं का एक श्लोक पेश है। वो कहते हैं, वेद वेदांत गीता नाम विनुना सार उद्धृता, ब्रह्म सत्यम जगत स्फूर्ति जीवनम सत्य शोधनम। वेद वेदांत और गीता का सार विनया ने क्या निकाला? यह कि ब्रह्म सत्य है, जगत स्फूर्ति है और जीवन का उद्देश्य सत्य का शोधन है। जरा देखिए कि शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या यानी झूठा बताया। विनोबा सच झूठ की उलझन में न पड़कर उसे स्फूर्ति का स्रोत मानते हैं और जीवन उनके लिए शोध है, लगातार शोध है। जब विनोबा 12वीं कक्षा में बड़ौदा के कॉलेज में पढ़ रहे थे तब वो इस शोध के लिए निकले। 25 मार्च 1916 को अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हुए उन्होंने घर छोड़ा। अब शुरू होती है ब्रह्म की खोज। उन्होंने सोचा कि हिमालय की गुफा में जाकर खोज करेंगे। उधर ख्याल ये भी आया कि अंग्रेजों का राज छाया हुआ है और उनकी

गुलामी से निजात पाए बिना चैन लेना गुनाह है। इस वास्ते बंगाल जाने की बात मन में आई ताकि क्रांतिकारियों से मिले और कम से कम एक अंग्रेज का खून तो कर ही डालें। पहुंच गए काशी, वहां दो पैसे रोज पर गुजर करते हुए संस्कृत पढ़ने लगे। संयोग ऐसा हुआ कि महात्मा गांधी से चिट्ठी पत्री चली। उन्होंने अहमदाबाद के पास कोचरम में अपना आश्रम खोला था, वहां आने को कहा। तारीख 7 जून 1916 को विनोबा वहां पहुंच गए। मन को समाधान हुआ। विनोबा कहते हैं, भगवान ने मुझे गांधी जी के पास पहुंचा दिया। उनमें मुझे न केवल हिमालय की शांति मिली बल्कि वो ज्वलंत देशभक्ति भी मिली जो बंगाल की विशेषता है। मैंने अपने आप से कहा कि मेरी दोनों अभिलाषाएं पूरी हो गईं। आश्रम में रहकर विनोबा तरह तरह के काम करते थे, चरखा कताई, सूत बुनाई, रुई धुनाई, पखाना सफाई, बागबानी, खेती, पढ़ाना इत्यादि, लेकिन अंदर से ब्रह्म की खोज जारी रही। ये खोज बहुत सावधानी से चलती थी, यहाँ तक के वो उन्नति की तरफ से भी सतर्क रहते थे। उन्हीं के शब्दों में, मेरा स्वार्थ, मेरी मिल्कियत, मेरी खेती, ये जो सब मेरियाँ हैं उन्हीं में एक मेरी है, मेरी उन्नति, जिसे लोग आध्यात्मिक नाम देते हैं, मगर इसका संबंध आत्मा के साथ नहीं है, देह के साथ है। जहाँ मेरी मर जाती है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति शुरू होती है। आध्यात्मिक उन्नति के नाम से ही जिंदा रहने की युक्ति मेरी ढूंढ लेती है तो उसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। कौन नहीं जानता कि निजी उन्नति या पूर्ण या सत्य का ऐसा भयंकर होता है। इसी वजह से महात्मा गांधी ने सत्य की सामूहिक साधना पर जोर दिया। मेरी नहीं, सामूहिक, जो सबके लिए वही अपने लिए, जो सबके लिए नहीं वो अपने लिए भी नहीं। अपना उदय जरूर हो लेकिन सबके उदय के साथ में, यानी सर्वोदय के साथ। इस सर्वोदय विचार को विनोबा ने शान के साथ उठाया और बापू की हत्या के बाद जब ये प्रश्न सामने आया कि अब क्या किया जाए, तब विनोबा ने सुझाया कि सर्वोदय समाज की स्थापना में लगा जाए। ऐसे समाज का इसमें कोई अन्याय नहीं हो, दबाव नहीं हो, दमन नहीं हो, शोषण रहित, शासन मुक्त, साम्ययोगी समाज। आगे चलकर विनोबा ने अपने परमधाम आश्रम को 14 मार्च 1959 को ब्रह्म विद्या मंदिर में बदल दिया। इस तरह शुरू हुआ ब्रह्म विद्या का केंद्र, यहाँ प्रधानतया बहनों की ताकत अथवा स्त्री शक्ति द्वारा ब्रह्म विद्या की सामूहिक साधना चलती है। 5 साल बाद विनोबा जी ने वहाँ से एक मासिक पत्रिका शुरू की, नाम दिया मैत्री। मैंने हंसी में पूछा, ये नया क्रम आपने क्या शुरू कर दिया? तो हंसे और नोटबुक पर लिख दिया, मैत्री, ब्रैकेट में बोले माई थ्री। कौन थ्री? सत्य, प्रेम और करुणा। ये मैत्री ब्रह्म विद्या की वाहक बनकर 12 फरवरी 1964 से लगातार निकल रही है। और क्योंकि ब्रह्म विद्या को देश काल की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, विनोबा जी ने जय हिंद से आगे बढ़कर जय जगत का मंत्र दिया। इसका श्री गणेश 1957 में उनकी कर्नाटक पदयात्रा के दौरान हुआ और तब से ये खूब चला है। और काम क्या करना है? राजनीतिक स्वराज को घर घर, गांव गांव तक पहुंचाकर आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, इसी का नाम है ग्राम स्वराज। इस तरह ब्रह्म विद्या के द्वारा जय जगत मंत्र का शंखनाद करते हुए ग्राम स्वराज की स्थापना का लक्ष्य सर्वोदय समाज के सामने आ गया। इसमें बाधा क्या आ रही है? जाहिर है, सत्ता की दलगत राजनीति की तरफ से। ये राजनीति पैदा करती है आपस में विश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, दिल से दिल को अलग करती है। कश्मीर यात्रा के दौरान 20 अगस्त 1959 को विनोबा जी ने कुकरनाक की पब्लिक मीटिंग में कहा, मोटर में एक यंत्र राह दिखाने वाला होता है और दूसरा होता है गति बढ़ाने वाला। विज्ञान या साइंस आपकी जिंदगी की रफ्तार बढ़ाती है और रूहानियत जिंदगी की दिशा दिखाती है। अगर सियासत बीच में आएगी, दखल देगी, तो आपकी मोटर गड्ढे में जाएगी। मैं आपके सामने एक समीकरण रखता हूँ, राजनीति या सियासत प्लस विज्ञान बराबर सर्वनाश, अध्यात्म या रूहानियत प्लस विज्ञान बराबर बहिष्ट। रूहानियत और साइंस एक हो जाए तो दुनिया में बहिष्ट यानी स्वर्ग आएगा। वैज्ञानिक युग की मांग है कि आदि आदमी के बीच की दीवारें खत्म हों, चाहे वे सत्ता की हों, संपत्ति की हों, राजनीति की हों, धर्म या पंथ की हों, या चाहे कोई और क्यों ना हो। जैसे ईश्वर एक है, उसी तरह इंसान भी एक है। विनोबा ने इसे नई तौहीद नाम देते हुए स्पष्ट किया है। कुरान शरीफ में एक बात सिखाई है, अल्लाहु अहद, यानी अल्लाह एक है। अब इसी तरह नई तौहीद देनी होगी, इंसान हु वहद, इंसान एक है। पुरानी तौहीद है कि अल्लाह एक है, नई तौहीद है कि इंसान एक है। सब मजहबों की किताबों में ये लिखा है।

0: लेकिन हम किताबें पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ किताबों का गरूर या अहंकार करते हैं। अब ये गरूर कैसे दूर हो? पेनोवा जी ने इसका रास्ता खोजा है। उन्होंने अनेक धर्म ग्रंथों के सारांश बड़ी निष्ठा और मेहनत के साथ तैयार किए। सितंबर 1958 में धर्मपद प्रकाशित हुआ। 1962 में कुरान सार आया। 1963 में जपजी या ग्रंथ साहब आया। 1964 में भागवत धर्मसार, 1967 में कृष्ण धर्मसार, 1969 में ऋग्वेद सार आदि। और गीता पर तो उन्होंने धूलिया जेल में रहते हुए 1932 में 18 व्याख्यान दिए थे, जो गीता प्रवचन के नाम से मराठी में छपे। इसका हिंदी गीता प्रवचन के नाम से निकला है, जो लाखों की तादाद में छपा है। देश की अन्य भाषाओं में भी ये निकल चुकी है, अंग्रेजी में भी निकली है। इसके अलावा अपनी मातृभाषा मराठी में विनोबा जी ने गीता का पद में अनुवाद किया और उसे गीता ही नाम दिया। वो महाराष्ट्र के घर घर में पहुँच चुकी है। विनोबा कहते हैं कि गीता का उनके ऊपर अत्यंत उपकार है। रोज़ वो उसका आधार लेते और रोज़ वो उन्हें मदद देती। मदद किस वास्ते? वही एक काम, ब्रह्म की खोज के लिए। 50 साल तक लगातार व्यापक कर्मयोग में लगे रहकर खोज करते हुए 5 जून 1966 को विनोबा ने सूक्ष्म कर्मयोग में जाने का ऐलान किया। मेरी पहले से यही आकांक्षा है कि स्थूल कर्मयोग की एक मर्यादा है, उसके बाद उसे छोड़ना चाहिए और सूक्ष्म कर्मयोग में प्रवेश करना चाहिए। इससे कर्म ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। आगे चलकर विनोबा ने क्षेत्र संन्यास ले लिया। बाहर कहीं ना जाकर ब्रह्म विद्या मंदिर में ही रहेंगे और दोपहर के बाद का भोजन दूध या दही और उबली हुई भाजी भी बंद कर दिया। ज़्यादा समय मौन रहते थे, सुबह शाम जरूरत हो तो 1 घंटा बोलते थे। विनोबा का क्षेत्र संन्यास उनको ले चला सूक्ष्म से सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम यानी शून्य या ब्रह्म की तरफ। एकम ब्रह्मम शून्यम च या पश्यति सा पश्यति। इस प्रकार वो शून्य या पूर्ण ब्रह्म की ओर बढ़ते गए। कुछ दिन पहले 5 नवंबर 1982 को विनोबा की देह में कुछ अस्वस्थता आई। डॉक्टरों ने बताया कि दिल का दौरा है। उपचार लेने का आग्रह उन्होंने किया। विनोबा ने स्वीकृति जाहिर की, लेकिन कौन सा उपचार? ब्रह्म उपचार।
1: श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे वार्ता विनोबा भावे जी और उनका उत्तराधिकार, प्रस्तुत कर रहे थे सुरेश राम भाई। और इसी के साथ कार्यक्रम युववाणी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई देशों के नेता इस समय नई दिल्ली में ब्रिक्स व्यापार मंच में शामिल हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कार्यक्रम में सदस्य देशों और साझेदार देशों के 2000 से अधिक उद्योगपति और प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स व्यापार मंच है।
2: मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्रीज टू द वर्ल्ड।
3: ब्रिक्स देशों से दुनिया को होने वाला वस्तु निर्यात 2003 में करीब 900 अरब डॉलर था, जो 2024 में बढ़कर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर हो गया। इसके साथ ही वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स

0: देशों की हिस्सेदारी भी करीब 12% से बढ़कर अब लगभग 24% हो गई है।
1: 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। सम्मेलन में भारत की अध्यक्षता 2026 का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। 2 दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप्स और उद्यम शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भारत 5 प्रमुख कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। साथ ही भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की। ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज रात 8:30 बजे तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और नियंत्रित आवाजाही रहेगी। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण बड़ा कदम है। HPV टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में आज पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

लीजिए प्रस्तुत है सांध्यकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का विवरण। आज संध्या 7:30 से हम आपको सुनवाएंगे महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकते हैं मैच की समाप्ति तक। कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। संध्या 6:15 पर हम आपको सुनवाएंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज सुनिएगा रेखाचित्र जमुना मौसी, प्रस्तुत करेंगे मनमोहन अभिलाषी। संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं संध्या 6:30 पर।

संध्या 6:50 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। इस कार्यक्रम में आज आप सुन सकते हैं रेडियो कृषि पाठशाला। प्रायोजक होंगे भारतीय सरसों अनुसंधान सेवर भरतपुर। इस कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता सरसों की उपयुक्त किस्में और खेत की तैयारी। जानकारी देंगे डॉक्टर अरुण कुमार, भेंट करेंगे ओपी सिंह। साथ ही साथ आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हमारी प्रसारण ऐप पर। इसके अंतर्गत संध्या 7:31 पर हम आपको सुनवाएंगे संदेशों पर आधारित कार्यक्रम शाम सुहानी। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं रात्रि 8:00। देशभक्ति परक रचनाएं आपको सुनवाएंगे रात्रि 8:20 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन सकते हैं रात्रि 8:30 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नवरंग होगा रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे नौटंकी कृष्ण सुदामा। लेखक होंगे सामंतलाल, प्रस्तुति हरि बाबू कौशिकी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। रात्रि 11 बजे हिंदी में 11:05 पर होंगे अंग्रेजी समाचार। प्रसारण ऐप पर हमारी सभा समाप्त होगी रात्रि 11:10 पर। अभी तक आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर ब्रज साहित्यिक। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं रेखाचित्र जमुना मौसी, प्रस्तुत कर रहे हैं मनमोहन अभिलाषी।
1: जमुना मौसी को जैसो नाम हो वैसो ही वाको काम हो, वो काउ ठोर पे जम के नाय रहती। काउधना या घर में वतराय के आती तो काउधना बागर में। छल कपट बातें कुसन दूर हो, सहज और सरल हृदय की वो सामरी सलोनी जमुना। सुंदर दार में काउ सो कम ना, कद काठी सो सामान्य, मुखार विंद पे नखुआ नेक चौड़े, नैनन में तिरछोपन की छवि, मुस्कान थी रविवारी जमुना, हमारे गरारे में सबकी चिरपरिचित थी। बाकू छोरा छापरे जमुना मौसी कहके पुकारती है। याई तरियासों जमुना मौसी की छवि सबके हृदय में बसी ही। सबन सो मेल जोल राखवो, घर वर जाय के बातन को चस्का चाखवो, वाको प्रमुख गुण हो। जमुना मौसी के संबंध में हमारी बसंती दादी बताए रही थी, बाकी लोहरे पन में ही मैया बाप एक एक करके नाई बीमारी सो ग्रसित है के भगवान को प्यारे है गए। या बात को दाताराम बाबा कह गए, जे बाकी

आई और ताऊ ने पारी पनासी ही बड़े लार प्यार सो पाल पोस के नहीं मेरे ने बाकू मैया बाप को अभाव को अभास ना होनतीयो ने को पांच दरदातानु बाने गांव की पाठशाला में पढ़ाई करी ही ताऊ ताई के पास खेत हतनाए इतबित को दूसरे के खेतन में काम करके नहीं वे मजदूरी सो अपने पेट भरते है। कहो जाए है कि जब खेत कट जानते तो फसल कट जावे के पाछे जब बाकू कूटवे के ताई पहर में ले जाते तो ता पाछे या के ताऊ ताई ने सिलाब बीन के नाई अपनो पेट भरो और याकुन पारो। जमुना जब नेक सियानी भई तो बाकी ताई कुन चोरन को ताब आयो और मुक्तिरी जो है दवाई दारू करी पर वो बच ना पाई। जासो जमुना पे दुख को ऐसो पहाड़ टूटो कि बस वो तो अपनी सारी खुशी को बामे दबाए के अपनो जीवन काटवे को मजबूर है कही थी। सियानी सोखी जमुना को अब घर में राखवे के बाकी ताऊ को अखर भलो बाकी ब्याह की चिंता वाय सतावे लगी। आस पास के गामन में बाकू छोरा देखवे के ताई बुझा तो पर बाकू मन माफिक छोरा ना मिलतो या तरिया सो जमुना को छोरा देखवे जावे में आत जात बाकी तो पनैयाऊ घिस गई। कछु दना पाछे वाई गांव की पद्मा बामनी ने अपने पीहर में बाकू एक छोरा बताया जो पढ़ाई लिखाई में लंबर एक और सीधो साधो स्वभाव एवं ते कोसन दूर माँ ने दसवों पास कर लियो हो बाकू बाके मामा मामी ने पारो हो या तरिया सो जमुना और वा लाला की एक सी परवरिश भई। काल क्रम सो बात आगे बढ़ी जमुना के ताऊ ने अपनी सबरी बात छोरा के मामा मामी ने कही और हाथ जोड़ के अर्ज करी देखो लेवे देवे को तुम पे रोटी और बेटी है तुम तो एक ब्याह की धोती पहरा के बाकू मेरे घर सो फेरा पार के ले जाओ मेरी या लाड़ली के हाथ पीरे है जाए पे मैं तो सुख की सांस लूंगा तभी मोह चैन पर है वो। छोरा बारे ने जमुना की ताई की बात मान ली ता पाछे जमुना की ताऊ ने रोमते भये दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करी ऐसो है मेरे जोरे एक लोहर सो पक्को मकान है जहां में दो तीन कोठरी है रसोई है और सब नहावे धोवे के न्यारे गुसलखाने होते हैं। बुढ़ापे में या जमुना के अलावा मेरे को ना है ई ही मेरी बुढ़ापे की लठिया है याई के सहारे ते मेरी जिंदगी कट जाएगी या लिए तुमको को ऐतराज ना हो तो इन लालान को मेरे जोरे रहवे को छोड़ दीजो। जासो एक आंख तो मेरी जमुना बिटिया है ही और दूसरी आंख मोए और मिल जाएगी मोए जासो जीवन की पगडंडी दिख जाएगी जो कछु है वो सब इन्हीं को है बात जब बनवे लगे तो बनती चली जाए जब बिगड़वे लगे तो बिगड़ती चली जाए आखिर परमात्मा की कृपा भई और बंसी बारे ने बिनकी सुन ली और सब बातन पे जब वे राजी है गए तो जमुना की ब्याह को मुहूर्त निकल गयो। सबरे गांव में जमुना को ब्याह पक्को है वे की बात बिजली की तरिया कौंद गई बस फिर का भयो सबके घरन सो जमुना को पूरा आर्थिक सहयोग देवे के प्रस्ताव आवे लगे। ब्याह को मुहूर्त निकलो और फेरा पड़े वो सुहाग के लाल जोड़ा में अब पूरे गांव की बिटिया बनके गांव से विदा भई सबरो गांव हिचकी लेके नहीं रोवे जमुना के बाह में पूरे गांव ने दोनों हाथ से खोल के नहीं कन्यादान कीनो मुक्तेरे रुपया और जेव जाठे के संग कपड़ा लत्ताऊ जमुना के ताई आ गई हती कमर कलियू और पलकाचार के नेक पे सबरे गांव बारे ने जॉब बोई और बाकी परकम्मा लगाए के जमुना की बढ़िया बढ़िया बाकू जो है साड़ी लहंगा फरिया और जमुना के दूल्हे के ताई मुक्तेरे कपड़ा लत्ता दिए कछु बाके संगीन के जमुना के दूल्हे में हवा भरी कि तू अब की बेर जो को जॉब होवे आवे तू तो तू बाको गठजोड़ो पकड़ लीजो तू जो चाहेगो वो तो मिल जाएगो। जमुना के दूल्हे मुरारी पे या को खूब असर ना पड़ो माँ ने कही थी कि मैं काऊ को गठजोड़ो ना पकड़ूं वो तो पूरे गांव को जो प्यार नेह मिलो है वो मेरे जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है फिर संस्कारवान मेरी जे जमुना मेरे काज तो समनते बड़ो दहेज है। बाकी इन बोलन को सुनके लाला मुरारी के भाईलेन की जवान पे अलीगढ़ को तारो सो लग गया सबरे दांत अंतरे उंगरिया दबा गई देखो आज के हालातन में हूँ मुरारे जैसे युवकों हैं जो काऊ देन दाइजे में न को विश्वास ना रखे बिनके काजे तो बस बहु ही सबनते बड़ो दहेज है। जमुना

0: ससुराल गई। बड़े आदर सत्कार सो बाकू घर में लियो गयो। मांगलिक गीतन सो पूरी बाखर गूंज उठी ही। रात को रज जगो भयो। सकारे सेठ चौरा पूजवे के ताई पूरे मोहल्ला में जय नौतो लग गयो। और गांव की छोरी छाबरी बहु बेटी सबई सद धज के मुरारी के घर आ गई। शहर ते बैंड बाजो और गांव ते नगाड़े तासे बारे आए। सबने अपने अपने कर्तव्य सो पूरो गांव गुंजायमान कर दियो। नाचते गाते बैयरबा नीन को टोल को टोल बीच गांव की गैलते निकरो तो सबरो गांव उमड़ पड़ो। और मुरारी और बाकी बहु गढ़जोड़ा में सेठ चौरा पूजवे को सदस्य के जा रही हते। सबकी खुशी को कोई पार ना रहो। छोरा छाप रहे गाजे बाजे के संग भैया बानिन के संग नाचवे में कूद पड़े है। यात्रियां सो सब काम भयो और जमुना जो है सुखी है गई। और जमुना के या सुख को देख के नाई बाकी मैया बाप सब जो है बड़े सुखी भये। और बाकायदा भैया स्वर्ग गामन के भैया भाई लेवे आए तो साहब खूब खातिरदारी भई। और फिर आनो जानो है गो। और फिर बाके पाछे वो जमुना और बाकी दूल्हे मुरारी सब जो है यहाँ बस गए। जमुना के ससुराल वाले की जो है बात को सिरमाते रख के नहीं जमुना के गांव के सबरे भैया भाभी बहन एक रात वहीं ठहर गए। जहाँ उन्होंने कि भाई यहाँ ठहर जाओ तो ज्यादा अच्छा रहे। तो वो ठहरे बेदा भाई खूब खातिरदारी भई। और ता पाछे जमुना अपने भैया भाभी के संग ट्रैक्टर टोली में गीत गाती भई माते चलवे लगी। तो बाकी ससुराल सो भी मांगल गीतन की वो बोचार भई कि सबरो वातावरण खुशीन के गुंज सो गुंजायमान है उठाओ। जमुना की ससुराल सो फिर जमुना को लावे के मुहूर्त की बात पूछी गई। तो बाकी भैया भाभी ने कही कि शुक्र को सकारें चल के एतवार को ले आई। शुक्र और एतवार आए सब रीत रिवाज पूरी भई। तापाछे जमुना के दूल्हे को ससुराल में ही को काम करवे के ताई अरज करी गई। और जमुना के ताई ताऊ को अब इन लालान के अलावा हक को या लिए जमुना के ब्याहों पहले कही गई बाकी ताऊ की जो बात रखी गई ही बिन के आधार पर जमुना के पियर में ही लाला मुरारी लाल रहवे लग गई। जमुना पूरे गांव की लाडली बिटिया ही लोरे लोरे छोरा छाप रेवा को जमुना मौसी कह के नाई संबोधित कर रहे। वो लोरे लोरे बालकन को घर घर जाके इकठोर करके पढ़ामती ही। कबूबू काऊ बालक को डांट डपट नाई करे ही प्यार सो पढ़ामती ही। बाकी पढ़ाए हुए छोरा आगे जाके नाई शहर में ऊंची पढ़ाई करके को तो एहलकार बन गए थे तो को और ऊंचे जो है अफसर बन गए। यात्रियां सो अब जमुनाऊ बूढ़ी बड़ी है गई। या लिए सब बाकू जमुना मौसी कहवे लग गए थे। जमुना मौसी सो काई के घर की बात छिपी नाई रहती। सब सो मन की सो पतरामती सबकी सुनती और अपनी कहती। ऐसी ही हमारी जमुना मौसी। ऐसी मौसी हर गांव में है जाए तो वाह गांव में तो गंगा जमुना और प्रेम की धारा प्रवाहित होती रहे और सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन जाए।
1: ब्रज साहित्य कार्यक्रम में अभी तक आप सुन रहे थे रेखाचित्र जमुना मौसी। प्रस्तुत कर रहे थे मनमोहन अभिलाषी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: और भैया ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत ही अब आपको सुनवा रहे हैं ये ब्रज लोकगीत। प्रस्तुत कर रहे हैं राम स्वरूप शर्मा।

श्रोताओं, अभी तक आपने सुना ये ब्रज लोकगीत स्वर स्वामी राम स्वरूप शर्मा का था, और इसी के साथ ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संध्या वंदन।

श्रोताओं, ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी हरिओम शरण की आवाज़ में। अगली भक्ति रचना आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में, और आइए आप सुनते हैं अगली भक्ति रचना स्वर चित्रा सिंह का।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आपने सुनी ये भक्ति रचना अमित त्रिवेदी की आवाज में फिल्म केदारनाथ से। और इसी के साथ संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मृणालिनी दीक्षित।

0: किसानों की सेवा के लिए तैयार भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर।
1: सरसों की उन्नत किस्में और तकनीकों का करे विकास।
0: भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान उन्हें पहुंचाए किसानों के पास।
1: सरसों की वृद्धि, किसानों की अभिवृद्धि,
0: जिससे होगा परिवार का उत्थान।
1: किसानों की सेवा के लिए भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान लाया है
0: वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रचार प्रसार के अवसर।
1: प्रशिक्षण कार्यक्रम देगा जानकारी वैज्ञानिक गतिविधियों और अनुसंधान की।
0: किसान मेला जिसमें आप देख पाएंगे नए नए प्रयोगों और नई पद्धतियों को।
1: प्रथम पंक्ति प्रदर्शन देता है करके सीखने का मौका।
0: रेडियो से ले पाएंगे जानकारी सरसों की उन्नत खेती के बारे में।
1: इसके माध्यम से सरसों की उन्नत किस्मों और तकनीकों की जानकारी किसानों को देकर
0: सरसों का उत्पादन एवं किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए संस्थान सदा सेवारत है।
2: ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम

0: सुनने वाले सभी भैया बहनान को मलालनी बहन की राम राम। भैया आज हम आपको सुनवाएंगे रेडियो कृषि पाठशाला, जो कि आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं, जिसमें हम नए नए विशेषज्ञों द्वारा आपको सरसों से संबंधित अनेकों जानकारियां दिवावे हैं। जहाँ कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर। तो भैया आज रेडियो कृषि पाठशाला की पहली कड़ी है, जहाँ में हम आपको जानकारी दिवाएंगे सरसों की उन्नत किस्में और खेत की तैयारी, और जानकारी देंगे आपको डॉक्टर अरुण कुमार मदान, और इनसे बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: किसान भाइयों राम राम, एक बार पुनः आपका स्वागत आपके अपने कार्यक्रम जिसका नाम है रेडियो कृषि पाठशाला हम जिसको कहते हैं। किस तरह से सरसों और राई की फसल हम अच्छी तरीके से करें, अच्छा उत्पादन हो और उसकी लागत मूल्य भी कम आए, तो इस संदर्भ में हम अब आपको 24 कड़ियों के इस रेडियो कृषि पाठशाला के कार्यक्रम से शुरुआत कर रहे हैं। और आज के इस पहले एपिसोड में पहला जो कार्यक्रम है उसका जो विषय रखा गया है वो है सरसों की उपयुक्त किस्में और खेत की तैयारी। क्योंकि जब किसी भी फसल को हम करते हैं तो खेत की तैयारी प्रमुख होती है, कैसी मिट्टी हो, किस तरह से उसे तैयार करें ताकि जब अच्छी किस्में उसमें डालें तो हमारा जो पौधा है वो ठीक से बन करके आए और एक अच्छी फसल की जो आधारशिला है वो वहाँ रखी जा सके। तो इस संदर्भ में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर अरुण कुमार जी। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, जिसमें सेवर में स्थित है। डॉक्टर साहब आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
2: नमस्कार, किसान भाइयों को भी मुझे नमस्कार।
1: जी जी, तो जब हम सरसों की या राई की खेती करते हैं, और आप तो एक संस्थान में रहते हैं तो वहाँ पर रिसर्च भी होती है, वहाँ आप काम भी करते हैं, तो बताइए कि सरसों की फसल के लिए एक अच्छी मिट्टी कौन सी होती है और उसकी तैयारी के लिए क्या क्या ऐसे पक्ष हैं जो वैज्ञानिक तौर तरीके पे आप हमारे किसान भाइयों को सुझाएंगे इसमें।
2: किसान भाइयों, आज मैं सरसों की फसल की, अब जैसे कि बारिश चल रही है अभी और अब सरसों की फसल की तैयारी आप करने भी लगे होंगे और अगले महीने फिर अक्टूबर में तो बुआई होने लगती है, तो जैसा कि मेरे से पूछा गया है कि सरसों खेती के लिए किस तरह की मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो इस पे ये सरसों की खेती जो है वो विभिन्न प्रकार की मिट्टी वाली भूमि पे आराम से ली जा सकती है, परंतु सबसे उपयुक्त भूमि जो है वो दोमट मिट्टी वाली खेती होती है। ठीक, उस पे अच्छी खेती होती है। हालांकि भरपूर उपज हल्की दोमट से चिकनी मिट्टी में आसानी से ली जा सकती है, तो इस तरह से जो मिट्टी जो उपयुक्त होती है दोमट मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी होती है उसमें अच्छी फसल ले सकते हैं किसान भाई। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, सरसों की अच्छी पैदावार के लिए जमीन का जो पीएच मान होता है लगभग वो 7 के आसपास होना चाहिए।
1: जी, मतलब एक तरह से नॉर्मल
2: नॉर्मल नॉर्मल उसमें हो जाता है,
1: थोड़ा सा बलुई हो, थोड़ी सी दोमट हो, दोमट हो, पीएच उसका 7 हो,
2: पीएच 7 के आसपास होना चाहिए। और ये पीएच पता लग जाता है, किसान भाई वाली टेस्ट है करवाते हैं, हेल्थ कार्ड वगैरह बनते हैं तो ज्यादातर पता होता है, नहीं है तो मैं उनको सलाह देता हूँ कि कर लेना चाहिए,
1: कर लेना चाहिए। इसीलिए शायद मिट्टी की जांच के लिए बहुत किसी भी फसल से पहले कहा जाता
2: है, हम भी जोड़ देते हैं किसान को कि हेल्थ कार्ड हो तो बहुत अच्छा है, उससे पता लगता है कि हमें कौन सी फसल कब करनी है और उसके अलावा फिर खाद का उपयोग और कौन सी कम है,
1: कितने पोषक तत्व डालने,
2: वो सारी चीजें पोषक तत्वों की पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी मिट्टी में किस चीज की कमी है तो वो ज्यादा देना है।
1: सही बात है, तो ये प्राथमिक कार्य है, किसी भी किसान को किसी भी फसल से पहले
2: करना चाहिए।
1: इसमें अब उसमें तैयारी की बात है, जैसे मान लो ठीक है इस तरह की मिट्टी हो तो हमारा किसान भाई उसमें करेगा, अभी तो आपने कहा जैसे बारिश अब हो रही है लेकिन धीरे धीरे कम होगी, अब उसकी फिर तैयारी करेंगे तो कितनी लगभग जोते हैं, किस तरह के हल से करें और किस तरह की भुरभुरी बना ले, थोड़ा सा मिट्टी की तैयारी के बारे में बताइए।
2: ठीक है, अगर सरसों खेती के लिए खेत की मतलब किस तरह मिट्टी तैयार करना है ना, तो अब ज्यादातर हमारे जो यहाँ फसल होती है मुख्यतः राजस्थान में जो वो एक फसलीय पद्धति के रूप में ली जाती है ज्यादातर हमारे राजस्थान में, तो ऐसा ही होता है ज्यादातर, तो जिसमें क्या खरीफ में खेत को खाली छोड़ देते हैं किसान। ठीक है, तो अब

0: रबी की फसल, जैसे अभी राई सरसों तो रबी की फसल है, तो अच्छी पैदावार को ठीक खेत को तैयार करना बहुत जरूरी है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए, पहली बात तो ये है। और भूमि की तैयारी के वक्त नमी संरक्षण का विशेष ध्यान रखना जरूरी
1: मतलब
0: होता है।
1: जिस उसमें हम सरसों की फसल लेने जा रहे हैं उसमें नमी तैयारी में ऐसा ना हो कि नमी उसकी कम हो
0: ध्यान,
1: जाए उसमें।
0: हाँ, नमी का बहुत ध्यान रखना है।
1: जी
0: और अब जैसे किसान भाई तो जागरूक है ही हैं, पर भूमि की तैयारी इस वर्षा ऋतु से ही शुरू हो जाती है लगभग, ठीक है। अब जैसे अब वर्षा ऋतु शुरू हुई, खर पतवार है, ये सारी चीजें हैं, नमी को संरक्षण के लिए सबको मिट्टी को पलटने वाले हल से जोतना शुरू कर देना चाहिए, जुताई करनी चाहिए और गहरी जुताई करनी चाहिए, और जिससे कि खरपतवार वगैरह सब नष्ट भी हो
1: तो
0: जाती
1: ये
0: है।
1: सब काम तो हमारे किसान
0: किसान
1: भाई
0: भाई करते
1: कर
0: रहते
1: चुके
0: कर चुके
1: होंगे, है ना।
0: होंगे,
1: हाँ
0: और उसके बाद हर बारिश, प्रभावी बारिश के बाद उन्हें जुताई करनी चाहिए, उससे क्या नमी संरक्षित रहती
1: संरक्षित
0: है।
1: रहेगी।
0: और लगभग किसान अनुमान तो लग ही जाता है कि अब बारिश शायद ज्यादा नहीं होगी, तो आखिरी बारिश के समय अच्छी तरह खेत को जुता जोत करके उसे पाटा लगा
1: पाटा
0: देना,
1: है
0: चढ़ा देना
1: ताकि
0: चाहिए,
1: नमी का
0: जमीन दब
1: संरक्षण।
0: जाए, नमी बनी रहती है। और मान लो बाद में बारिश होती भी है तो वो खेत के अंदर पानी अच्छा चला जाता है, अंदर जाएगा, नमी संरक्षित रहेगी, और अगर लवणीय है थोड़ा तो वो पानी के साथ नीचे चला जाता है थोड़ा, तो उससे मिट्टी का मतलब नमक जो लवणी होती है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से लास्ट में फिर जब बुआई करनी है तब उसको खेत को क्या करना है कि जुताई करनी है, दो आड़ी जुताई करनी है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना है अच्छी तरह, खेत में ढेले वगैरह नहीं होने चाहिए,
1: क्योंकि बहुत छोटा
0: हाँ,
1: बीज
0: छोटा
1: होता
0: बीज
1: है
0: बहुत छोटा होता
1: दब
0: है
1: जाएगा
0: तो
1: उसमें।
0: अब ठीक है, तो इसलिए ढेले वगैरह बड़े बड़े होते हैं तो दिक्कत होती है, उससे नमी भी खत्म होती है जल्दी, तो जितनी न मिट्टी भुरभुरी होगी उतना अच्छा खेत तैयार होगा, फिर उसकी बुआई कर
1: बुआई
0: सकते
1: कर सकते हैं। अब चलिए खेत तो तैयार आपने कर दिया, किसान भाइयों को सलाह दे दी,
0: हैं।
1: तो अब इसमें किस्मों की बात आती है कि भाई अच्छा बीज अगर है, अच्छी किस्म का चयन आपने कर लिया तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पैदावार की आपने तैयारी कर ली। तो इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए, ब्रज क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, पूरी यूपी की बात कर रहे हैं और आसपास का जो एरिया है हमारा, झांसी है, उधर बनारस है, इधर आपका पहाड़ों की तरफ नजीबाबाद की बात करें, तो पूरे चूंकि राजस्थान में हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, तो किस्मों के बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कौन कौन सी किस्में ऐसी हैं जिनको अगर वो चयन कर लें और अच्छा बीज ले लें तो एक अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। किस्में बताइए, फिर मैं पूछता हूँ कि ये बीज कहाँ मिल सकते हैं इसमें।
0: हाँ, किस्मों के बारे में मैं बताना चाहूंगा। अब ये जैसा मैंने आपको बताया किसान भाइयों को कि मिट्टी के जा मतलब कैसी तैयारी करनी है खेत की, सारा कुछ वो तो तैयारी लगभग चल रही होगी। अब आती है किस्मों की बात। अब किस्मों की बात, सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी एक किस्म किसी क्षेत्र में तो अच्छा कर रही है, ये कोई जरूरी नहीं है कि ये हरे एक ही किस्म सब जगह अच्छा करेगी,
1: पूरा हाँ उत्पादन ठीक है
0: क्योंकि
1: जी।
0: किस्म का जो चयन करना होता है किसान को, वो अपने क्षेत्र की जलवायु एक तो वो है, दूसरा उसकी मिट्टी वहाँ की कैसी है वो, और फिर इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जैसे, और सिंचाई की उपलब्धता,
1: सिंचित
0: हाँ,
1: है
0: सिंचित
1: असिंचित
0: है
1: है,
0: असिंचित है,
1: बारानी
0: वहाँ
1: में है।
0: बारानी है, वो सारी चीजें हैं। तो इसीलिए किसान को अपने क्षेत्र की जलवायु, भूमि का प्रकार, सिंचाई की उपलब्धता, मिट्टी आदि के बारे में पूरा उसको देखकर किस्म का चयन करना
1: जी
0: पड़ता है,
1: जी अगर हम
0: ठीक।
1: जाने जैसे मान लो सिंचित क्षेत्र और समय पे बुवाई कर रहे हैं तो फिर कौन सी किस्में वो
0: हाँ,
1: ले ले उसमें।
0: अब जैसे अब समय पे बुआई करने के लिए, और हमारे मतलब मैं जो कुछ वैरायटी के नाम
1: हाँ
0: बता रहा हूँ
1: जी
0: किस्में
1: जी
0: हैं, जैसे सिंचित है उनके पास सिंचाई का साधन है, समय पे बुआई कर सकते हैं, और समय का सही समय तो अक्टूबर में ही होता है, और 10 अक्टूबर के आसपास शुरुआत करते हैं, सबसे बेस्ट है 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बीच में बुआई का सही उचित समय है, मेरे मतलब
1: जी
0: हमारे हमने जो अनुसंधान में पाया है।
1: जी जी
0: तो सिंचित और समय पे बुआई के लिए एक जैसे गिरराज किस्म है, ये किस्म लगभग सब जगह यूपी में भी अच्छा चलती है और चली भी है, क्योंकि हमारा वो हम करते हैं तो हमें फीडबैक भी मिलता है किसानों से, तो गिरराज वैरायटी है ये, अच्छी चल रही है एक तो, और ये इसका बीज हमारे संस्थान में अवेलेबल भी है। इसके अलावा एक तो ये हो गई समय पे बुआई सिंचित के लिए, इसके अलावा है बीपीएम 1825, ये भी वैरायटी जो है समय पे बुआई के लिए, इसका दाना मोटा होता है और सिंचित के लिए और सही समय पे बुआई करने के लिए है, मानिए कि अक्टूबर में बुआई करनी है इसकी, और इसका जो उत्पादन है वो भी 25-26 क्विंटल पर हेक्टर के

0: हिसाब से, और ये किस्म दो तीन दो साल पहले ही रिलीज हुई है, तो अच्छी किस्म है। तो ये एक तो ये किस्म है। इसी तरह एक है RH 1975, ये भी समय पे बुआई हो सकती है इसकी भी, और ये भी एक वैरायटी है। इसके अलावा PM 37 है। इस तरह की जो वैरायटी है ये समय पर बुआई के लिए सही टाइम पे और अक्टूबर के माह में ये कर सकते हैं किसान भाई हमारे। तो ये सिंचित और समय पर बुआई के लिए जो वैरायटी
1: जी
0: मैंने बताई किसमें है।
1: हाँ, ऐसा अगर बारानी है, मान लो सिंचाई की सुविधा नहीं है और वहाँ अगर बुवाई करनी है तो वहाँ की किस्में कुछ अलग हो जाएंगी, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए।
0: हाँ, जैसे कि आपकी उचित किस्मों के बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो जैसे ये समय पे बुआई। अब कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पानी की उपलब्धता नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है।
0: तो फिर दिक्कत आती है। तो हमने जो अनुसंधान के हिसाब से इसलिए अलग अलग कैटेगरी बना रखी है। समय पे बुआई के लिए है, बारानी अगर असिंचित क्षेत्र है तो वहाँ के लिए दूसरी वैरायटी होगा, है लवणीय और क्षारीय भूमि है तो वहाँ के लिए दूसरी होगी, अगेती बुआई करना है तो उसके लिए हमें दूसरी वैरायटी किस्में हैं, तो इस तरह से है। तो जैसे मैंने समय का और उसके लिए तो बता दिया सही समय पर बुआई करने के लिए। मान लो बारानी और असिंचित क्षेत्र है तो कौन सी वैरायटी यूज़ करें, मतलब या किस्म लें, चयन कैसे करें, तो उसमें है जैसे DRMR 1165-40, एक वैरायटी है हमारे संस्थान की वैरायटी है ये बारानी क्षेत्रों के लिए ही है। इसमें पानी की आवश्यकता इतनी नहीं है, फिर भी उत्पादन अच्छा देगी, एक तो ये है। इसके अलावा RS 1424 है एक वैरायटी, इसके बाद RS 725 है, ये वैरायटी भी अच्छी है। तो ये सब चल रही है वैरायटी जो असिंचित और बारानी क्षेत्र के लिए है। इसके अलावा मान लो जहीं के किसानों के साथ दिक्कत ये आ जाती है कई बार, है लवणीय या क्षारीय भूमि है,
1: हाँ
0: तो वहां पे भी हमारे मतलब वैरायटी है किस्में हैं इस तरह की जो लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए उचित है, अच्छा उत्पादन देंगी। उसके लिए जैसे है CS 58, 58 नंबर है ये, और इसी तरह CS 60, ये लवणीय और क्षारीय भूमि के लिए उपयुक्त है, इसका उत्पादन भी बढ़िया है। ठीक है, एक तो ये है। अब मान लो कुछ किसान भाई जैसे होते हैं जो पहले थोड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा
1: जी
0: सा समय उनके खाली रहते हैं, खेत और तैयारी हो
1: हाँ,
0: जाती
1: मान
0: है,
1: लो खेत तैयार है,
0: तैयार है,
1: मौसम भी
0: मौसम
1: अनुकूल
0: भी
1: है,
0: अनुकूल
1: तो
0: अगर लगता
1: हाँ
0: है
1: जी
0: तो अगेती बुआई बोलते हैं उसको, थोड़े दिन पहले सब करते हैं। तो उसमें अगेती बुआई के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो PM 27 है एक वैरायटी, है PM 28 है, PR 2006-1 है, ये उपयुक्त किस्म है, ये अगेती के लिए है।
1: जी, मतलब
0: हाँ
1: अब जैसे मौसम है, अभी
0: हाँ
1: सितंबर अब चल रहा
0: हाँ
1: है
0: चल रहा है,
1: तो, और आपका मौसम ठीक है और आपके खेत तैयार है तो आप कर सकते हैं उसमें।
0: पर यह है कि अभी थोड़ा तापमान ज्यादा रहता है तो थोड़ा
1: हाँ
0: लेट ही करें तो अच्छा है।
1: वो हाँ,
0: हाँ
1: नहीं उपयुक्त
0: हाँ
1: समय तो आपने
0: उपयुक्त
1: बता दिया
0: बता
1: कि
0: दिया,
1: अक्टूबर
0: अक्टूबर
1: का
0: का
1: जो
0: ही
1: पहला
0: सब पहला
1: पखवाड़ा है।
0: पकवाड़ा है उसमें बेस्ट है।
1: हाँ, लेकिन अगेती की
0: हाँ
1: बात कर रहे हैं तो
0: हाँ तो ये वैरायटी
1: ये
0: ठीक है,
1: वैरायटी ले सकते
0: उत्पादन
1: हैं।
0: ठीक
1: अगर
0: है
1: किसी कारण से देर हो जाती है,
0: खेत के अगर
1: कोई
0: मान।
1: यहाँ कोई
0: हाँ
1: नई फसल फसल काट के कोई किसान कर रहा है तो वहां भी किस्में बदल जाएंगी।
0: हाँ वहां पे भी है, वही तो मैंने कहा
1: जी
0: समय पे टाइम पर, फिर लेट हो गया मतलब लवड़ी हो गई, वारानी हो गई,
1: जल्दी हो
0: अब
1: गई
0: जल्दी
1: है,
0: हो गई, अब
1: ऐसे अब
0: इसी
1: लेट हो
0: तरह
1: गया।
0: अब लेट हो गया। अब लेट कब होता है, लेट जब होता है जब पहले से खेत में कोई फसल हो,
1: फसल खड़ी हुई है।
0: खरीफ की फसल है मान लीजिए
1: हाँ
0: आपके, तो वहां थोड़ा लेट, जैसे 20 मतलब 15 अक्टूबर के बाद फसल कटी तो थोड़ा लेट होगा, तो खेत की तैयारी भी करनी है, वो सारा करना है। तो लेट के लिए मतलब वैरायटी है जो कि आप नवंबर के प्रथम सप्ताह तक भी बो सकते हैं, थोड़ा उसके हिसाब से एक ब्रजराज वैरायटी है, एक राधिका है, एक BPM 11 है। तो BPM 11 नई वैरायटी है, राधिका भी नई है, ब्रजराज, तीनों नई वैरायटी मैंने बताई है।
1: जी
0: ये थोड़ा अगर लेट है, एक फिर एक और वैरायटी जो खूब चल रही है किसान भाई शायद जानते भी होंगे, NRCHB 101 101 के नाम से बड़ी प्रचलित है ये वैरायटी, तो थोड़ा देरी से भी हो जाती है तो ये वही अच्छा
1: जी
0: उत्पादन देती है।
1: अच्छा, अब एक किसान है, उसके पास सब कुछ उपयुक्त है और बढ़िया उत्पादन लेना चाहता है, तो फिर उसमें आप क्या कहेंगे कि कुछ किस्में अलग हो जाएंगी उसमें, कि भाई
0: हाँ
1: भाई
0: मत
1: भाई उसके पास सिंचाई के भी साधन है, अच्छी मिट्टी भी है, खेत भी तैयार है, मौसम भी अनुकूल है, तो कोई एक दो ऐसी वैरायटियां जिन पे आप नाम लेना चाहें।
0: कुछ वैरायटी ऐसी है मतलब गुणवत्ता के हिसाब से,
1: हाँ, गुणवत्ता मतलब उनमें तेल अच्छा
0: तेल
1: होगा,
0: अच्छा, तेल की मात्रा भी
1: उसकी
0: ठीक
1: रेट
0: है,
1: अच्छे मिलेंगे।
0: और 0-00 के हिसाब से वैरायटी है। अब रेट
1: हाँ
0: का तो भाई अलग मसला है, वो कोई बात
1: हाँ
0: नहीं। उसमें अगर मान लो उसके हिसाब से करना चाहते हैं तो PD ZM 35 है, ये 00 वैरायटी है।

0: PDZM 36 है, सीरीज है 35 36, PM 33, ये वैरायटी गुणवत्ता के हिसाब से
1: तो
0: ठीक
1: डबल
0: है।
1: जीरो से क्या मतलब है इसमें?
0: इसमें क्या है ना, दो चीजें होती है, यूरिसिक एसिड होती है, ग्लूकोसिन जो आंखों से आंसू आते हैं ना,
1: वो जो झरप कहते हैं
0: झरप
1: इसको,
0: कहते हैं वो।
1: अब कई बार
0: वो
1: तो
0: दोनों
1: झरप अगर नहीं
0: एक
1: आ रही तो
0: स्टैंडर्ड,
1: आदमी मानता ही नहीं कि सरसों का तेल है।
0: हाँ, तो वो स्टैंडर्ड कम करने के लिए उसको डबल, मतलब यूरिसिक एसिड को भी 1-2% से नीचे कर रखा है, और उसको 30 मिली वो एक मानक है उसके नीचे से कम कर रखा है। उसके हिसाब से जो करना चाहें तो कर सकते हैं, ये चीज है।
1: जी अच्छा, अब ये आपने तैयारी की बात कर दी और अच्छी किस्में भी बता दी। एक अच्छा बीज किसी व्यक्ति को, क्योंकि कई बार किसान भाई पैसा भी लगाता है लेकिन अच्छा बीज नहीं मिलता, क्योंकि बीज भी ले आया, बीज डाल दिया, अच्छा तो उत्पादन नहीं हुआ बहुत देर में जाके, तो आप क्या कहेंगे कि आपका संस्थान अच्छे बीज उपलब्ध कराता है जो वैरायटियां आपने बताई हैं?
0: हाँ, इनमें से कई सारी वैरायटी तो हमारे यहाँ हमारे संस्थान की ही मैंने ज़्यादातर बताई हैं, और हमारे संस्थान में मतलब पखवाड़ा होता है सितंबर माह में,
1: अच्छा,
0: और इस साल इस वक्त है, अभी तो टाइम है, अभी शुरू होगा, 16 सितंबर से शुरू होगा, 30 सितंबर तक चलेगा,
1: जी,
0: और इसमें सारी हमारे संस्थान की जो पॉपुलर वैरायटी हैं जो
1: वो मिल जाती
0: मिल
1: है वो।
0: जाती हैं सारी। अब उसमें मतलब कार्य दिवस में आए किसान उनको आना पड़ेगा और लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं
1: लेकिन
0: है।
1: हम जब पैदावार कर रहे हैं तो एक अच्छी जगह से अच्छी वैरायटी के लिए हमें
0: हाँ,
1: जाना चाहिए,
0: जाना चाहिए।
1: देखना
0: आसपास
1: चाहिए।
0: के हमारे किसान आते भी हैं खूब, और खूब दूर दूर से भी आते हैं, यूपी से भी आ जाते हैं, आते हैं, ऐसी बात नहीं। तो मैं अपने संस्थान की जो वैरायटियां हैं किस्में जो मिलेंगी मिल जाती हैं मिलेंगी, और उचित दाम है, ट्रीटेड सीड है, और असली किस्म है, मतलब सही किस्म है, जो होनी है वही है, सारा कुछ गुणवत्ता वाइज सब कुछ सही है उसके अंदर। तो एक तो वैरायटी है BPM 1825, किस्म है ये मिलेगी वहां पर, गिरराज मैंने बताई थी अभी वार्ता में, वो भी है अवेलेबल। इसके अलावा BPM 11 भी अवेलेबल है, राधिका भी अवेलेबल है, और ब्रजराज भी है। तो ये सारी वैरायटी, और DRMR 1165 40, ये सारी वैरायटी हमारे संस्थान पे उपलब्ध है। 16 तारीख से बीज पखवाड़ा
1: 16 से
0: चलेगा,
1: तीस
0: हाँ,
1: के बीच
0: 30 के
1: में।
0: बीच में चलेगा। किसान कार्य दिवस में कभी भी वर्किंग डे में आए लेके जाएं, कोई दिक्कत नहीं, कैश पे मिलता है, अपना सब पैसा
1: जी
0: लाए ले जा
1: अच्छा,
0: सकते।
1: किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा दूर हैं और हमारी बात को सुन रहे हैं, सरसों की फसल उनको ले, एक बाजार से भी अगर बीज खरीद रहे हैं तो उसमें क्या चीजें एक किसान भाई को देखनी चाहिए कि ये चीजें हैं तो ये बीज मेरा ठीक होगा? और उसमें
0: किसान भाई को बाजार से अगर बीज लेते आते तो जो भी चीज परचेज कर रहे हैं तो उसका रसीद वगैरह होना चाहिए,
1: ताकि
0: ठीक,
1: बाद में क्लेम कर सके
0: बाद में
1: उसमें,
0: क्लेम कर लें, और अच्छी
1: अच्छे डीलर से
0: अच्छी
1: लें।
0: डीलर से ही लें, उसकी सारी परख कर लें, उसका बीज कैसा है क्या है, जानकारी लेने के बाद 1-2 जगह और जानकारी लें, कहीं जहां भी ले रहे हैं तो
1: थोड़ा
0: वो।
1: बहुत बीज, जैसे आपने
0: हाँ
1: 10-5 किलो लिया और आप बड़े एरिया में कर रहे, तो थोड़ा सा एक मुट्ठी बीज आप करके, क्योंकि सरसों तो बहुत जल्दी उगाती है, तो उसको थोड़ा उगा के देख लें कि कितने दाने डाले और उसमें कितने
0: हाँ, वो कर
1: उसमें।
0: सकते हैं किसान भाई, करते भी हैं ये कुछ
1: हाँ, किसान भाई
0: तो
1: जानते हैं सब।
0: जानते हैं सब, तो अगर वो करना चाहें तो उससे पता लग जाएगा, उसके बाद परचेज कर ले, 4-5 दिन में उग जाता है, तीन
1: अच्छा,
0: चार दिन में
1: हाँ, तो बहुत जल्दी आ जाता
0: हाँ,
1: था।
0: जल्दी आ
1: तो
0: जाता
1: क्या
0: है।
1: कहना चाहेंगे चलते चलते, वैसे तो तैयारी और उसमें आपने बातें तो पूरी बता दी, फिर भी किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे, क्योंकि पहला ये जो है हमारा एपिसोड है,
0: किसान
1: पहली कड़ी
0: भाइयों
1: है
0: को
1: इसकी।
0: मैं यही बताना चाहूंगा कि खेत की तैयारी अच्छी तरह से करनी है,
1: हाँ
0: नमी संरक्षित करनी है। अब हमारे राजस्थान में तो क्या है, थोड़ा रहता है दिक्कत, और जैसे यूपी वगैरह में तो नमी की समस्या नहीं रहती है, फिर भी वो नमी को देखकर जितनी अच्छी खेत में नमी होगी, जितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनाएंगे, जो सारी जो वैज्ञानिक तकनीक है हम बताते रहते हैं हर एक एपिसोड में, अगर वो फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया जड़ में उगेगा, और एक बार उग गया सरसों का बीज तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो जरूर दिख रहेगा,
1: मतलब आधी लड़ाई तो आपने
0: आधी
1: जीत
0: जीत
1: ली
0: ली।
1: उसमें। तो किसान भाइयों, सरसों की जो फसल है, डॉक्टर साहब से अभी बात हो रही थी और बता रहे थे कि तैयारी बहुत मायने रखती है, अच्छा खेत हो, नमी हो, भुरभुरी बना लें, लेकिन किस्मों का भी चयन, आप जैसे कई चीज़ें बताई कि सिंचित है, समय पे करनी है, बारानी है, देर से करनी है, जल्दी करनी है, या लवणी है, क्षारी है, बहुत सारी कंडीशन है और बहुत सारी वैरायटियाँ आपको बताई हैं। निरख परख करके बीज लें, संस्थान से ला सकते हैं, लेकिन बाजार से भी ले रहे हैं तो आप बिल जरूर लें, क्योंकि अच्छे डीलर से लें, साख का बीज लें, क्योंकि बीज अगर अच्छा नहीं है तो आपकी समय भी जाएगा, लागत भी जाएगी।

0: और आपका खेत में उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा। आज हमारे साथ थे डॉक्टर अरुण कुमार जी, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान है भरतपुर में। डॉक्टर साहब आप आए किसानों के लिए, इस पहली कड़ी में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद किसान भाई।
2: भैया अभी आप सुन रहे रेडियो कृषि पाठशाला की पहली कड़ी, सरसों की उन्नत किस्में और खेत की तैयारी। विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार मदान और इनसे बातचीत कर रहे ओपी सिंह। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको आनंद दिखा रहे हैं ऋषि शर्मा के स्वर में जालू गीत को।

भैया अभी आप आनंद ले रहे हैं ऋषि शर्मा के सर में जा लोकगीत को श्री राधे राधे जपले चौरासी कट जाएगी। जय गीत के साथ हमारा ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम अब संपन्न हुए। सभी भैया बहनान को राम राम। भैया अभी आप भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे रेडियो कृषि पाठशाला। आज आपने सुनी रेडियो कृषि पाठशाला की पहली कड़ी।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मृणालिनी दीक्षित। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: deşik samaçar.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश, कहा आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए सारे काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा, कहा सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने एचपीवी टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार, उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री योगी ने काम में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखने को कहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि आगामी पर्व त्योहारों में बड़ी संख्या में लोग राज्य के विभिन्न जनपदों में यात्रा करेंगे, ऐसे में पर्वों से पहले आवश्यक मरम्मत और नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गड्ढा मुक्ति का काम केवल पैच वर्क तक सीमित न रहे, जहां सड़क तत्काल खराब स्थिति में है वहां उसे अभी चलने योग्य बनाया जाए और बरसात समाप्त होने के बाद जरूरत के अनुसार स्थायी नवीनीकरण कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों, मुख्य बाजारों, सरकारी कार्यालयों और ऐसे अन्य स्थानों जहां आम जन का आवागमन ज्यादा रहता है वहां की सड़कों को प्राथमिकता दी जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।

0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में सेवा, स्वास्थ्य और जन कल्याण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत 17 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आमजन को विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।
1: जो सेवा संकल्प अभियान है, इसको हम सब धरातल पर उतारेंगे। केंद्र और प्रदेश की स्वास्थ्य विभाग की जो उपलब्धियां हैं, उनको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा एक मुहिम हम चलाएंगे कि प्रदेश में हेल्थ कैंप्स के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति उपचार लेना चाहता है तो वो आए। वहां पर सभी प्रकार की जांचें होंगी, सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि किसी को अन्य टर्शरी केयर की आवश्यकता है या कोई बड़ा ऑपरेशन है तो हमारे हेल्थ कैंप में जांच करा करके वो बड़े अस्पताल में उनको रिफर करके हम चिकित्सा सुविधा सभी प्रकार की उपलब्ध कराएंगे।
0: भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत गुजरात, मध्य प्रदेश और मिजोरम ने अपने निर्धारित लक्ष्यों का 100% कवरेज हासिल कर लिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 22 लाख किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में किया था। अभियान के तहत 14 वर्ष की लड़कियों को माता पिता की सहमति से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वैच्छिक और निःशुल्क एकल खुराक HPV टीकाकरण प्रदान किया जाता है। प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य आम लोगों को लंबित मामलों का निस्तारण करना है। लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाएगा। इसके तहत मोटर वाहन, पारिवारिक, राजस्व समेत विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के सचिव और सिविल जज कुंवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील की है।
2: राष्ट्रीय लोक अदालत जो 12 सितंबर को आयोजित की जा रही है, मेरा आम जन से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में अपने मामलों का निस्तारण कराएं, जिसमें वाहन से चलानों के संबंध में ज्यादा आम जन को असुविधाएं होती हैं, उस पर फोकस करते हुए वाहनों के चलानों को निस्तारित कराएं, छोटे सम्मी मामलों को, पारिवारिक मैटर्स को, सम मामलों को, मोटर एक्सीडेंट के मामलों को, आप अधिक से अधिक मामलों में इसको निस्तारित कराना सुनिश्चित करने।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के क्रम में आज वाराणसी में EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी और FLC सुपरवाइजर शामिल हुए। कार्यशाला में अधिकारियों को EVM की जाँच से लेकर मॉक पोल और FLC की पूरी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि EVM की फर्स्ट लेवल चेकिंग आगामी चुनाव की तैयारियों का पहला महत्वपूर्ण चरण है।
3: यहाँ से जाने के बाद ये अधिकारी फर्स्ट लेवल चेकिंग कराएंगे FLC, और फर्स्ट लेवल चेकिंग का अर्थ है कि जो मशीनें हैं इनको हम इलेक्शन में इनका प्रयोग करने से पहले एक एक मशीन को, एक एक यूनिट को, चाहे वो कंट्रोल यूनिट हो, बैलेट यूनिट हो, VVPAT, उसको चेक करके सुनिश्चित करते हैं कि वो वर्किंग कंडीशन में है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है। और इसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी लिखित में सूचना देकर आमंत्रित करते हैं ताकि वो स्वयं उपस्थित रह सकें।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित होने वाले गोमती पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। आज लखनऊ में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने बताया

0: ये मेला लखनऊ विश्वविद्यालय में 20 सितंबर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि पुस्तक मेले में 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें 120 से अधिक प्रकाशक अपनी किताबों को प्रदर्शित करेंगे।
1: पूरा इवेंट टिकट फ्री है, सो कोई भी व्यक्ति आकर किसी भी कार्यक्रम और किसी भी गतिविधि में पार्टिसिपेट कर सकता है। 250 से ज्यादा पब्लिशर्स यहाँ बुकस्टॉल्स लगे हुए हैं। वंदे मातरम का 150 वर्ष को लेकर एक यहाँ स्पेशल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इन सब के अलावा आप देखेंगे तो हर रोज बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हैं, हर रोज कल्चरल एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे राइटर्स, स्कॉलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर से मिलने का, रूबरू होने का अलग मौका है। तो अपने आप में एक कम्प्लीट पैकेज है जिसमें आप इसका आकर लाभ उठा सकते।
0: चित्रकूट में भदई अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालु पवित्र मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कामतगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं। रामघाट समेत प्रमुख तीर्थस्थलों पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बचाव और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखते हुए बचाव अभियान, भोजन वितरण, राहत शिविर, चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक राहत सामग्री की व्यवस्था कर रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर फर्रुखाबाद में नरौना बांध से पानी छोड़े जाने से गंगा और रामगंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बारिश और बाढ़ से खराब हुई सड़कों की तत्काल मरम्मत के दिए निर्देश। का आगामी त्योहारों से पहले पूरा किया जाए नवीनीकरण का काम। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को परखा। कहा, सेवा और जन कल्याण के संकल्प के साथ लगाए जाएंगे विशेष स्वास्थ्य शिविर। भारत ने HPV टीकाकरण अभियान में 80 लाख टीकों का आंकड़ा किया पार। उत्तर प्रदेश ने हासिल किया वैक्सीनेशन का निर्धारित लक्ष्य। प्रदेश भर में कल किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। सुलह समझौते के माध्यम से होगा लंबित मामलों का निस्तारण। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी जनपदों में जताया वर्षा का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
3: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल। साथ ही साथ आप सुनेंगे कार्यक्रम शाम सुहानी हमारी प्रसारण ऐप पर।
4: टॉस होना है, लेकिन टॉस में जाने से पहले सुमित्र बोस हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वैशाली माथुर क्रिकेटर हैं। वैशाली, सबसे पहले आप ही से सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में मुकाबला है एशिया कप, दोनों आपस में पहले भी भिड़ चुके हैं सेमीफाइनल में, थोड़ी सी एज है श्रीलंका को, कुछ कह रहा है, कोई कह रहे हैं पाकिस्तान के पास एज है, आप किसको देखते हैं, किसके पास एज है?
5: मुझे लगता है श्रीलंका के पास बेटर है, क्योंकि वो 2024 का चैंपियंस भी रहे हैं और उनके पास एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। बैटिंग के बारे में बात करें या बॉलिंग के बारे में बात करें तो वो काफ़ी बेटर है हमारा। एंड उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं चमारी की, तो उसमें उन्होंने लास्ट जो मैच खेला था इंडिया के साथ उसमें बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था। और उसके साथ हर्षिता ने भी काफ़ी बेटर किया था, इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 60+ स्कोर किया था। तो अभी

प्यास और भी बढ़ जाती है। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं कार्यक्रम शाम सुहानी। कार्यक्रम में आपके ढेरों संदेश प्राप्त हो चुके हैं और इसी क्रम में पहला संदेश लेते हैं। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन का।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ। अमरावती महाराज से सिद्धार्थ गोंडा ने अर्चनाताई हीरामणि और प्रणय प्रसिद्धि। कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओम कुमार और साई गायकवाड़। तरन तरन पंजाब से गुरुदर्शन, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहर्द और गुरुशब्द। समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज, आरती आकर्षण। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, परदीन सुहान, अरजान। छत्तीसगढ़ से रामचंद्र मखीजा और काफिर।

मलकापुर महाराज से नारायण इंगले, सोपान ताइडे आशीष मोरहेकर, नरवेल महाराज से पीएस नहावकर निर्मला विशाल। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं, ये गीता भी आप सुन रहे थे अरमान मलिक की आवाज में। फिल्म का नाम वाई चीट इंडिया। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ से हर्षिता रामेश्वर, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी और इनके समस्त परिवारीजन, झालावाड़ राजस्थान से ही मनभावन नैना सत्यनारायण, कपिल शोभा और फुनिधि बाई बागरी। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला चीनू, दीपक और अनुश्री। लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास और रानी।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी वाशिम महाराज से मास्टर विट्ठल सुरोशे सुषमा परिधि मायरा, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित और जयलक्ष्मी, बुडगहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति रामचरण, चंद्रेश चंद्रकांता और शशिकला। अमरावती महाराज से हर्षा रामेकर, दिलीप अक्षय और रुद्रा, बिरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर सुनीता हार्दिक।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशीष राजा, चैतन्य मेगा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल रचिता, केशु और रिदान खुराना, नसवाला चौक मलकापुर से संजय उषा पाटिल, उमरखेड़ मारा से अभिजीत गवानकर, सरिता सिद्धांत, प्रणिता और टुकटुक, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश राजवर्मा, प्रीति और कार्तिक। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल और कामेश, संदेश मिला है छत्तीसगढ़ से। अगले संदेश के साथ प्रशांत, सुनीता, यशराज और ऋषि रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से जुड़े हैं। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो और नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल, भाविक सिक्का। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपेंदर, वरिंदर, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजोत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति देव कुमार, आर्य कुमार जायसवाल। जिला गाजीपुर से सुरेश, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल। अगले संदेश के साथ आप सभी जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी। संदेश मिला पंढरपुर से। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, उमर डावर और राजेंद्र कटारे। शिवा गोप, प्रेम, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि, दीपाली गोप, चाईबासा, झारखंड से। कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता, प्रतीक हिवराले, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र, उमेश, प्रमिला बंचोर। दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सभी जुड़े हैं। पाटन छत्तीसगढ़ से परमेश्वर साहू, राजबत्ती और काजल। मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक। संदेश मिला है झारखंड से। कुमार हीरा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, साइना, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम और सद्दाम। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर और सोहिल। कुमार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका दले। पुनावली पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पपी भाटिया। जमशेदपुर से ये संदेश प्राप्त हुआ है। वसीम अकरम, रूबीना, आरज, नदीम, समीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। सीतामणि से आप सभी जुड़ चुके हैं। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ और निकहत परवीन। जलालाबाद वैसे सुरेश गंगरेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वत, हर्षिता सानवी। देवरी भाटीपारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल और मुरली। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत, मयंक भाटिया।

शेख चांद और शेख अदनान पैठण से आप सभी जुड़ चुके हैं। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेक की यशोधरा और श्राव्या, लोरवी छत्तीसगढ़ से नारायण खांडे, रंजनी, तुषार, समीर खांडे, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी, जोगेश ट्विंकल टिंपल, मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर, महादेव घाट, अमलेश्वर से, शेगांव बुलडाणा से आप सभी जुड़ चुके हैं संतोष एस काले, तेजस और लोकेश। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, साइमा हसन, बाबू अहद, मिफ्रा और चाहत। छत्तीसगढ़ से आप सभी दीपेश, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा, गंगाधर सावनकर, विजयलक्ष्मी, रागेश और राजेश कुंडलवाड़ी महाराज से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर चिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता जुड़ चुके हैं। रायगढ़ मध्य प्रदेश से वैष्णव दिव्या, सुमन, कोमल और कृतिका। नारायण हागे, कमल, दिव्या, जय हागे बुलढाणा से आप सभी। नांदुरा से संतोष वसाने, उषा, ऋषिकेश, अनिकेत, सागर कटक। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित और पीयूष कुमार, स्वर्ण सिंह दोनेवाला और इनके समस्त परिवारजन जुड़े हैं मोगा पंजाब से। नांदी नांदुरा महाराज से श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे, फाजालिका पंजाब से ओम बगाड़िया, क्रियांश और रजत करीमा बगाड़िया। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं माखन वर्मा, दीपेश, चांदनी और भूपेश वर्मा, नांदगढ़ छत्तीसगढ़ से। श्रीरामपुर से डी अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू और अर्चना, कोस्ते बस्ती पुनावले से अजय करिश्मा। मजनू कटिल्ला से कमल, मधु, सागर बालूजा, नांदेड़ से प्रकाश जैन, लातूर से संगीता, सूरज, पीआर जैन, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव, गरिमा शर्मा, ओम प्रकाश रॉय, उषा, अमित, हैप्पी रॉय, बाबा पट्टी बलिया से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, रही मेरा जहां, संदेश मिला लक्सर हरिद्वार से।

गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोदले और आरती जोदले। जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक। लखनादौन जिला सिवनी मध्य प्रदेश से लाडला लाडली, रिमझिम, सक्षम चौबे। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। अगले संदेश के साथ आप सभी जुड़े हैं नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी, क्रांति, कामेश्वर प्रसाद, मेनका, संगीता, मधुबनी बिहार से। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया।

मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अल्लाउर रहमान, शेख हबीब रहमान, सियारा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा बाजार रोड मुंगी सपुर से मोहम्मद जाकिर मसूरी, कमरून निशा चविस्ता और नसीम मोहम्मद ने। इन्हीं के साथ पलक लुबना यश मंसूरी।

इसी गीत को सुनना चाहा बुलंदशहर से मोहम्मद जहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान और अरजान ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरविंदर सिंह चावला, बनी चावला, लोकेश, पायल जोशी ने। इन्हीं के साथ अकिता और श्रीवास्तव।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह की आवाज में फिल्म तेरे नाम से। और इसी के साथ कार्यक्रम शाम सुहानी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना ये गीत फिल्म खाकी से। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं देश गान।

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। सुनते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बार बार देखो के कुछ गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे जसलीन रॉयल, हर्षदीप कौर और सिद्धार्थ महादेवन की आवाजों में। कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म बार बार देखो के कुछ गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आरको की आवाज में, कार्यक्रम एक ही फिल्म से। में आज आप सुन रहे हैं फिल्म बार बार देखो के कुछ गीत। और चलते चलते सुनते हैं ये गीत बिलाल सईद की आवाज में।

यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य में स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा किया। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है और भारत शांति प्रयासों में सहयोग करने के लिए तत्पर है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित ये प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। दोनों नेताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रतिभागियों से बातचीत की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कहा है कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान श्री मोदी ने क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, आवाजाही और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा करने और नाविकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी

0: मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट कर

0: से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत आज विकास और स्थिरता के लिए भरोसे का पर्याय है।
0: हम रोड्स, रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट्स का तेजी से विस्तार कर रहे हैं। साथ ही शिप बिल्डिंग, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, क्रिटिकल मिनरल्स और बायोटेक जैसे स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में नई क्षमताएं तैयार कर रहे हैं। इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड, 2 लाख के अधिक स्टार्टअप और 120 से अधिक यूनिकॉर्न्स के साथ भारत आज ग्लोबल सॉल्यूशंस का हब बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का दृढ़ समर्थक है।
0: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
1: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा होगी और इसका उद्देश्य विश्व कल्याण होगा। भारत की अध्यक्षता में सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। सम्मेलन का शुभारंभ ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए वैश्विक संस्थाओं को अधिक समावेशी बनाना और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के विषय पर एक सत्र के साथ होगा। सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे। वे संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के दौरान कई ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, आर्थिक चुनौतियाँ, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़े हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसी सहभागिता आवश्यक है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील हो। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का प्रयास सदस्य देशों के बीच सहमति कायम करना और साथ ही मौजूदा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता को मजबूत करना है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स को एक अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए एक रचनात्मक शक्ति के रूप में सुदृढ़ करना है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का शुभारंभ आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ भारत के अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित करना है। दो दिन की प्रदर्शनी में भारत के 37 डीप टेक स्टार्टअप और उद्यम शामिल हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया है कि ब्रिक्स सम्मेलन के कारण कल रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक दिल्ली के मुख्य रास्तों पर यातायात परिवर्तित और नियंत्रित किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो सम्मेलन के कारण रविवार को सभी लाइनों पर सेवाएं सुबह 6 बजे से शुरू करेगी। अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। भाजपा ने ब्रिक्स से भारत को होने वाले लाभ पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेताओं की आलोचना की है। नई दिल्ली में आज पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत ब्रिक्स में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
2: आज आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में 7.8% ग्रोथ रेट को सही पाया है। आईएमएफ ने भारत की इकोनॉमी के रिजिलियंस की तारीफ की है। तो कांग्रेस के नेताओं को यह बताना जरूरी है कि जो आप सरकार में थे तो ब्रिक्स के मामले में भारत की आपने क्या स्थिति बना दी थी।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जन विश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज बूथ स्तरीय अधिकारियों को मतदाताओं के लिए निर्वाचन आयोग का जीवंत प्रतिबिंब बताया। गुजरात के अहमदाबाद में उन्होंने कहा कि भारत की चुनावी प्रक्रिया, संविधान, चुनावी कानूनों और आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार ही संचालित होती है। भाजपा की पंजाब इकाई भाजपा दा नारा नशा मुकाना सारा के नारे के साथ राज्य में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं की शुरुआत करेगी। 4 चरणों में होने वाली ये 13 दिन की यात्रा नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का प्रयास करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 18 सितंबर को पठानकोट जिले के माधोपुर से पहली यात्रा को रवाना करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान समर्थित हाउसी विद्रोहियों ने लाल सागर के निकट बाब अल मंदेब जलबरू मध्यम स्थित यमन के महत्वपूर्ण मयून द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे सऊदी अरब का तेल निर्यात प्रभावित हो सकता है। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हाउसी के कब्जे वाले प्रमुख बंदरगाह शहर मोखा के हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। उधर ईरान सरकार ने सऊदी अरब और हाउसी विद्रोहियों के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। यूरोपीय आयोग ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर और इसे लागू करने के लिए यूरोपीय परिषद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किया। इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया जा रहा है। यूरोपीय परिषद की मंजूरी मिलने पर यह भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होगा। प्रख्यात तमिल वक्ता सोलोमन पापैया का आज तमिलनाडु के मदुरई में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। श्री पापैया अपनी हास्यपूर्ण शैली और विशिष्ट मदुरई तमिल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 और सुखविंदर ने 1 गोल किया। खिताबी मुकाबले में भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम कल सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से खेलेगी। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। भारत ने ह्यूमन

0: पेपिलोमा वायरस टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। ये निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और एचपीवी संक्रमण और एचपीवी से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। एचपीवी टीकाकरण पहल फरवरी 2026 में शुरू किए गए राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने फिर कहा, संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स की आर्थिक शक्ति बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी गति से बढ़ी है। और चीन में भारतीय जूनियर पुरुष टीम ने मलेशिया को हराकर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds bilateral talks with Russian President Vladimir Putin ahead of the 18th BRICS summit in New Delhi. Discusses progress across political, economic, defense, energy and regional and global issues. Prime Minister Modi reiterates on dialogue and diplomacy to resolve conflicts. Prime Minister also holds bilateral meetings with Iranian President and United Nations Secretary General. Heads of BRICS member countries attend leaders session of BRICS Business Forum. PM Modi says economic strength of BRICS grew at nearly twice the pace of rest of the world. Iran-backed Houthi rebels capture Yemen's strategic Mayun Island in the Bab al-Mandeb Strait near Red Sea. And in hockey, Indian junior men's team enter final of Asia Cup defeating Malaysia at Mochi in China. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin reviewed the progress in bilateral cooperation in political, economic, defense, energy, space, skill mobility and people-to-people domains today. During the bilateral talks in New Delhi, the two leaders also shared perspectives on key regional and global issues of mutual interest, including the conflicts in West Asia and the Black Sea region. Prime Minister Modi reiterated that dialogue and diplomacy is the way forward in resolving conflicts and India stood ready to assist in peace efforts. The External Affairs Ministry said in a statement that Prime Minister Modi and President Putin welcome Russia's International Industrial Exhibition, InnoProm India. The exhibition was held for the first time in India since the 9th of this month till today and underscored its importance in further expanding trade and industrial ties. The two leaders also visited the InnoProm India exhibition and interacted with the participants. President Putin invited Prime Minister to visit Russia for the 24th India-Russia annual summit. Prime Minister accepted the invitation. Mr. Modi gifted Mr. Putin a Russian translation of the Thirukkural, the ancient Tamil classic by poet-philosopher Thiruvalluvar during the meeting.
2: ट्रांसलेशन हुआ है, मुझे विश्वास है कि पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भाई सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका है।
1: During his bilateral meeting with Iranian President Masoud Pezeshkian, Prime Minister Modi exchanged views on recent developments in West Asia. Mr. Modi reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi also underscored the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region, safeguarding freedom of navigation and commerce, and the safety and well-being of seafarers. The Prime Minister thanked Iran for its regular high-level participation in BRICS-related meetings despite the challenging circumstances. The Prime Minister also held a bilateral meeting with UN Secretary-General Antonio Guterres. Prime Minister Narendra Modi has said that BRICS nation

कार्यक्रम नवरंग सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज है शुक्रवार का दिन। आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम नवरंग। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी गीत आपके भेजे गए संदेशों के माध्यम से। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम के इस पहले संदेश के साथ। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौसर, अल्ताफ और नीलूफर। भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा। हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन और पीहू। नागपुर से विट्ठल जाधव अनसुईया, पवन राजे जाधव। छत्रपति संभाजीनगर से मंगेश इंगले, स्वंध्या और स्वराज विराज।

जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत जगुताई, सर्वद संचित और हर्षिता सानवी प्रणाली।

कुणाल गांजावाला को अभी आप सुन रहे थे फिल्म क्योंकि में, गीत रचना समीर की, संगीत हिमेश रेशमिया का। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ आप सभी नलेश्वर नगर नरवील महाराज से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल नहावकर, मलकापुर महाराज से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुरहेकर। मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी बिट्टू भैया, साजदारानी हिना कौसर जुड़े हैं बिजनौर से। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी जोगेश, ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक अनिल, जयवीर डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र साहिल बिट्टा बजाज। बेगम इशरत, वसीम अकरम, रूबीना आरज, नदीम शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी शर्मा। संदेश मिला सीतामणि से, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ, निकहत परवीन। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। परवणी महाराज से रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रितेश और संघई परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला चीनू, दीपक अनुश्री। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल, भारती बघेल, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार देव बालोद छत्तीसगढ़ से। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम कपिल, शिवांश, संगीता दीपाली गोप। सनावद मध्य प्रदेश से आप सभी अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश। बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित हैपी रॉय। जिला गाजीपुर से प्रतीक रोशनी, प्रांजल रॉय। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत। फिल्म का नाम शागिर्द, आवाज लता मंगेशकर की। गीत रचना मजरू सुल्तानपुरी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साकिब पवार, अलमाज पानो, छोटू पवार और हसनैन पवार लक्कड़ बाजार खंडवा से। बुल्ढाना से नारायण हागे, कमल दिव्या, जय हागे जुड़ चुके हैं अगले संदेश के साथ। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका अनिष्का तन्मय गजबिये। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित गर्वी और हिमाक्ष। नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओम कुमार साई गायकवाड़। अगले संदेश के साथ सुनीता, यशराज, प्रशांत, ऋषि और कृष्णा घोड़ के। संदेश मिला है पंढरपुर सिटी से। सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरुण श्रीनिका श्रीनिजा जुड़े हैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन रोहित हैप्पी रोज। दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य मोहिनी, ऋतिक बलवीर सिंह। दुर्गा कॉलोनी हाथी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। पेंटर से सुरेश यादव, अनीता, सोनल प्रसाद, आरती, सिया यादव। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामचरण विश्वकर्मा, साहिल, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। डाबकी रोड़ाकुला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदूरकर। खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा और राजकुमार बोड़ाना। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम और कृष्णा देवांगन। बड़ाबम चौक मध्य प्रदेश से ममता व मारकंडे, संजय मारकंडे, बिट्टू और किट्टू। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़ से विनोद खड़ से। दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति, शिवांश वर्मा जुड़े हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से। गंगाधर येमेकर, प्रमोद, प्रदीप और इनके समस्त परिवारजन कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर अलकमा खत्री, अलतमश रमेश कौर, शादाब खत्री। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति, ओजस्वी यादव। चंडीगढ़ से सतीश, विमला, अनेजा। रायगढ़ छत्तीसगढ़ से रोहित, जयलक्ष्मी। अगले संदेश के साथ लखनादौन मध्य प्रदेश से लाडला लाडली, रिमझिम, सक्षम चौबे। महाकौशल जबलपुर मध्य प्रदेश से सोनाली, मोनिका, रानू। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोता हो, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नवरंग आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगले संदेश के साथ पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा।

श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे प्रीतम, सुनिधि चौहान, राणा और अनुपम की आवाज़ों में। फिल्म का नाम वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, गीत रचना इरशाद कामिल की, संगीत प्रीतम का था। कार्यक्रम नवरंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के साथ सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से शेख जियाउर रहमान जुड़ चुके हैं।

अगले संदेश के साथ श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका अरोड़ा। बूंदीचक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी अगले संदेश के साथ आप सभी यशमीत निरंजन सौम्या अविरल सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान जुड़ चुके हैं।

वाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास और रानी, हमारे पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश और इनके समस्त परिवार जन, कोलगांव से पांडु चंदन, उषा रानी, प्रतीक्षा, अभिषेक सार्थक, प्रथमेश, संतोष और पांडुरंग कुमार, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग, आकांक्षा और माही मलिक, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन, नौरीन, आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, राजू, रंजन, विपिन, अरुण और संजय सोनी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, बिरडी से राजेश सोनी, कंचन, गायत्री और इनके समस्त परिवारजन, सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

इसी गीत को सुनना चाहा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकैस्ट्रो ने। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सोमार हेमंत, राम खेलावन और इनके समस्त परिवारजन। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला शुभम और पवन।

इसी गीत को सुनना चाहा कच्छ गुजरात से गंगा वणकर विकास गोविंद प्रीति जोली गीता महिमा विशाल विजय विराट और रमेश महेश ने। दुगाई सेलू से चंदू कुलकर्णी हेमलता और सीआर कुलकर्णी।

दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति मुरली नीरा और इनके समस्त परिवारी जन, लोहारी डी से यशवंत साहू, रमेशिया हर्ष और अंश, एसएम जावेद, शगुप्ता अंजुम, नजमुल होता होडा जुड़े हैं गुमला झारखंड से। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश मेंडी, निवान सौरभ और साइना शर्मा।

खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश चंदुन और अंकुश अरोड़ा। करणवीर हाउस बुच्चो कैचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप एकम और अभिजोत। तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये गीत अपनी पसंद पर। कार्यक्रम में लेते हैं अगला संदेश। हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज, हिमांशु और इनके समस्त परिवारजन। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा और किरण ठाकुर। कोल्हापुर उत्तर प्रदेश से

मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज। वर्षिंगी महाराज से अमोल मानकर, शोभाताई, दीपाली और श्लोक। कलानौर से नरिंदर, किरण, नितिन और मयंक। भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंगेल, मूरस, अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंगेल। दमदा ग्राम सुकरी कला से अमित शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंगेल। नरेन नेताम, कुसुम नेताम, पतरिया छत्तीसगढ़ से। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, विशाल निशा। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग, आकांक्षा, माही मलिक। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव, भानुप्रिया, वर्षा, कीर्ति भारती, माधुरी किरण। अगले संदेश के साथ रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गव्य, सुचा सिंह पाठक और विनोदपुरी, जयपाल यादव। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री, पीरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, मुन्नी देवी, जयप्रकाश, बसंतलाल, हीरा मोती और इनके समस्त परिवारीजन। जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन। सुनते हैं आप सभी की पसंद पर ये गीत।

श्रोताओं इसी गीत को सुनना चाहा कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा। मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा, हिना, गुलिस्ता, नंदिनी और अंजलि। हिप्परसोगा तहसील जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू, बाबा शेख, सिमर और करिश्मा। काटा रोड वाशी महाराज से आप सभी मास्टर विट्ठल सुरोशे, सुषमा परिधि, मायरा सुरोशे।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म जुल्मी से। और इसी के साथ कार्यक्रम नवरंग अब यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम नवरंग। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं नौटंकी कृष्ण सुदामा। लेखक हैं सामंतलाल, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की।

0: अरे भैया द्वारपाल, जय श्री कृष्ण।
1: अरे जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण, कहाँ से पधारे हो?

सुने भैया, तुम यहाँ विराजो, हम महाराज के पास स्वयं जा रहे हैं।

अभी तक आप सुन रहे थे नौटंकी कृष्ण सुदामा, लेखक थे सामंतलाल, प्रस्तुति हरिबाबू कौशिक की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। सबसे पहले सुनते हैं राग नायकी कान्हड़ा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन, और आप सुनते हैं राग सूरत में निबद्ध ये रूपक ताल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का ख्याल गायन। यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। अब समाचार होंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ में विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने फिर कहा कि संघर्षों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। दोनों नेताओं ने रूस की अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक प्रदर्शनी इनोप्रोम इंडिया का स्वागत किया। भारत में पहली बार आयोजित यह प्रदर्शनी व्यापार तथा औद्योगिक संबंधों को और अधिक बढ़ाने में इसके महत्व को दर्शाती है। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। श्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हुए हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: इस सत्र को ब्रिक्स सदस्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्षों ने भी संबोधित किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% से अधिक हिस्सा ब्रिक्स देशों से आ रहा है। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सहित कई ब्रिक्स नेताओं की मेजबानी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को मानवीय जिम्मेदारी, सुरक्षा और जनविश्वास से समझौता किए बिना व्यापक स्तर पर तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की युवा पीढ़ी अवसरों का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि नए प्लेटफॉर्म, उद्यम और समाधान तैयार कर रही है। भारत ने ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण के 80 लाख टीकों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है। यह निवारक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने और HPV संक्रमण और HPV से जुड़े कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। चीन में पहले सेमीफाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-1 से हराया। मौसम विभाग ने कल तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में कल कई स्थानों पर बिजली चमकने के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए फिर से सुनते हैं महिला एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत पाकिस्तान बनाम श्रीलंका के मध्य खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल क्रिकेट मैच का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से आंखों देखा हाल।

0: name anyone and they've got everything. Chef Ali Verma. My only point of concern, if you really ask me, is overconfidence.
1: Oh.
0: This is one thing I dread. You know, any team, even in the match against, let's say, the semi-final that we won, Chef Ali Verma was the kingpin.
1: Hmm.
0: Because of her run, she won, but she got four lives. Hmm. In a big match like a final, where Sri Lanka ke paas itna accha fielding hai, bowling hai, you cannot afford to make so many mistakes.
1: Hmm.
0: Imagine if this match, if there was a batsman like, you know, say Harshita, she would have won that match if she played for Bangladesh. Unko char chances ka zarurat nahi hai. So I think somewhere down the line, mujhe lag raha hai ki India's biggest problem is themselves,
1: okay,
0: not Sri Lanka. Ki confidence, and they have to bring 100% in batting, bowling and fielding.
1: Hmm.
0: And of course, Sri Lanka, after this win, this tarah ka koi jeet gives you another 200% morale boosting. So they'll come out all the way to play, all guns blazing, and they're defending champions. And they have showed how capable they are today.
1: Right.
2: Vaishali, ek bowler hai, unka zikr kiye bagair na lag raha hai ki program pura nahi hoga, kyunki hamare program ka jo maksad hai, jo best performances hain, jo highlights hain, unko bhi maddenazar rakh ke discuss karna hai. Umme Hani, jo off spinner hain, 4 over gendbazi ki, 19 ran diye, bhale hi ek wicket liya unhone. Jo good off spinner hai na, to lagta hai ki Pakistan ki wo जो एक सैड स्टोरी चल रही है उनकी क्रिकेट को लेकर, उसमें उम्मे हानी कुछ एक उम्मीद की किरण जगा रही है.
3: देखिए, पाकिस्तान टीम के पास है ना बॉलर्स की कमी नहीं है. उनके पास जैसे हमने अभी देखा और अभी कैप्टन की बात भी सुनी हमने, तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि हम बॉलिंग एंड हम फील्डिंग पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट वी नीड टू इम्प्रूव इन बैटिंग. और वो बैटिंग पे अगर थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके पास एक दो बैटर आ जाएंगे तो एक विनिंग टीम भी बन सकती है वो इन आगे आने वाले फ्यूचर के लिए. तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि उनके जो बॉलर्स है, ऑफ स्टैंडिंग बॉलर्स है, चाहे वो फातिमा की बात करें या किसी भी ऑफ स्पिनर या लेग स्पिनर, किसी की भी बात करते हैं तो वो ऑफ स्टैंडिंग बॉल डाल रहे हैं. लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक जो हो रहा है वो बैटिंग में हो रहा है, क्योंकि उनके पास 2 से 3 ही बैटर है, उसके अलावा वो बैटिंग नहीं कर रहे. अगर वो उनकी विकेट्स गिर जाती है तो उसके बाद वहाँ उस पिच पे खड़े होने के लिए कहीं भी कोई भी रन बना नहीं रहा है. तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है. लेकिन जैसे अभी बॉस जी ने बोला कि अभी हमारी जो इंडियन टीम है, हमारी जो स्मृति मंदना है, वो वहाँ पर जब वो बैटिंग करने आती है शेफाली के साथ में, तो दोनों का जो कॉन्फिडेंस है वो आउटस्टैंडिंग है. क्योंकि स्मृति सिर्फ पेस अपना वक्त लेके, अपना टाइम लेके वहाँ पे वो प्लेस करके खेलती हैं. जब उनको लगता है कि ये बॉल हिट करने के, वो उसके अकॉर्डिंग ही करती है. एंड उनको अपनी विकेट की वैल्यू पता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वही दूसरी साइड पे जब शेफाली नॉन स्ट्राइक पे खड़ी है, तो उनको ये पता है वो यहाँ पे सिर्फ हिट करने के लिए आई हैं, क्योंकि उनको पावर प्ले का पूरा उपयोग करना है
1: जी.
3: तो ये एक थोड़ा डिफरेंस है हमारा. जो हम श्रीलंका के जो कैप्टन हैं, उनकी अगर जल्दी विकेट गिर जाते तो हमारे पास एक स्टेप हम आगे हो सकते हैं उसमें.
1: ऑलराइट, और इसमें तो अब कोई दोराई नहीं है कि दोनों जो टीमें हैं बिल्कुल अपनी जान लगा के खेलेंगी फाइनल्स के लिए. आज हमने देखा था सुमित्रो, मिथाली अयोध्या को इंक्लूड किया था टीम में. क्या ये एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ किया नहीं आज, 4 ओवर में 33 रन दिए हैं मिथाली ने. बट आपको लगता है कि भारत के अगेंस्ट इनको यूज करने की तैयारी हो सकती है?
0: Be very careful with team selection. जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, काफी स्पिन देखने को मिला है, फर्स्ट इनिंग्स में मिला, सेकंड इनिंग्स में मिला है. बट द पॉइंट इज दिस काइंड ऑफ बॉलिंग विल नॉट मेक अ डिफरेंस टू इंडियंस, स्पेशली बैड लाइन एंड लेंथ. अगर आप बॉलिंग करिएगा तो somebody like Shefali and Smriti will kill you. You know, you can't afford to do all that against India. पाकिस्तान की बैटिंग जैसे वैशाली ने कहा चल नहीं रहा था. आज मान लीजिए कि फतेमा

0: run aage agar nahi aata hai to 40 or then you would have seen that they would have been below 100. So the point is this, you know, you make experiments against teams that are weaker, but you can't make experiments somebody like India.
1: Right.
0: India ke top 6 batsman, they'll kill you if you make, you know, run and line and length agar gadbad hua hai. Like he mentioned the bowler's name, Umeyani. She was really good. Unfortunately, did not wicket. The way she was flighting, using the width of the pitch and kind of bowling, Muniz was perfectly all right. Unfortunately, she did not get wickets.
1: Right.
0: But this is the format, jo aapka T20 format had. Good bowling always never gets you wicket. The bad ball sometimes gets you wicket, and Fatima got that. For example, when Chamani got out.
1: Right.
0: This tarah she strokes there. Some were loose strokes. When she was on hat-trick, both the wickets were loose strokes. But that's the beauty of the game. That's the way the game is played. So I don't think Sri Lanka will make too many experiments. We'll go on a very trusted team. Very, very trusted team. Just say effective ho sakta hai, impactful ho sakta hai.
1: Right.
0: I think Ayodhya was more of a gamble.
1: Okay.
0: Did not work. But ultimately, it did not matter. Sri Lanka won.
1: Yes, but अभी जो चीज़ बहुत मैटर करने वाली है वो ये देखना है कि फिटनेस भी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करने वाली है. आज हमने देखा वैशाली बहुत ही क्रैम्प आ रहे थे टीम को, ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही थी. आई होप कि हमारी जो इंडियन टीम है वो बिल्कुल तैयार है इसके लिए एंड दे विल बी फिट एंड फाइन.
2: या श्योर, क्योंकि मैच से पहले है ना इंडियन टीम्स के पास जो फिजियोज होते हैं एंड बाकी ट्रेनर होते हैं वो एक दिन पहले ही प्रिपेयर करते हैं कि आपको इतना लीटर पानी पीना ही पीना है. बिकॉज क्योंकि आप नेक्स्ट मैच में जब आप जाओगे नेक्स्ट डे तो वहाँ पे आपको सन दिखेगा, आपको साथ में मॉइस्चर दिखेगा. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप ड्रेन होती है आपकी बॉडी, तो उससे पहले ही हम इनटेक करते हैं वाटर. तो ये एक थोड़ा क्रैम्प से बचने का वे निकाला है हमारे ट्रेनर्स, इंडियन ट्रेनर्स ने. तो ये इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि वो ऑलरेडी उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं एंड उनको इंडियन टीम को सिर्फ एक ही बॉलर से बचना है क्योंकि उनकी बोले उन्होंने ज़्यादा नहीं खेली हैं. सिर्फ देखा होगा वो है चामुदी जो 17 ईयर्स की है एंड जब यंगस्टर्स बड़े होते हैं तो उनका वे ऑफ स्टाइल बॉलिंग का हर चीज़ डिफरेंट होती जाती है. तो ये थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है वहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा जज करके फिर खेलना पड़ेगा. ये ऑलरेडी हमारे इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, इतने अच्छे बैटर्स वहाँ पे बैठे हैं, वो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होंगे और उनके कोचेज भी उनको बता रहे होंगे. तो आई होप कि इंडियन टीम काफ़ी बेटर करेगी फाइनल के लिए.
1: जी बिल्कुल, उम्मीद यही करते हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुनीश ने जैसे इनिशियली कहा कि मुनीश को एक इमोशनल ट्रॉमा हो गया, बट मुनीश आई एम जस्ट होपिंग इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन फॉर लॉन्गर. आई एम जस्ट नॉट happy seeing you like this.
3: Pakistan ki team har rahi hai. The cricket is under, you know, there are a lot of questions, men and women team both. And, you know, especially jab Asia Cup ki baat kar rahe ho, you want the Asian teams to do well.
1: Right.
3: But Dada, just coming back to this game where, you know, she just mentioned about Chamudi, Prabodha. But India, I think, you know, as a cricketer, I feel that, you know, it's good to tackle her, you know, bring in a left-hander. A lot of strategies are going to come in. But how important will this game be for the Indian team? You know, they're the world champions in the 50-over format, but that 20-over format is still a struggle. You know, they've, jise Hindi mein kehte na, vanchit ho gaye ki badi trophy lene ke. So how important it's going to be for the Indian team?
0: See, this final will be important ki dono team ke liye kafi important hoga. Because don't forget that immediately after this, they're going to Nagoya to play the Asian Games. And, you know, to win and go to an Asian Games, which is no less important. And
1: right.
0: You see, if you look at the composition of the teams, both men's and women's, they are more or less, all the teams are playing there, A teams, the first teams. So, in ke liye, women will always be good. And the fact that you will be playing more or less the same kind of teams there also, in Japan mein jo Asian Games khelenge. Or yeah, these are you can say a dress rehearsal to the Asian Games. Anybody will like to, because India have always done well in Asian Games. इसलिए ज़रूरी है कि ये मैच जीतना चाहिए. एंड एक्सपीरियंस वाइज इंडिया अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, इनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना डेप्थ है. श्री चामुंडी इज गुड, बट डोंट फॉरगेट दैट दे वी ऑल्सो प्ले समबडी कॉल्ड श्रीचरण इन द नेट्स, सिमिलर बोलिंग अटैक. बट येस, आई मीन द पॉइंट इज दिस, इट इज दैट अगेन एज ए से ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए. प्ले टू ट्रू टू द योर कैपेबिलिटी, योर कैलिबर एंड शो योर मैच्योरिटी ऑन द डे ऑफ द फाइट.
1: और वैशाली, जैसे आज कप्तान ने भी कहा श्रीलंकन टीम की, कि उनकी जो थोड़ी बहुत कंसर्न है शायद उनकी फील्डिंग रहने वाली है एंड आई थिंक दे हैव इनफ टाइम. मुझे नहीं पता

0: भी ज़्यादा बताएंगी कि 2 दिन क्या बहुत होते हैं जिस पे वाकई उस पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो भी कमज़ोरियाँ, जो भी ड्रॉबैक श्रीलंकन टीम के हैं, इंडिया उनको बिल्कुल कैपिटलाइज करे और बिल्कुल बेहतरी से गेम खेले। और जितने भी हमारे श्रोता सुनने वाले हैं, जितने लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरें। और फिलहाल के लिए इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे स्टूडियो में जब हमारे इतने पोटेंट एक्सपर्ट्स आते हैं, वो सबकी उम्मीद पर खरे तो उतरते ही हैं, बट वे एंड बियॉन्ड रहते हैं। वी आर सो ग्रेटफुल सुमित्र बोस जी फॉर जॉइनिंग अस। योर इनसाइट इज़ सो मीनिंगफुल एंड वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। एंड थैंक यू वैशाली माथुर, योर क्रिकेटिंग एक्सपर्टीज ऑलवेज हैव बीन वेरी हेल्पफुल and we are very sure that you'll keep on guiding
1: thank
0: loads
1: you.
0: of people who are willing to learn more about game. And Munish Jolly, thank you so very much. Smile.
2: Isse pehle ki hum show khatam karein, I think

0: स्माइल।
1: अब इससे पहले कि हम शो खत्म करें, आई थिंक बहुत ही जरूरी है कि वी मेंशन अबाउट समबडी हु हैड अ ग्रेट राइवलरी अगेंस्ट द नेबर्स पाकिस्तान। बहुत अरसे तक वो राइवलरी चलती रही, द लेट लाला अमरनाथ, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। एंड ऑल्सो बिफोर वी साइन ऑफ, आई लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज बीन टू आकाशवाणी, इंडियाज फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर मुरली कार्तिक। और इन दोनों को जन्मदिन की और बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सब की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से।
0: थैंक यू सो वेरी मच। और हमारा बहुत बहुत दिल्ली जो धन्यवाद है हमारी टेक्निकल टीम को जाना चाहता है, इस सब की तरफ से, हम सब की तरफ से, मनोज सिंह, संजय कुमार एंड त्रिलोक गुप्ता, प्रोडक्शन टीम वंदना भारद्वाज, स्वाति कपूर, माधवी तिवारी एंड ऑफकोर्स आवर प्रोड्यूसर शाहनवाज खान। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस आउट विद ऑल द इंटीग्रिटी ऑफ द शो, एंड वी आर सो ग्रेटफुल दैट वी कुड बी हियर। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, बिकॉज 13 तारीख को आपको बहुत ही बेहतरीन मुकाबला सुनने को मिलेगा श्रीलंका और इंडिया के बीच। तब तक एक बार फिर से हम सब आपका धन्यवाद करते हैं, गीतांजलि सोनिया, मुनीर जौली की तरफ से
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: गुड नाइट, गुड नाइट
1: एंड शुभ रात्रि।
3: प्लेयर ऑफ द मैच। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:52 हुए हैं। हमारी द्वितीय सभा के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि, जय हिंद।